0: तो कहते हैं वो कीजिए जो आपका दिल कहे, लेकिन हाँ दिमाग का भी इस्तेमाल करते चले।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio.

0: shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: हम तो कब से तैयार हैं, बस आपका इंतजार है on 5499 1294. सवा पांच बज चुके हैं यहाँ पर. Thank you so much once again हमारे म्यूजिकल हम सफर बनने के लिए. सुसाइड कात नफ नफ दोस नफकार पर let me wish a very good morning. हर हर महादेव and प्रणाम आपको भाई सूरज शर्मा सजादा पूरे परिवार के नाम. ओम नमः शिवाय. सभी को शुभ सोमवार. ये आपकी तरफ से है शीला जी. लेस्पेरेंस ट्रेबुशे, क्या बात है. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. कैसी है प्यारी सी ज्योति फ्रॉम शातु बिनागस एंड ऑफकोर्स आशनी रेखा सुरेखा एंड माधव परिवार हमारे लिए भी थैंक यू. और इस वक्त अपने किचन में रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं प्यारी सी प्रेमिला जी फ्रॉम प्लदी पपाए. ऑफकोर्स पति है रंजीत. सब परिवार के नाम अगला गाना.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: आप भी खोए रहे, हम भी खोए रहे. इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग. आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग. यहाँ पर है कौन? कमलदीप. ऑलराइट. एंड मिस सजेशन एज वेल एज के मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. शुभ सोमवार अंजनी जी आपको भी. एंड प्रणाम आपको इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजु, कृषा, केशव, नील, मांशा, तानिया, सब परिवार मोदा ब्लॉन्श से.

0: बस दो दिन की जिंदगी है, दो दिल के इस पल में बस हम लोग जो बोलते हैं वही तो रह जाती है ना हमारी बोल जो है। सो मीठे मीठे बोल बोलिए और सच्चे सच्चे बोल ही बोलिएगा।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: Good morning, आपको नमस्कार। मिस्टर टोनी फ्रॉम रोजबुआ कहते हैं आज गुड मॉर्निंग एंड डोंट वरी अबाउट जस्ट बीइंग परफेक्ट, जस्ट बी ऑनेस्ट, दैट्स फॉर श्योर। ना परफेक्ट तो हम सब कोई है नहीं, नो वन इज परफेक्ट। बस ईमानदारी से आप आगे बढ़ते चलो और देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत बन जाती है। थैंक यू। बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: इस समय में आपका दिन कैसा होगा? चलिए एक साथ जानते हैं.
2: Aries मेष राशि.
1: ऑलराइट, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, लेकिन यदि भागदौड़ आपको सफलता की नई दिशा दे भी पाएगी, कुछ बड़ा करने का उत्साह बना रहेगा. हालांकि जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: ऑलराइट, आज का दिन नई खुशियां लेकर आ सकता है. यदि लंबे समय से घर या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना आप देख रहे थे, तो उसके पूरे होने के संकेत भी हैं. लव लाइफ में नई हलचल महसूस हो सकती है और अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना भी है.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज छोटे छोटे प्रयास आपको बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर किसी से मदद मांगने में संकोच ना करें, क्योंकि आपको पूरा सहयोग मिलेगा.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज का दिन राहत और सफलता लेकर आ सकता है. यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें आपके पक्ष में परिणाम आने की संभावना है. मन की कोई पुरानी इच्छा पूरी होने के यानी कि चांसेस हैं, और बस विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से बात रखने पर हर समस्या का समाधान निकल भी आ सकता है.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. आय और खर्च के बीच सही तालमेल बनाकर चलेंगे, तो फ्यूचर भविष्य एकदम सुरक्षित रहेगा. स्वास्थ्य में हल्का उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है, दैट्स व्हाई खुद पर ध्यान दें.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: आज किस्मत आपके पक्ष में दिखाई दे रही है और तरक्की के नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में शानदार सफलता मिलने के संकेत हैं. घर की सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल और आरामदायक बनेगा.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: वेल, आज का दिन खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. पुराने विरोधी भी आज आपके प्रति नरम रुख यानी कि अपना सकते हैं. परिवार के किसी नए सदस्य के आने की खुशखबरी माहौल को और आनंदमय बना देगी. वैसे नया वाहन खरीदने का विचार मन में आ सकता है, हालांकि सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
1: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और काम को लेकर संतुष्टि महसूस होगी. यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगी. विदेश से जुड़े व्यापार में सावधानी बरतने की जरूरत है, और बड़े जो है आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे आप पूरी निष्ठा से निभाएंगे.
2: सजिटेरियस धनुराशि.
1: आज अचानक मिलने वाला कोई लाभ आपका दिन खास बना सकता है. संपत्ति या पुराने निवेश से अच्छा फायदा मिलने की

0: भावना है, नए अवसरों को अपनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी से बचना बहुत ही जरूरी है। सो जो काम काज आप उसमें बदलाव लाने की सोच समझ कर कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की सफलता उसकी नींव बनेगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज धैर्य और संयम आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। छोटे बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको सुकून और खुशी देगा। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उससे समाधान यानी कि उसमें समाधान मिलने के संकेत हैं और नया काम शुरू करने का विचार आगे बढ़ सकता है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। कोई सुखद समाचार आपके चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है। खासकर अविवाहित लोगों के लिए दिन एकदम शुभ रहेगा। माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे होंगे और प्रेम और सहयोग की भावना रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज का दिन सम्मान, उपलब्धि और सफलता लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और किसी पुरस्कार या फिर नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी है। बड़ों की सलाह आपके लिए सही मार्गदर्शन साबित होगी। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही है तो प्लीज समय रहते डॉक्टर से सलाह मशवरा कर जरूर करें। विशिंग यू ऑल अ लवली डे अहेड, बेस्ट ऑफ लक।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

5:56 हो रही है. थैंक यू सो मच सोनम भोला. वेरी गुड मॉर्निंग राम गोपाल राम गुलाम फैमिली के नाम. साथ साथ में है गर्व और मायांसी. और गुड मॉर्निंग वरुण आपके लिए भी पूरे परिवार के लिए. रेडियो मस्ती टीम थैंक यू अब्दुल अंसारा बानू एंड हैप्पी स्कूल हॉलीडेज टू ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्पेशली ग्रांड चिल्ड्रन निधि सोनाक्षी अवनी क्यूट वंश सुया बिहारी जी फ्रॉम कंगोमा आपके पूरे परिवार के नाम. तो बस 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार और मिलते हैं उस पार.

0: सुबह के 6 बज चुके हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार। सोमवार 20 जुलाई 2026 के इस प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत किया जाता है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीतकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। फीफा विश्व कप 2026 के पानिनी स्टीकर एल्बम को पूरा करने के लिए मॉरिशस में हजारों प्रशंसक अंतिम स्टीकर एक्सचेंज कार्यक्रम में कल त्रिबिका पहुंचे। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे अगले बुलेटिन में हम आपको देंगे। 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले में गिरफ्तार पुलिस जयंजयेश गंगादीन को जमानत मिल गई है। इस मामले के बाद पुलिस की खुफिया कार्रवाई और कथित आपराधिक मिलीभगत के बीच की सीमा पर नए सवाल उठने लगी हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। women.mu ने घरेलू हिंसा विधेयक यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का स्वागत करते हुए पीड़ितों के लिए बेहतर कानूनी संरक्षण की मांग की है। जी हाँ, women.mu ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल का स्वागत करते हुए पीड़ितों के लिए बेहतर कानूनी संरक्षण की मांग की है। और अन्य खबरों में, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के लिए खरीदी गई लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि समस्या उपकरणों की गुणवत्ता में है या खरीद और स्थापना प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंडी बर्नम आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अपने पहले संबोधन में वह राजनीतिक स्थिरता और जनता को राहत देने का संदेश देंगे। और उधर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला किया है, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अमरीकी देश गुयाना के तट के पास 116 यात्रियों को ले जा रही एक नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गई। अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अन्य यात्रियों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।

मौसम का हाल, हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना होगा, सिवाय ऊंचाइयों पर और दक्षिणी इलाकों में दोपहर बाद बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी, अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, हवा हल्की बहेगी, समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा।

0: धीरे खराब होता जाएगा और दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों में यानी कि दक्षिणी लगूनों में दक्षिण पश्चिम की ओर से ज्वार उठेंगे और 2.50 मीटर के ये ज्वार होंगे दोपहर बाद में। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर दोपहर बाद में। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा 2 डिग्री ज्यादा यानी समुद्र प्रांतों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान समुद्र प्रांतों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:48 पर। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी रॉब की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

चैन चुराना ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ आपके दिल को चैन यानी कि पहुंचाने जरूर आए हैं। थैंक यू सो मच। 6:11, वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती एंड मी तो आपके साथ बस 7 बजे तक ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ इन एवरग्रीन सदाबहार 90s के कुछ गानों के साथ आपके मॉर्निंग की शुरुआत कर रही है। वंस अगेन 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू रघुजाना परिवार, खास आपके लिए प्यारी सी दूती का। हाय रेडियो मस्ती टीम, गुड मॉर्निंग। आप हो किशन रघुनाथ सुगी नाम से और आप कहते हैं प्लीज अगला गाना जो है मेरी पत्नी माला के नाम और आपकी बेटियां रिया एंड जिया एंड होल रघुनाथ परिवार। नमस्कार नीतू, नमस्कार आपको हेमलता भजन पैतु पीमो से एंड विशिंग ऑल लवली मंडे अहेड एंड बस आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और पॉजिटिविटी हो आपके लिए भी माय डियर, स्टे ब्लेस्ड। रेखा आपके बेटे अंश के नाम पोमोजू से स्पेशली आपके पूरे परिवार के लिए एंड आकाश एंड मनसुख फैमिली 12th बर्थडे प्रिंसेस मिश्री आस्किगाडू टू यू ऑफ रोड्रिग शानिल सान शानिया रवेश प्रिशाल अवशा एंड डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बस जितने भी कहानी है सब आप ही के लिए तो है. अ वेरी गुड मॉर्निंग आज विजुअल पारुषि परिधि पृथ्वी प्रिया निशिका नितिन विशाल यानेश एंड टू रेडियो मस्ती टीम थैंक यू. बॉन कुराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. रास्ते पर होंगे प्लीज हाँ ड्राइव केयरफुली. 5499-1294 पर गुड मॉर्निंग. आज मेरे हबी आनंद अपना 65th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बस सब परिवार की तरफ से बेनीता अरुण निशी निशा क्योंकि यहाँ पर आपका मैसेज जो है अधूरा है अगर हो सके तो प्लीज़ वापस भेज दो. पूरे परिवार की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. हर हर महादेव. शुभ सोमवार आपको भी. आगादू फैमिली गांव से

0: Actu Radio Musti.
1: Problème les guerres, les baguettes les ali. Les capaves moi, les capaves toi, les capaves nous tous. Protège tous les guerres aujourd'hui. Pour qu'ils te disent, tu pas à risque d'un ban problème les guerres. Allô, enjoy to life avec Anchor Life. Parce qu'il s'abondit les Anchor Life là. Et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te ban activité physique et que mange équilibré. Sans oublier, te bondit les Anchor Life. Mais là, te prends soin tous les guerres. Anchor Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.
0: RM2 Radio Musti.
2: छह बजकर 25 मिनट हो चुके हैं, बस साढ़े छह बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन। हेलो जी, आज मेरे हबी का बर्थडे है और बस पूरे परिवार ओके आपने फिर से भेजा है बेनीता सो निशा श्रीधि फोन जुसाक से और सब परिवार की तरफ से हबी आनंद को हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आप है कौन सरोज राजन मोनिका पूनम श्रेया उमेश विश यू हैप्पी डे अहेड।

0: नमस्कार और सुप्रभात. सोमवार 20 जुलाई 2026 के इस प्रातःकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सबसे पहले आज की सुर्खियां. स्पेन ने फीफा विश्व कप जीतकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया और तीसरे स्थान पर आए इंग्लैंड से हार के बावजूद किलियान एम्बाप्पे ने विश्व कप में रचा नया इतिहास. फीफा विश्व कप 2026 के पानिनी स्टिकर एल्बम को पूरा करने के लिए मॉरिशस में हजारों प्रशंसक अंतिम स्टिकर एक्सचेंज कार्यक्रम में पहुंचे. 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जयेश गंगाधीन को जमानत मिल गई है. इस मामले के बाद पुलिस की खुफिया कार्रवाई और कथित आपराधिक मिलीभगत के बीच की सीमा पर नए सवाल उठने लगे. डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. women.mu ने घरेलू हिंसा विधेयक का स्वागत करते हुए पीड़ितों के लिए बेहतर कानूनी संरक्षण की मांग की. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के लिए खरीदे गए लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है. ये पता लगाया जा रहा है कि समस्या उपकरणों की गुणवत्ता में है या खरीद और स्थापना प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही हुई. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंडी बर्नम आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे. अपने पहले संबोधन में वह राजनीतिक स्थिरता और जनता को राहत देने का संदेश दें. नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं. फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है. फीफा विश्व कप 2026 का महामुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ देखा गया. न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी और मुकाबला अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा. 62वें मिनट में मैदान पर उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल कर स्पेन को जीत दिलाया. अर्जेंटीना को 93वें मिनट में एंजो फर्नांडेज के रेड कार्ड के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. इससे पहले स्पेन ने 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था. मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है. ये फाइनल मुकाबला आपने MBC पर सीधा प्रसारण में भी देखा और सुना.
1: Gave the foul straight away. And Williams played it in, and Marino! Pedro Porro, Williams! And thundered in for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's magic moment! Oh, Torres is on his way here. Ferran Torres all by himself. And the flag is up at his expense. It's Simeone! Spain are the champions. Spain have seized their second star. The kings of Europe have conquered the world.
0: और तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बाप्पे ने शनिवार को मायमी में 2 गोल दागकर फीफा विश्व कप के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया. एम्बाप्पे ने विश्व कप 2026 का समापन 10 गोलों के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में किया. विश्व कप में कुल 22 गोलों के साथ वह अब टूर्नामेंट के इतिहास के वर्ल्ड टॉप गोल स्कोरर बन गए हैं. किलियान एम्बाप्पे विश्व कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. फीफा विश्व कप 2026 का नाम आते ही पानिनी स्टिकर एल्बम का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है. कल रविवार को मॉरिशस के त्रिबेका शॉपिंग मॉल में स्टिकर एडिशन अभियान का अंतिम दिन आयोजित किया गया, जहां हजारों लोग अपने एल्बम को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टिकरों की तलाश में पहुंचे। सुबह से ही मॉल में लंबी कतारें देखने को मिली। परिवारों के साथ आए प्रशंसक अपने स्टिकर पैकेट खोलते और अतिरिक्त स्टिकरों का आपस में आदान प्रदान करती नजर आई। इस आयोजन में 7 वर्ष से के बच्चों से लेकर 77 वर्ष तक के कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया। इनमें कई ऐसे भी थे जो वर्ष 1978 के विश्व कप से ही पानिनी स्टिकर कलेक्शन की अपनी परंपरा को आज तक कायम रखे हुए हैं। शैलिनी अबन उनसे मिलने गई थी, जहां इस जोश का अंदाजा लगा। विवरण याचना मिश्रा का।
2: क्वेबेका में सप्ताहांत के दौरान एक अलग स्टॉल देखने को मिला। यहां विश्व कप 2026 को समर्पित पानिनी कलेक्शन के औपचारिक विक्रेता ने अपना स्टॉल लगाया था। एक खास अभियान जो अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेले जा रहे फाइनल्स मैच के साथ समाप्त हुआ। कई लोग वहां पर गए हुए थे। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा चुका है और अंतिम पड़ाव भी समाप्त हो चला है, लेकिन फिर भी कल वही जज्बा देखा गया जो पहले दिन था और उससे पहले, खासकर कलेक्शंस को लेकर, स्टिकर्स को लेकर।
3: La Coupe du Monde, une après chaque 4 ans, c'est un fun, juste pour peut-être rentrer dans le mood, World Cup.
4: Je m'appelle Oviran, moi j'ai 7 ans. Première fois, mon père collection stickers, football, avec mon coton, Messi, Argentine.
5: Moi, c'est la maman de Mathias. Aujourd'hui, nous venons à Tribeca pour faire un échange de stickers en même temps pour acheter pour le manquant. C'était une grande joie, mon père compagne mon garçon,
6: c'est
5: redip.
6: C'est mon argent pour remplir le livre et collectionner et rien d'autre parce que j'aime bien le foot.
7: Je vais m'acheter trop collectionné, mais c'est à l'examen, tout ça là. Mais la dernière jour, je fais le maximum pour remplir total dernier lire. Encore une promo, les saucisses 3 en 2000.
2: Kuch parivar, kal bhi album ke saath saath uski digital sanskaran ka istemal karte dikhai diye. Khalif parivar bhi wahan par gaya hua tha.
8: Digitalement fini. Dès le début, même quand tu finis game au band sticker, moi tu peux finir mettre.
9: Maybe USA 94 and every 4 years. Then when I came back to Mauritius, me and my wife started collecting and then now we pass it on to my son.
10: So I actually got interested in collecting stickers from YouTube. I just thought, wow.
2: वहीं शुक्रवार से त्रिबेका में मौजूद पानिनी की विक्रेता टीम का कहना है कि पूरे अभियान के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नवाज के अनुसार इस दौरान कई हजार लोगों ने स्टॉल का दौरा किया, एक ऐसा जज्बा जो कल मैच के फाइनल्स के साथ समाप्त हुआ और आने वाले 4 सालों तक लोग अपना एल्बम या स्टिकर्स देखकर इन पलों को याद जरूर करेंगे।
11: Là, actuellement, nous avons 7 à 8 collègues. Nous travaillons dans différentes sections. Et on a fait un côté de la vente, Photoshop, distribution stickers, nous faisons la croisette et nous faisons les trianos aussi. C'est tout. C'est mon plein.
0: अपने एल्बम्स को आखिरकार पूरा करने या लगभग पूरा करने के

0: त्रिबिका के कलेक्टर्स के मन में अब केवल एक ही योजना है, दो साल बाद होने वाला अगला यूरोस्टिक की नई खोज के लिए। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल का 19 जुलाई 2026 को यानी कल कौंडोस के विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। जांच के बाद उन्हें आवश्यक उपचार दिया गया और एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। राष्ट्रपति की स्थिति स्थिर है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने जनता से प्राप्त शुभकामनाओं और समर्थन के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। सूचना एकत्र करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी कब आपराधिक मिलीभगत में बदल जाती है? 94 बिलियन रुपए के गांजा जब्ती मामले के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जयेश गंगादीन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। डीपीपी के कार्यालय ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद पोर्ट लुइस जिला अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई को बरकरार रखा। जयेश गंगादीन का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्होंने केवल खुफिया जानकारी जुटाने के अपने कर्तव्य का पालन किया था। दूसरी ओर मादक पदार्थ निरोधक विशेष इकाई यानी कि अत्सु को संदेह है कि उन्होंने संवेदनशील सूचनाएं आतिश गजादव नामक व्यक्ति तक पहुंचाई, जिसे जब्त की गई गांजे की खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं में से एक माना जा रहा है। लुवीना सूफी, याचना मिश्रा।
1: अपराधी नेटवर्क में घुसपैठ करने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इंटेलिजेंस शाखा के पुलिस अधिकारियों को कई बार गुप्त रूप से काम करना पड़ता है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ता है। ऐसे संपर्क अक्सर ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए ज़रूरी माने जाते हैं जो पारंपरिक जाँच तरीकों से हमेशा नहीं मिल पाती। हालाँकि यही संपर्क कई बार संदेह भी पैदा कर देते हैं। सर्जन जयेश गंगादीन के मामले में जांचकर्ता मुख्य रूप से उनके फोन पर हुई बातचीत और इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध के साथ उनकी मुलाकात को आधार बना रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील स्टीवन सोहबवा का कहना है कि ये सभी संपर्क उनके मुवक्किल के फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिस में निभाई जा रही औपचारिक जिम्मेदारियों का हिस्सा हैं। वे अभी भी बोल रहे हैं कि उन्होंने काम के लिए इस व्यक्ति के साथ संपर्क किया। उन्हें तस्करों के बारे में जानने के लिए खुद को खतरे में डालना ही पड़ा है। ये मामला उन इंटेलिजेंस पुलिस अधिकारियों के सामने आने वाली विडंबना को भी उजागर करता है, जिन्हें अपराध से लड़ने के लिए कई बार उन्हीं लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है जिन पर अपराध में शामिल होने का संदेह होता है। पूर्व जांच अधिकारी रंजीत जोखू का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी किसी भी गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से केन्या मूल के एक नागरिक शॉल्स नलिसी अमासिम्बी के मामले का उल्लेख किया, जिसे हेरोइन की तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया गया था और जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अप्रत्यक्ष रूप से जांच के दायरे में ही आ गए। केन्या का निवासी जहाज में हेरोइन ले आया एक कोने में छिपाकर एक बड़े जहाज में। एक खबरी ने बताया कि माल बाहर आ रहा है। मेरे सहयोगी ने तस्कर होने का नाटक किया। जब व्यक्ति निकला तो खबरी ने कहा कि मैं एक हिस्सा ले जाता हूँ, तुम दूसरा हिस्सा ले जाओ। खबरी ने कभी भी नहीं बताया कि वो भी ड्रग्स बाहर ला रहा है। खबरी उस डीलर और पुलिस को चकमा देकर 2 किलो ड्रग्स लिए भाग गया और मिला ही नहीं। ड्रग्स लाने वाले ने कहा कि पुलिस उस खबरी से मिला हुआ है। मामला अदालत भी गया। अब जांच का मुख्य सवाल ये है कि क्या ये संपर्क वास्तव में सर्जन गंगादीन की खुफिया ड्यूटी का हिस्सा था, या फिर जैसे कि जांचकर्ताओं का संदेह है ये उस आपराधिक नेटवर्क में उनके मिले होने के सबूत साबित हो सकते हैं।
0: इसके अलावा सर्जन जायेश का

0: in Kiva Kill, Steven Sobois, Attorney General Gavin Grover को पत्र भेजने का इरादा रखते हैं. वे अपने मुवक्किल की लंबी हिरासत की शर्तों का विरोध कर रहे हैं. हालांकि अधिकारी ने जमानत राशि जमा कर दी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन पक्ष द्वारा दायर स्थगन मोशन के बाद उनकी रिहाई सस्पेंड कर दी गई है. वकील के अनुसार कानून द्वारा निर्धारित ये मोशन अदालत के फैसले के तुरंत बाद दायर की जानी चाहिए थी, न कि कई घंटों बाद. ये ध्यान देने योग्य है कि डीपीपी ने निदेशक के पास अब इस सशर्त रिहाई की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए 7 दिन का समय है. घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. मॉरिशस की संस्था women.mu का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है. संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है. संगठन की एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली जीजी ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें हिंसा का आरोपी सरकारी या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहता है. women.mu का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. संस्था ने जोर देकर कहा है कि कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके आवास के अधिकार की भी रक्षा करें. उन्हें सुनते हैं जिनसे बात की शबनीज उजिया वैदैली ने. एक बार फिर याशना मिश्रा का विवरण.
1: Women.mu, c'est un nouveau plateforme en ligne dans lequel nous faire ban plaidoyer.
2: Women.mu एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, जिसमें हम शिकायतें करते हैं, अपनी मांगे रखते हैं या फिर सवाल उठाते हैं. सबसे पहली शिकायत या सवाल बोल दीजिए कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल को लेकर है, जिसका हमने खुलकर स्वागत जरूर किया है. लेकिन हमारा एक सवाल है कि यदि मामला ऐसे घर में हुआ जो सरकारी है, तो कौन घर छोड़ के जाएगा? यदि एक अफसर सरकारी विभाग में काम करता है और कागज उसके नाम पर है, उसने हाथ उठाया, तो अगर वो अपने साथी को बाहर निकाले तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा. पुलिस भी बोलेगी कि घर पीड़ित के नाम पर नहीं है. तो क्या स्टैंडिंग ऑर्डर्स को लेकर कोई बदलाव लाया जाएगा या नहीं, यही हमारा सवाल है.
0: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के नए पानी कनेक्शन के लिए खरीदे गए लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है. ये दो पाइपों को जोड़ने वाले कनेक्टर नवंबर 2024 में प्रोक्यूमेंट ऑफिस के माध्यम से एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए थे. हालांकि जून से इन्हें स्थापित करने के दौरान CWE की तकनीकी टीमों को लगातार कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. स्थिति को देखते हुए CWE ने पूरे स्टॉक को आपूर्तिकर्ता को वापस भेजने का निर्णय लिया है. ये उपकरण 3 वर्ष की वारंटी के दायरे में है. अब जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि समस्या CWA की ओर से किसी लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है या फिर खरीद प्रक्रिया अथवा उपकरणों की गुणवत्ता में ही कोई कमी थी. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के जनरल मैनेजर श्याम तानु को सुनते हैं.
3: C'est une crise qui est installée il y a à peu près 2 ans, environ 30 000 commandes, selon une première information qui m'ont gagné avec le département concerné.
2: 2 साल पहले ये पार्ट्स खरीदे गए थे, 30,000 ऑर्डर्स थे. पहली जानकारियों के मुताबिक पानी के लीकेज के समाधान के लिए ये पार्ट्स खरीदे गए कनेक्टर्स, लेकिन ये डिफेक्टिव हैं और बार बार इन्हें बनाना पड़ रहा है. हमने आंतरिक ऑडिट की मांग की है ये जानने के लिए कि ये स्पेयर पार्ट्स कब और कहां खरीदे गए, किसने मंजूरी दी. अभी तक कदम नहीं उठाया गया है. मैंने प्रोक्यूमेंट विभाग को निर्देश दिया कि इस पार्ट को वापस संबद्ध कंपनी को भेजा जाए. क्या लापरवाही हुई है, खासकर CWA के कर्मचारियों के स्तर पर या प्रोक्यूमेंट के स्तर पर, हम करीब से स्थिति पर नजर रख रहे
3: हैं. De la section du procurement ou finalement un manquement au niveau des spécifications. Donc là, le management nous regarde ça de très près.
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में एंडी बर्नहम आज नए प्रधानमंत्री के रूप में

पदभार ग्रहण करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद वह आधिकारिक तौर पर सर स्टार्मर की जगह लेकर देश के 59वें प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में वह ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री होंगे। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने पहले संबोधन में बर्नम के ये कहने की उम्मीद है कि वह लगातार बदलते प्रधानमंत्रियों के दौर को लेकर पूरी तरह सचेत हैं और देश को अधिक स्थिर तथा जिम्मेदार राजनीति की जरूरत है। वह जनता को कुछ राहत और सुकून देने का भी वादा करेंगे तथा ब्रिटेन के सामने मौजूद चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करने की बात कहेंगे। उधर कंजर्वेटिव पार्टी की नेता कैमी बेरेनॉक ने बर्नम को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बर्नम ने सांसदों के सवालों का सामना करने और मीडिया के कठिन सवालों का जवाब देने से परहेज किया है। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर। दोपहर बाद में बादल विकसित होंगे और रहकर बारिश होगी। अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। रात के दौरान आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हवा हल्की बहेगी, समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा तथा धीरे धीरे समुद्र खराब होने लगेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। दोपहर में खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर दोपहर बाद से। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और शाही इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:48 पर। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क और फ्रेंच डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल पर हमारे सहयोगी कादर का, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुनते हैं अभी शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। प्लेनवेयर पोर्ट लुइस में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल फरीद हिमामाले, जो पहले प्रिंटन लेन पॉइंटो साबल रहते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज सुबह 11 बजे अल एहसान प्लेनवेयर पोर्टलुइस से उठाकर दफनाने के लिए पॉम्पलेमुसेस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शिवाला लेन लातूर रोड रोस्टिया में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री देवानंद गिरधारी, जिन्हें विनोद सिगिल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर गोष्ठे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। रॉय रोड गांगुब में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जसोदा सिबारन, पैदाश नाम भुवन और जिन्हें जसोदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे देवानंद सिबारन के घर गांगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। लासूस कैट्रबोन में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेन मर्तेन, जिन्हें नादेन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो बुलोंजे पेजा
के मालिक थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर कैट्रोपोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते मोगोश की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टीडीआर 1 PM रॉयल रोड ग्रैंड रोड में 96 साल की श्रीमती इंदिरा

अवती जारी, श्रीमती इंद्रावती जारी, जिन्हें विद्वंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे सचिदानंद मुनिया के घर गौनगोत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूडे at 11 AM। डॉफिन लेन शतु बेनारस में, डॉफिन लेन शतु बेनारस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मदत्त कौचिक, श्री धर्मदत्त कौचिक, जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे उमेश कौचिक के घर शातु बेनागर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। डिस्पेंसरी रोड विचे मिल्खियोले में, डिस्पेंसरी रोड विचे मिल्खियोले में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री इंद्रदेव बंधन, जिन्हें आत्मा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनकी पत्नी नर्मदा बंधन के घर विचेमिल त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन त्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। सुल्फिरिनो नंबर एक वाकवा में, 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती महेश्री देवी दयाल, पैदाश नाम चकोरी और जिन्हें बीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फिरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: वेरी गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, कैसे हैं, हाल चाल, सब बढ़िया, सब ठीक, हमारा भी कुछ ऐसा ही है भाई। मॉर्निंग का जो नज़ारा हम देख क्या रहे ना, ओ माय गॉड। वैसे आज तारीख कौन सी है, आज 20 जुलाई हो गया, ओहो जुलाई महीने में 20 दिन ओवर, क्या बात है। 7:06, यस विदिता का साथ है, वेलकम वेलकम वेलकम, और आपका स्वागत है मॉर्निंग बीट रेडियो मस्ती पर। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज मॉर्निंग में जो नज़ारा हम देख कर आए ना, ऐसा लगा कि आज, हमेशा तो हम बोलते हैं ना कि जब ऐसे बादल घिरे रहते हैं पहाड़ों पे, ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों ने मफलर पहना हो, आज ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने खुद कंबल ओढ़ा हुआ हो। ओ माय गॉड, ये जो मैं आपको क्या ही बताऊँ, लोग खेत में काम कर रहे हैं, ऊपर से ये कोहरा छाया हुआ है, एंड वैसे ज़मीन पे ऐसे नीचे नीचे वाइट वाइट बहुत खूबसूरत लग रहा था, और पीछे अगर मैं रियर मिरर में देख रही हूँ तो सनराइज़ हो रहा है। ओह, मैं तो उसी में डूब के रह गई। आप बताओ आपका क्या हाल है।
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: मॉर्निंग में इतना खूबसूरत नज़ारा देख लिया तो मैं आपके चेहरे का स्माइल भी देखना चाहूँगी। मैं जानना चाहूँगी कि आप कितना अच्छा स्माइल कर सकते हैं। चलो एक बार स्माइल करने की कोशिश करो, एक बार ट्राई तो करो। वाह क्या बात है, आपने कभी अपने आप को स्माइल करते हुए देखा ही नहीं। मैं आई गेस आप कभी स्माइल नहीं करते अपने आप के साथ, है ना। तो फिर अगर आप अपने आप से स्माइल नहीं करते तो दूसरों के साथ क्या स्माइल करोगे। इसीलिए लोग कहते हैं कि शक्ल देखिए इसकी, लगता है शक्ल पे 12 बजे हैं। ऐसा नहीं करते, हमेशा स्माइल करना चाहिए। आप स्माइल करते हो, बहुत अच्छे लगते हो। ये जो प्यारा सा स्माइल आपने मुझे दिया है ना, चलिए इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहूँगी। मेरे पास एक टिकट है और ये जो टिकट है, ओ माई गॉड, अभिजीत भट्टाचार्य का कॉन्सर्ट 90s का वो इरा, कौन नहीं जीना चाहता उस मोमेंट उन पल को। मैं तो भाई दीवानी हो गई जब से मुझे पता है कि ये आ रहे हैं। तो चलो यहाँ पर अभिजीत दा के जो गाने हैं वो आपको मौका मिलेगा कि आप जाकर उसके कॉन्सर्ट में सुने। एंड आपको अगर आपने मुझे सही जवाब दिया तो मौका मिलेगा टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s ईरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य। ये लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है सैटरडे 25 जुलाई को, यानी कि इस सैटरडे को होने वाला है 7:30 PM SBICC Pi। सोचो वाह, अभिजीत का गाना, वो ओले ओले करते आएंगे और हम लोग हौले हौले खुश होते जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो लेजेंडरी हिट्स है, जो टाइमलेस मेलोडीज हैं, एकदम प्योर म्यूजिकल मैजिक होने वाला है। तो इसका हिस्सा बनना चाहते हो, टिकट अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। बिल्कुल 850 रुपीज़ से शुरू होता है, अवेलेबल एट mochike.mu या hizutayu। जल्दी करो, टिकट धराधर जा रहे हैं। और कॉल करना है अगर हॉटलाइन पे, अगर आपको रिजर्व करना है, इट्स 4669999 4669999। तो जल्दी करो, अपने टिकट्स अभी से ही ले लो। और चलिए देखते हैं आज किसकी किस्मत अच्छी है। आपको मुझे बताना है कि अभिजीत भट्टाचार्य किस साल में पैदा हुए थे। अगर आप डेट और मंथ्स भी बता दें तो ठीक है। आपको मुझे बताना है कि अभिजीत दा किस साल में पैदा हुए थे। सही जवाब ऑन 5499 1294।

0: Welcome to Radio Musty.
1: Un nouveau voyage commence pour Maurice. Avec Ethiopian Airlines, la route Maurice Addis Abeba ouvre l'accès à plus de 145 destinations à travers l'Afrique et le monde. Pour les affaires, les études, la famille ou l'envie de découvrir ailleurs, une nouvelle option s'offre à vous. Contactez votre agence de voyage pour organiser votre prochain départ avec Ethiopian Airlines.
0: RM2 Radio Musty.
2: Testing 1 2.
3: Yeah. कभी सोचा है
4: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
3: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
3: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
4: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आजे
3: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
3: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में.
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363.
3: और आखिरी तारीख है 26th of July. तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो.
4: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे. एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
3: और आपका चांस.
4: डोंट मिस इट.
0: RM2
5: रेडियो मस्ती.
6: Avec Canal+, je stream grand matin, je stream midi, je stream tantôt, je stream à soir. Le tout moment, l'écran connecté, côte-moi, la mère, côte-belle-mère, n'importe qui l'est.
7: T'as y'a qui te stream, Goubza?
6: Dernier blockbusters, comme Anaconda, le Canal+, House of the Dragon, saison 3, le HBO, Durandal, le Star Gold, Enola Home, saison 3, le Netflix, à partir de 500 roupies par mois. App Canal+, un clic.
8: Canal+, c'est plus que vous ne l'imaginez. La plateforme qui réunit cinéma, séries, sport, telenovelas, Bollywood, mais aussi HBO, Netflix, le tout au même endroit.
9: Offre soumise à condition à Maurice. Modalités sur canalplus.com.
10: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Une thermos de 500 ml à 449 roupies

0: 95 et le kilo de chips, winners, allumettes ou french fries à 109,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
1: On est tous Winners.
2: RM2
3: Radio Musty.
2: A good beat for your morning show.
3: Come on.
2: RM2
3: Radio Musty.
4: I know guys, you can feel the musty and you can feel कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैं टेंशन में आ गई हूँ कि इतने सारे लोगों ने सही जवाब दिया. अब मैं नाम किसको दूँ, इसको दूँ या उसको दूँ, किसको दूँ. ऐसा करते हैं ना, लकी ड्रॉ तो हम कर ही चुके हैं. लकी ड्रॉ में नाम किसका आया है वो पढ़ लूँ. चले, तो मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने आपसे पूछा था कि अभिजीत जी का जन्मदिन कब पड़ता है, किस साल में पैदा हुए थे. एंड द राइट आंसर इज 30th of October 1958. एंड आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. लगता है आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं. तो देखेंगे कि कॉन्सर्ट में आप कितना एंजॉय करेंगे, कितनी आपकी आवाज़ ऊंची आएगी, कितना आप चिल्लाएंगे. तो यहाँ पर हमने सवाल किया, आपने जवाब दिया. अब लकी ड्रॉ के बाद ये भी जानना ज़रूरी है हमारे विनर कौन हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर लकी ड्रॉ में नाम आया है आशा खुशियाल का, जो रहते हैं न्यू गोव. कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल ये, हाँ मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया आप चीख रही हैं. ऐसे ही चीखना, आई मीन खुश रहना. तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आपका नाम यहाँ पर आया है लकी ड्रॉ में. आपको मिल रहा है एक टिकट टू द गोल्डन 90s ईरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट 25 जुलाई 7:30 PM SBICC पाई में हो रहा है. मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये जो अभिजीत जी है ना, इनका मैं पर्सनली, जैसे मैंने हमेशा बोला है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं फिर बोलूँगी कि ये इंसान बड़े अच्छे हैं. और जब ये स्टेज पर आते हैं, परफॉर्म करते हैं ना, तो यू रियली फील द मैजिक. जिस तरह से वो बात करते हैं, वो अपने आप में बड़े खुश रहते हैं. और जो लोग अपने आप में खुश रहते हैं ना, तो उनको कोई चिंता नहीं होती कि दूसरों को अपनी खुशी में ही शामिल कर लेते हैं. सो वी रियली हैड अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट टाइम. अगर आप शामिल होना चाहते हैं इस कॉन्सर्ट में, टिकट्स आर अवेलेबल एट mirchike.mu एंड रिजर्व था यू 850 rupees स्टार्ट करता है प्राइस. एंड रिजर्वेशन के लिए हॉटलाइन कॉल करें 4669999.
2: रेडियो मस्ती,
3: फील द मस्ती.
4: ये कुछ ऐसे मैजिकल गाने हैं जो आप लाइव सुन पाएंगे.

0: 2.
1: Radio Musti.
0: Moments that matter with SICOM.
2: आज हमर दू कोरी 11 बरिस होता सैकौती है न होता ई उमेर है जब इंसान पाछे घूम के अपन जिंदगी के तनी आज जस्ती से देखे लगीला उ जवान छोकरा छोकरी याद आवेला जे एगो जमाना में हमनी रनी जा पहिला कमाई के वेतन लिफाफा में बहुत जतन से रखल उ नोट अपन घर बनाई के सपना शादी लयका और उ त्याग जेकर बारे में कोई नहीं आज ले बोलीला हमर उ बखत याद आवेला जब लाकुजिन के लताब पर घर के हिसाब किताब करथनी उ महीना अभी भी याद बा जब ई निर्णय लेके पड़ल रहल कि घर बनाई के या नवा गाड़ी किने के आर उ पल जब अपन सुतल लड़का के देख के मन में खाली एक के गो बात ठन ले रनी चाहे

0: कुछो हो जाए, इलोक के कोनो चीज के कमती नहीं हुई दीप। फिर समय बितले गल, लड़का आज बड़ा हो गए लंजा, माँ बाप बूढ़ा होई लग लंजा, जिम्मेदारी भी अपन रूप बदल दिली बाटी। और एक दिन एहसास होएला कि जीवन भी सादी निखन है, जोन खाली निमन दिन के सहारे नहीं चलेला, ई में उतार चढ़ाव सब रहेला, ई चलेला एक दूसर के साथ निभैला से, विश्वास से, और वो इंसान के संगे जे बिना कोनो शोर शराबा करत हर बरिस हर दुख सुख में तोहर संगे खड़ा रहेला। वो तोहर पत्नी या पति हो सकी, या फिर कबो कबो तोहर जीवन साथी भी, जिकर बारे में आप हरोज के शायद नहीं सोचिला, काहे कि वो बस हमेशा तोहर संगे बगल में खड़ा रहेला, जे तोहर बनावल हर एगो चीज के रक्षा करेला, तोहर सपना और जीवन के सब योजना में हाथ देवेला, आई होला काल के तैयारी में तोहर सहारा बनेला, और तब भी तोहर संगे खड़ा रहेला जब भविष्य निमन से नहीं रोकिला। एकदम एगो भरोसामंद बीमानी खन, एगो ऐसन संगत या जिकर पर आंख मुन के विश्वास करी सकबा। आजे तुहर पहिला सपना, सब बड़ा फैसला, सब चिंता प्लान और आई होला कई गो पीढ़ी ले हर कदम पर तुहर संगे रहेला। सिकम की कहानी भी ऐसी है, 51 बरिस के भरोसा की कहानी, परिवार, माँ बाप, लड़का और आज लड़का के साथ निभाते 51 बरिस होगल, सैकौती एनो होगल, समय बीतल गल, आर सिकोम परिवार के एगो सदस्य जैसन बनकर। काहे की सच ता यही है, जिंदगी के सबसे खूबसूरत कहानी हमेशा विश्वास की कहानी रहेला।
1: It was moments that matter with Sikom.
2: Flash Sales pe débok kout metrik. Depi 17 jusqu'à 31 juillet, vin profite bal méga promo l'ON Grand Sélection produit pour ou la case. Jusqu'à 50% discount l'eau sanitaire, robinetterie, lavabo et collage. Prix là, flash net. Promo là, extra. Metrik, une enseigne du groupe KRMG.
3: RM2 Radio Musti.

0: हेलो सविता, हेलो
1: हेलो
0: सविता,
1: नचिता जी।
0: सविता जी, नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा
1: मैं
0: नहीं हो
1: यूज
0: सकता
1: हूँ आपकी वॉइस से ना,
0: यार।
1: नचिता जी है ये।
0: अब मैं क्या करूं, अब मैं किसकी आवाज में बात करूं, अब मैं पता नहीं मैं क्या करूं। मैं जिनको भी फोन करती हूं, मैं इतना सोच समझ में, पता है मैं नीतू के साथ बैठ के प्लान कर रही थी कि आज तो मैं कुछ कराऊंगी इनसे, और आप आ गई और आपने तो बस पूरा यहाँ पे मेरे, क्या बताऊँ, मैं लोगों को सरप्राइज करना चाहती हूँ, लोग मुझे शौक देना शुरू कर रहे हो आप लोग, मेरा हार्ट, मेरा दिल। लेकिन आज का दिन बहुत खास है, आज है आपका बर्थडे, है ना?
1: यस,

0: मैं आपसे
1: आपकी एज नहीं पूछूंगी क्योंकि आपकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि आपकी बेटी ने एक्चुअली मुझे कॉल किया है और मैंने पूछा भी कि सविता जी हैं, उन्होंने कहा मैं ही हूँ और मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही जैसे एक घर पे बैठने वाली ये कंप्लेन करने वाली लेडी नहीं है बल्कि आप एकदम मस्त रहती हैं, खुश रहती है। और उन्होंने बोला भी मेरी स्वीट मॉम के लिए, आप स्वीट नहीं, आप एकदम जानदार हो, आप एकदम सुपर वुमन हो भाई, क्या बात है। और मैं आपकी एज नहीं बताऊंगी। हाँ जी, तो आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से। आपको एक वाउचर मिल रहा है जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर आज या तो फिर कल, आपके पास दो ऑप्शन है। आपको आईडी कार्ड के साथ कलेक्ट करना पड़ेगा। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई लव यू सो मच। मैं चाहती थी कि आप मेरे लिए गाना गाए, आप प्लीज, मैं यही करना, कोई भी गाना प्लीज आप मेरे लिए कोई गाना गा दो। आपको वो गाना पता है, सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना, वो गाना गाए ना प्लीज, मैं यही गाना आपसे गवाने वाली थी।
0: ये तो मुझे मालूम नहीं है बेटा जी।
1: कोई भी पूरा, कोई भी गाना अभी अभी आपने पहचान लिया, मैं शौक में हूँ, प्लीज मुझे शौक से बाहर निकालो और प्लीज मेरे लिए कोई गाना गाओ।
0: फूल तूने भेजा है खत तूने, खून ही मेरा दिल है, फूल तूने भेजा है खत तूने,
1: क्या बात है।
0: तुम्हें तो क्या देखा तुमने, सपना,
1: सपने में आपने मुझे देखा होगा और किसको देखा होगा, इसलिए तो पहचान लिया मॉर्निंग में।
0: ये मुझे नीतू जी सिखाती है सॉन्ग।
1: चलो, नीतू ने सिखाया और वेदीताल के लिए गाना गाया और दोनों बहन ये भी है, यही पे है। थैंक यू सो मच, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आज का दिन आपके लिए एकदम जबरदस्त मस्त ऐसे ही हो, खुश रहना, स्माइल करते रहना। थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
1: यू टू, हैप्पी बर्थडे।

0: व्यंग्य समय हो गया है कि इनमें नहीं इनमें झांकते हैं कहां गए आ गए
1: स्पोर्ट्स न्यूज़
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: यस दोस्तों, समय हो गया है मिलने का हमारे दोस्त अरविंद से।
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
0: और यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, कल का जो मैच था एकदम जबरदस्त था। अर्जेंटीना स्पेन दोनों कल तो बस यू कह लीजिए कि बहुत सारी निगाहें थी इन पे और हर कोई अपने टीम को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बना स्पेन, क्या ये सही हकदार रहा? इसके लिए हम मिलते हैं ना, जानते हैं हमारे दोस्त अरविंद से वो क्या कहना चाहते हैं। कल के कुछ हाइलाइट्स हैं और अगर आपने फिर से उनको जीना चाहा, फिर से उनको फील करना चाहा तो
4: The president of the game, the president of the USA.

That's what he's

0: Viva España!
1: Viva España, World Cup 2026 का चैंपियन स्पेन, Ferran Torres का एक्स्ट्रा टाइम विनर और कप्तान रोड्री के हाथ में ट्रॉफी, बैटल ऑफ एंड्योरेंस, हर प्रकार से स्पेन इस वर्ल्ड कप का सही हकदार साबित हुआ। अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने पूरे मैच में स्पेन के अनगिनत प्रयासों को रोका, लेकिन कब तक टोरेस ने अर्जेंटीना को तोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में, सो स्पेन चैंपियन बना। उसका गोलकीपर उदय साइमन, 7 क्लीन शीट, गोल्डन ग्लोव उसके नाम, गोलकीपर अवार्ड है ये। और इस पूरे वर्ल्ड कप में उसने केवल एक गोल कंसीड किया है, पहली बार ऐसा हुआ है। स्पेन वर्ल्ड ओलंपिक और यूरोपियन चैंपियन, उसकी महिला टीम भी चैंपियन है। स्पेन के खिलाड़ी कुबासी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। कुबासी केवल 19 साल का है। रोड्री को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया, टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अवार्ड। और किलियान एम्बापे बना टॉप स्कोर लगातार दूसरी बार के लिए। सो वर्ल्ड कप 2026 पूरा हुआ, स्पेन चैंपियन, ला होगा को बधाई, वेल डिजर्व्ड, सभी लोग मानेंगे जरूर। क्रिकेट लॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाते हुए इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 27 रनों से हराया, सीरीज इंग्लैंड जीत गया 2-1 से। और साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस के स्टेज 15 में रेमको इवानिपोल की जीत, इस रेस में योनास विंगेगार्ड का एक्सीडेंट हुआ, वो आगे नहीं भागने पाएगा। लीडर तादेश पोगाचार दूसरा स्थान ले पाया, अभी तक येलो जर्सी उसके पास है। So it's over, the World Cup is over. Radio Masti team mein for the whole month we had a wonderful time or the best team won La Roja. Viva España aur Lionel Messi khali haath gaya lekin sabka dil jeet kar gaya. Aapko bhi thank you so much, aap logon ne hamara saath diya is pure World Cup mein. Phir aayenge kyunki hamare saath sports ki duniya kabhi soti nahi. Take care. Bye-bye.
2: Yeah, I do agree. Thank you so much, Arvind.
3: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
4: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
5: Tak, tak, Bollywood.
6: Tak, tak, Bollywood.
7: Radio Masti.
8: RM2
9: Radio Musty.
10: Tchou, qui peut manger aujourd'hui? Mais pose vite seulement là. Marie longue, ça moi là.
11: Max Savers Mill, c'est gars. Bon goût, petit prix. Le plan parfait. Venez découvrir les Max Savers Mills car il y en a pour tous les goûts.

0: RM2 Radio Masti.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: FM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 8 बजे हैं।

8 बजे के भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करल जाता सबसे आगे सब कोई के नमस्ते आप प्रणाम और देश की समाचार संगे हमने ये बुलेटिन शुरू करब जा दुनिया भर निखन मॉरिशस में भी काल जश्न के माहौल बनल रहल फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के खिताब स्पेन जीत लेले बाटे फीफा विश्व कप 2026 के महा मुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के संगे देखल गल न्यूयॉर्क में खेला गल फाइनल के मुकाबला में स्पेन मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हरा के दूसर हला विश्व चैंपियन बन गल बाटे अनिर्धारित 90 मिनट ले दोनों टीम कोनो गोल नहीं दले रहलन जा मुकाबला के अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचला के बाद 62वां मिनट में मैदान पर उतरल फेरों तोरेस 156वां मिनट में ये निर्णायक गोल डाल के स्पेन के जीत दिलाई लग अर्जेंटीना के 93वां मिनट में एंजो फेर्नांडेज के रेड कार्ड के बाद 10 खिलाड़ी के संगे ई खेल खेलल गल इससे आगे स्पेन 2010 में पहला हला विश्व कप जीतले रहल मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड चैंपियन बन गल बाटे ई सब मुकाबला और फाइनल के मुकाबला आप सकल जा एमबीसी के चैनल पर देखे सीधा प्रसारण में और ये भी याद रखिए कि तीसरा स्थान के मुकाबला में इंग्लैंड तीसर का स्थान पर इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस की कप्तान किलियान एम्पापे जी हाँ इंग्लैंड जो नालबा उस तीसर का स्थान पर आलबा पर फ्रांस के से हार के बावजूद भी कप्तान किलियान एम्पापे सामदी के मायामी में 2 गोल डाल के फीफा विश्व कप के इतिहास में नवा कीर्तिमान स्थापित कर ले बाटे एम्पापे विश्व कप 2026 के समापन 10 गोल के संगे सर्वाधिक गोल करे होला खिलाड़ी के रूप में सामने आल बाटे विश्व कप में कुल 22 गोल के संगे ऊ अब टूर्नामेंट के इतिहास के वर्ल्ड टॉप गोल स्कोर बन गल बाटे किलियान एम्पापे विश्व कप के इतिहास में 2 हला गोल्डन बूट जीते होला पहला खिलाड़ी बन गल बा और फीफा की जो खेल बाटे फीफा विश्व कप 2026 के नाम के आते ही पानिनिस्टी का एल्बम के उत्साह भी अपन चरम पर पहुंच जाला और काल दिमास के मॉरिशस के त्रिबिका शॉपिंग मॉल में स्थित एडिशन अभियान के अंतिम दिन के आयोजन होल जहां पर हजारन गो संख्या में आदमी अपन एल्बम लेके आ रलन जा अस्टिक के तलाश करे आ रलन जा फजीर से ही मॉल में लंबा कतार लौकल रहल परिवार के संगे फैंस जुनबा उ लोग अपन स्टिकर पैकेट खुलन जा आर अतिरिक्त स्टिकर के आदान प्रदान कर जा एकर में 7 बरिस से लेके 77 बरिस से लेके कलेक्टर भी संगे रलन जा दूसरा समाचार में राष्ट्रपति भवन देने से एगो विज्ञप्ति जारी करल गल बाटे जेकर में बोलल गल बाटे कि गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल 19 जुलाई 2026 के कांग्रेस के विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण करेगल रनन जांच के बाद उनकरा आवश्यक उपचार दिवल गल आर एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर रखल गल रहल राष्ट्रपति के स्थिति स्थिर बा आर समय समय पर उनका स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलते रही राष्ट्रपति धर्म गोखोल जनता से मिलल सब शुभकामना और समर्थन खातिर अपन हार्दिक आभार प्रकट कर ली हवन सूचना एकत्र करे के पुलिस के जिम्मेदारी है पर ये जिम्मेदारी कब अपराधी का मिली भगत में बदल जाला 94 मिलियन रुपया मूल्य की गांजा जब्ती मामला के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा के विषय बनल बाटे ये मामला में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जायेश गंगादीन के सुख के जमानत मिल गल डीपीपी के दफ्तर उनका जमानत के

विरोध नहीं करला का जिक्र बाद पोर्ट लुइस जिला अदालत में उनका सशर्त रिहाई के बरकरार रखल गल। जायश गंगा दिन बोलन की ऊ निर्दोष हवन और ऊ खाली खुफिया जानकारी जुटाई के अपन कर्तव्य के पालन कर ले रलन। दूसर दिन माधक पदार्थ निरोधक

0: जब्त करेगा गांजा के खेप की संभावित प्राप्तकर्ता में से एगो मानल जाला। इकर अलावा सर्जेंट जयेश गंगादीन के वकील स्टीवन बोवा सोहोबुआ अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर के पत्र भेजे की इरादा रखत हवन। उ अपन मुक्केल की लंबा हिरासत के शर्त के विरोध करत हवन। हालांकि अधिकारी जमानत राशि जमा कर दिले हवन, पर प्रोसिक्यूशन पक्ष देने से दायर स्थगन मोशन के बाद उनका रिहाई सस्पेंड कर दिली सस्पेंड हो गल बाटी। वकील के अनुसार कानून देने से निर्धारित मोशन अदालत की फैसला के तुरंत बाद दायर करे के चाहत रहल, पर आर एक जगह पर कई घंटा लगल। ई ध्यान दे के योग्य बा कि डीपीपी के निदेशक लगे अब इस सशर्त रिहाई की समीक्षा के अनुरोध करे खातिर 7 दिन के बखत बाटी। घरेलू हिंसा के शिकार महिला लोग अपन सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करे खातिर मजबूर नहीं हवन जा उलो के मजबूर नहीं हो के चाहेला। मॉरिशस के संस्था women.mu बोले बाटे कि पीड़ित के सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए के सरकार की जिम्मेदारी है। संस्था डोमेस्टिक अब्यूज बिल के स्वागत कर ली बाटी। संगठन के एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली जीजिए विशेष रूप से उ मामला पर ध्यान आकर्षित कर ली बाटी, जिकर में हिंसा के आरोपी सरकार या कोनो सार्वजनिक संस्था दिने से आवंटित आवास में रहेला। women.mu मानेला कि ऐसन परिस्थिति में भी पीड़ित के अपन घर छोड़े खातिर मजबूर नहीं करे के चाही। संस्था ई जोर देले बाटे और ई बोले बाटे कि कानून में ऐसन प्रावधान हो के चाही जोन पीड़ित के सुरक्षा सुनिश्चित करे के करी और उलोग के आवास के अधिकार की भी रक्षा करी। दूसरा देश के समाचार में ब्रिटेन में एंडी बर्नहम आज नवा प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाले लगियन। किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट करला के बाद वो आधिकारिक तौर से सकस्तामा के जगह लिहन और देश के 59वां प्रधानमंत्री बन जाइहन। गल 10 बरिस में वो ब्रिटेन के 7वां प्रधानमंत्री होयन। डार्विन स्ट्रीट के बाहर अपन पहला संबोधन में बर्नहम ई बोले कि उम्मीद रखत हवन कि वो लगातार बदलत प्रधानमंत्री के दौर के लेके पूरा सचेत हवन और देश के जस्ती स्थिर और जिम्मेदार राजनीति के जरूरत बाटे। एकर दिने उ काम करियन, उ जनता के कुछ राहत और सुकून दे के भी वादा करियन और ब्रिटेन के सामने मौजूद चुनौती और ईमानदारी से सामना करे के बाद भी बोलियन। यही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। अभी 8:08 हुआ था।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website mbc.mu and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी कमर कमरा ना बन जाए इसीलिए उसको हिलाना जरूरी होता है. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर सेकंड आवर ऑफ मॉर्निंग बीट. मैं हूं वेदिता. सुबह 11:12 हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि जुलाई महीने में 20 दिन निकल गए. बस समझो निकल गए. तो आपने बहुत सारे प्लान्स किए होंगे जो हमेशा सोचते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे बाद में कर लेंगे. देखो जुलाई का महीना धीरे धीरे खत्म हो रहा है. जो करना है अभी करना शुरू कर दो. इसी के साथ अभी मैं भी सोच रही थी कि आज प्लान्स क्या है, तो फिर पता चला कि आज अगर बाहर घूमने का प्लान है तो ये जानना जरूरी है कि मौसम कैसा रहेगा. चलिए मिलते हैं आशिता से.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स.
4: मौसम का हाल. हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है. सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना होगा सिवाय ऊंचाइयों पर और दक्षिणी इलाकों में. दोपहर बाद बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी. अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे. रात के दौरान आसमान साफ रहेगा. हवा हल्की बहेगी. समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा तथा धीरे धीरे खराब होता जाएगा. और दोपहर बाद दक्षिणी लगूनों में दक्षिण पश्चिम की ओर से ज्वार उठेंगे और 2.50 मीटर के ये ज्वार होंगे. दोपहर बाद में समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा. खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है विशेषकर दोपहर बाद में. तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच. आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:48 पर.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Une thermos de 500 ml à 449,95 € et le kilo de chips Winners, allumettes ou french fries à 109,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
6: On est tous Winners.

0: 102
1: Radio Musti.
2: Se dit tout seul. Bella. Pape mon gzi sen crunchy deals là. Bitch, chez KFC ce crunchy deals. And Kentucky Joe Burger Box avec ce dit chicky burger et un large fries pour 385 roupies.
3: Crunchy deals KFC. C'est prix maxi taste.
0: KFC. RM2.
1: Radio Musti.
4: Yo.
5: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
5: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
5: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
5: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
5: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
5: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
5: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: L'habitude qui jamais pousse en zé, mou tea time avec Formland.
6: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
2: Et comme vous sortez du travail, il n'a plus.

0: दोस्तों, अगर सपने को सच करना है ना, तो उनके पीछे भागना बंद करो। पहले आंखें खोलना सीखो, सपनों से बाहर आना सीखो और उस सपनों को सच करने के लिए मेहनत करना सीखो। कुछ चीजें उनके पीछे भागने से वो हमें मिलती नहीं है, बल्कि हमसे और दूर चली जाती हैं। और वो चीजें बस हमें मेहनत करने से ही मिलती है। सो प्लीज डोंट चेज द रेनबो। उनके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जितना आप उनके पीछे भागोगे वो उतना ही आपसे दूर भागेंगे। अपनी मेहनत और ग्रोथ पे फोकस करो। जिंदगी के रंग खुद ही आपकी जिंदगी को रंगीन बना देंगे।
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: ऐसा गीत मैं नहीं गा सकती, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, मैं ऐसा गीत नहीं गा सकती, लेकिन अभिजीत गा सकते हैं, आपके लिए गा सकते हैं, कॉन्सर्ट के लिए गा सकते हैं, एंड आपको इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने का मौका दे रही हूँ मैं। यस, आई हैव वन टिकट जो मैं आपको देना चाहूँगी टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट सैटरडे 25 जुलाई, यानी कि सैटरडे को कितने दिन रह गए, इस सैटरडे को होने वाला है 7:30 PM एट SBICC पाई। कौन जाना चाहेगा, हाथ ऊपर करो। हाँ, जैसे कि मुझे दिख रहा है। अरे मैसेज भेजना पड़ता है ना जवाब के साथ, अभी तो मैंने सवाल भी नहीं किया, अभी हाथ ऊपर कर लिए। बड़े पनी हो आप लोग, गाड़ी चला रहे हो ऐसा मत किया करो, मेरी सारी बातों पे ध्यान मत दिया करो, कभी कभी खुद का दिमाग यूज़ किया करो। मैंने बोला हाथ ऊपर, अच्छा एक हाथ ऊपर किया था, हाँ चलो ठीक है, लेकिन हाथ ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज भेजने की ज़रूरत है। ये बगल वाली जो बैठी है आ गई यहाँ, ऐसे मेकअप को अंदर रखो बैग में और मोबाइल निकालो अपना, मैं सवाल करने वाली हूँ। सही जवाब देना, मिल गया तो मौका मिलेगा इनको जाने का। कहाँ, SBICC पाई, 7:30 PM में होने वाला है अभिजीत भट्टाचार्य का लाइव इन कॉन्सर्ट। जी हाँ, 25 जुलाई 2026, ये मौका हर किसी को बहुत कम मिलता है, ऐसे सिंगर के साथ वक्त बिताना, ऐसे सिंगर को लाइव गाते हुए देखना। वी गोना स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया। अब सारे जो प्यारे प्यारे हमारे जो पल हैं, कुछ ऐसे गाने हैं, ये उस जमाने के गाने हैं भाई, ये जिनके पास दिल है वो समझ सकता है। एंड आई वॉन्ट टू सी यू देयर। टिकट स्टार्ट होता है 850 रुपीज, और ये अवेलेबल है एट bhk.mu. रिजर्वेशन के लिए जल्दी से हॉटलाइन पे कॉल करो 4669999, फिर से बोलूँ 4669999। अब किसको जाना है, देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, टिकट आप खरीद सकते हैं, अभी अपना लक ट्राई कर लो, जिनको जाना है लक ट्राई कर लो और मुझे बता दो। जी हाँ, मुझे बता दो कि अभिजीत भट्टाचार्य जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बता दो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, गाते तो हैं ही लेकिन दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो मुझे पता है वो बजा लेते हैं, आपको भी पता होगा, गूगल चाचा से पूछ लो, बता देंगे। हाँ तो जल्दी करो 5499124। और सुनो, मिस्टर इंडिया बनकर यहाँ पर मैसेज मत भेजा करो, सिर्फ जवाब मत भेजो, अपना नाम और पता भी भेजो। अगर मुझे नाम लिखना होगा लकी ड्रॉ के लिए तो मैं कौन सा नाम लिखूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के कहती हूँ, अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर भेजना जवाब के साथ ऑन 5499124। अभी अगर आप वो फील जानना चाहते हैं कि वो जो समा है कैसा रहेगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको सुने। अभिजीत दा कुछ बोलो ना,
3: हर उगते सूरज में तुम्हारी आवाज का मतवालापन है, हर ढलती हुई शाम में तुम्हारी दर्द भरी आवाज है
2: जी।
3: तुम रफी हो, तुम संगीत की दिशा हो,

0: ढूंढ तो मैं प्रिया को ही रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मिल गए भाई।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वैसे प्रिया खुश हो गई होगी, सुप्रिया भी खुश हो गई होगी।

0: होगी, प्रियंका भी खुश हो गई, सब सबके नाम में प्रिया है ना। चलो यहाँ पर हम उनका नाम भी बता दें कि कौन है जो यहाँ पर इनाम जीत चुका है या जीत चुकी है। सुबह के 8:40 हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, ये गाना तो बिल्कुल मुझे गूज बम दे गया भाई, मैं बैठ के यहाँ बस गाना ही सुन रही थी, मज़ा आ गया। आपको आया ना, बताना ज़रूर 1549 और 1294। फिलहाल अभी के लिए जितने भी लोगों ने जवाब दिया है, मैंने पूछा था कि अभिजीत दा जो हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, तो गिटार और ड्रम्स बजा लेते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप लोगों ने। एंड लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है किसका, ये है मयूरी बाबूलाल फ्रॉम लखावियन बाकवा। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको मिल रहा है ये एक टिकट फॉर द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कंसर्ट, सैटरडे 25 जुलाई को 7:30 PM SBICC पाई में हो रहा है। सो वी गोना स्टेप टुगेदर इन अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, और यहाँ पर हम उन बीते लम्हों को जिएंगे, उन गोल्डन इरा को जिसे हम कहते हैं द इरा ऑफ लव रोमांस। जी हाँ, एंजॉय करेंगे ये इवनिंग का टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स और प्योर मैजिक होने वाला है म्यूजिक के साथ। भूलिए नहीं, अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं तो टिकट्स अवेलेबल है atmochike.mu. 850 rupees से शुरू होता है। इस कॉन्सर्ट को मिस मत करना, रिजर्व योर टिकट, इस हॉटलाइन नंबर पर कॉल करो 4666999 4666999.
1: Et n'en cousé qui dit, malé à peine à l'odeur. Il l'est temps pour qu'il nous prend soin de la santé. Et c'est pour ça que SICOM fin développe un nouveau assurance qui appelle SICOM Wellness Plan. Sa plan là inclut un test médical régulier et gratuit qui peut aider ou détecter un problème grave bien en avance. Et SICOM paye ou la somme assurée tout de suite en cas de diagnostic là, CAI. Ça peut permettre ou faire ou traitement avec un esprit positif. Et si vous ne faites aucune réclamation jusqu'à la fin au contrat, SICOM rembourse ou somme assurée totalement. Plus d'informations sur le SICOM Wellness Plan, contactez-nous au 203-8401, visitez-nous au SICOM.mu ou contactez un nouvel représentant. Conditions applicables. SICOM opère sous licence de la FSC.
2: SICOM Group, a lifetime commitment.
3: RM2
4: Radio Musty.
0: कभी सोचा है
5: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
5: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
5: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस, बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
5: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
5: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
5: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
5: डोंट मिस इट।

0: Radio Musty.
1: World Cup Magazine.
2: अनियस दोस्तों, चलिए इसी के साथ अब हम कुछ पल फिर से जी लें वही वर्ल्ड कप का। मुझे पता है वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एंड थैंक्स टू आवर कोलैबोरेटर्स दर्शन रतन ऑफ इंग्लैंड, सरजू गौरी शंकर, हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स रहे, एंड ईच एंड एवरीवन जो हमारे इस वर्ल्ड कप के साथ, हमारे मैगजीन के साथ जुड़े रहे। थैंक यू अरविंद। चलिए अरविंद के साथ कुछ पल कुछ लम्हे हम फिर से जीना चाहेंगे और वर्ल्ड कप का ये हसीन लम्हा आपके लिए लेकर आए हैं।
3: Lamine Yamal, oh what a save! Emi Martinez made quite a journey and turned it behind for a corner. Pedri Williams, oh Martinez again! Eyeball to eyeball. Pedro Porro, Williams. Thundered in for Spain by Ferran Torres. At last, at long, long last, Spain's magic moment.
4: The president of the game, the president of the USA.
5: The winners of FIFA World Cup 2026.
4: The champions of the world are Spain.
6: Well deserved, fully deserved World Cup 2026 का champion Spain. फेरान तोरेस का एक्स्ट्रा टाइम विनर और कप्तान रोड्री के हाथ में ट्रॉफी, बैटल ऑफ एंजुरेंस, हर प्रकार से स्पेन इस वर्ल्ड कप का सही हकदार साबित हुआ। अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने पूरे मैच में स्पेन के अनगिनत प्रयासों को रोका, रोकता रहा, लेकिन अंत में तोरेस ने अर्जेंटीना को तोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में। सो स्पेन चैंपियन बना। उसका गोलकीपर उनई साइमन, 7 क्लीन शीट, गोल्डन ग्लोव, मतलब बेहतरीन गोलकीपर अवार्ड उसको दिया गया। इस पूरे वर्ल्ड कप में केवल एक गोल कंसीड किया, पहली बार ऐसा हुआ है। स्पेन वर्ल्ड ओलंपिक और यूरोपियन चैंपियन है, उसकी महिला टीम भी चैंपियन है। स्पेन के कुबासी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। कुबासी केवल 19 साल का है

0: रोड्रिको गोल्डन बॉल अवार्ड टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अवार्ड और किलियन एम्बापे बना टॉप स्कोरर लगातार दूसरी बार के लिए। लियोनेल मेसी क्या कुछ नहीं किया इस वर्ल्ड कप में, अकेले अपने कंधे पर अर्जेंटीना को फाइनल में ले गया, लेकिन फाइनल में कुछ खास नहीं हुआ। खाली हाथ जा रहा है लियोनेल मेसी, लेकिन सबका दिल जीत कर। सो वर्ल्ड कप 2026 पूरा हुआ, स्पेन चैंपियन लाहौरा को बधाई, वेल डिजर्व्ड, सभी लोग मानेंगे जरूर और हम मानेंगे कि यू हैव बीन वंडरफुल आउट देयर रेडियो मस्ती पर। थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमारा साथ दिया फॉर द होल वर्ल्ड कप, चाहे वो नॉर्मल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो टीवी पर हो या फिर स्पोर्ट्स मैगजीन वर्ल्ड कप मैगजीन, इट हैज बीन अ प्लेजर टू बी विद यू। फिर से आएंगे, वर्ल्ड कप तो नहीं बल्कि प्रीमियर लीग बहुत जल्द शुरू होगा। एज आई सेड अर्लियर, स्पोर्ट्स की दुनिया हमारे साथ कभी सोती नहीं। It's always there in MBC Radio. We'll catch you again. Have a wonderful week and bye-bye World Cup.
1: Thank you, Arvind. Thank you so much. And once again, England ke Deshan Ratan aur Sergio Gaurisankar ko hum thank you kehna chahenge hamare saath jude rehne ke liye. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you, everyone. Chaliye, iske saath Vidita aapke saath Morning Beat mein program ko jari rakhti hai.
2: RM2 Radio Musti. तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगे खड़ा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे हई जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिय या sikkim.mu पर जाइय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा, सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
2: RM2
4: रेडियो मस्ती
3: Radio Masti. Sunte Raho.

टिक टिक तो घड़ी भी इधर कर रही है और कह रही है कि तेरे जाने का टाइम हो गया, निकल ले विदिता, क्योंकि तू जाएगी तभी तो निर्मनी आएगी। 8:55, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम शो की निर्मनी सभी को अपने विशेज भेज देगी। एंड आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मेरे जाने का टाइम हो गया है। एंड चलते चलते यहाँ पर जितने भी फैंस हैं राजेंद्र कुमार की, उनको हम कहेंगे कि आज आपके फेवरेट हीरो का बर्थडे है। फॉन्डली रिमेम्बर्ड एज जुबली कुमार, वन ऑफ द बिगेस्ट रोमांटिक हीरोज ऑफ द 1960s, एक के बाद हिट देने वाले, सिल्वर जुबली हिट्स देने वाले, लाइक मेरे महबूब और संगम जैसी मूवी आपको याद होगी। और वहीं पे नसीरुद्दीन शाह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेजेंडरी अवार्ड विनिंग वेटरन जिन्होंने बोथ पैरेलल सिनेमा और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में काम किया है। इनकी अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस इन क्लासिक्स लाइक मासूम, वेडनेसडे एंड द डर्टी पिक्चर आपने याद किया होगा। चलिए इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज, आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द, यानी कि कल मॉर्निंग में 7 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लास्ट, मंडे है, मन लगा लो, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।

0: सुधिया संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम फुटबॉल के समाचार के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फीफा विश्व कप 2026 का महामुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ देखा गया। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी और मुकाबला अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। 62वें मिनट में मैदान पर उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल कर स्पेन की को जीत दिलाई। अर्जेंटीना को 93वें मिनट में एंजो फर्नांडिस की रेड कार्ड के बाद उस 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। और इससे पहले स्पेन ने 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था। मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है। ये फाइनल मुकाबला आपने MBC पर सीधा प्रसारण में भी देखा और सुना। और तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बापे ने शनिवार को मायमी में 2 गोल दागकर फीफा विश्व कप के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। एम्बापे ने विश्व कप 2026 का समापन 10 गोलों के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में किया। विश्व कप में कुल 22 गोलों के साथ अब वह टूर्नामेंट के इतिहास के वर्ल्ड टॉप गोल स्कोरर बन गए हैं। और किलियान एम्बापे विश्व कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल का 19 जुलाई 2026 यानी कि कल को कांग्रेस के विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। जांच के बाद उन्हें आवश्यक उपचार दिया गया और एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोखुल अब अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर लौट सकेंगे। ये जानकारी उन्होंने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो संदेश में दी। चिकित्सकों की सलाह के बाद अब उन्हें घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रपति की स्थिति स्थिर है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। राष्ट्रपति धर्म गोखुल ने जनता से प्राप्त शुभकामनाओं और समर्थन के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट किया है। सूचना एकत्र करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी अब आपराधिक मिलीभगत में बदल जाती है तो क्या होता है? 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जयेश गंगादीन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। DPP के कार्यालय ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। उसके बाद पोटरी जिला अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई को बरकरार रखा। जयेश गंगादीन का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्होंने केवल खुफिया जानकारी जुटाने के अपने कर्तव्य का पालन किया था। दूसरी ओर मादक पदार्थ निरोधक विशेष इकाई आत्सू को संदेह है कि उन्होंने संवेदनशील सूचनाएं आतिश गजाधर नामक व्यक्ति तक पहुंचाई, जिसे जब्त की गई गांजे की खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं में से एक माना जा रहा है। और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मॉरिशस की संस्था Women.MU का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है। संगठन की एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली अजीजिए ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें हिंसा का आरोपी सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास रहता है। Women.MU का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में एंडी बर्नहम आज नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद वह आधिकारिक तौर पर सक स्ट्राम की जगह लेकर देश के 59वें प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में वह ब्रिटेन

ये सातवें प्रधानमंत्री होंगे। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने पहले संबोधन में बरहम की ये कहने की उम्मीद है कि वह लगातार बदलते प्रधानमंत्रियों के दौर को लेकर पूरी तरह सचेत हैं और देश को अधिक स्थिर तथा जिम्मेदार राजनीति की जरूरत है। और उधर दक्षिण अमरीकी देश गुयाना के तट के पास

0: चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि समाचारों के बाद आप आज की चर्चा कार्यक्रम सुन पाएंगे, जिसमें मुख्य मेहमान हैं फागे के अधिकारी संजय सैंबू, और आज उर्वरक और उसके उपयोग पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: गुड मॉर्निंग, 9:11 हो चला है और आप कनेक्टेड हो चुके हो मस्ती मॉर्निंग के साथ इस निलमनी और 3 घंटे तक मैं आपका साथ देने वाली हूँ अमेजिंग म्यूजिक के साथ. होरोस्कोप होगा, लाइफस्टाइल टिप्स भी होंगे, तो आप मेक श्योर कि आप यहीं पर कनेक्टेड रहना. एंड आपके लिए, आपके इस मंडे मॉर्निंग को अमेजिंग बनाने के लिए हम यहीं पर है, सो स्टे ट्यून्ड.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
3: टक टक बॉलीवुड.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: रात भर गाना से याद आया तो रात भर तो शायद आप में से कई लोग ठीक से सो नहीं पाए क्योंकि नजर टिकी थी साल के सबसे बड़े मुकाबले पर. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच हुआ द मोस्ट वेटेड फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल. फुटबॉल फैंस के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं था, इमोशंस का रोलर कोस्टर था. अगर अभी आप रात भर जागते रहे तो गुड मॉर्निंग, चाय बनाइए, आंखें खोलिए और चलिए म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करते हैं इस ब्यूटीफुल मंडे का सफर.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आपसे ही सब बातें आपसे क्योंकि आप स्पेशल हो हमारे लिए। अंजी आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह नमनी मस्का मार रहे हैं, कुछ स्पेशल है क्या? वेल कह सकते हैं क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें और उनमें से आज हम मना रहे हैं फ्रेंड्स डे। एंड दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हौसला बनने का नाम है। आज अपने किसी दोस्त को बिना वजह के एक मैसेज या कॉल ज़रूर कीजिए और बस इतना कहिए, थैंक यू मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। कभी कभी ना ये ही छोटे पल सबसे बड़ी खुशी दे जाते हैं। तो आप सभी दोस्तों के नाम ये नेक्स्ट गाना।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: ये टाइम हो चला है ये जाने के लिए कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं. तो स्टार्ट करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि.
1: आज ना आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी नहीं होगी. किसी नए कार्य का आरंभ करने के लिए समय बिल्कुल परफेक्ट है. घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा. वाणी में मधुरता बनाए रखें. शुभ रंग आपका है लाल और कलर आपका है नाइन.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति रहेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय मन को प्रसन्न करेगा. सेहत का भी ध्यान रखा करें. लकी कलर आपका है हरा और नंबर आपका है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी बुद्धि और चतुराई हर मुश्किल को आसान बना देगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात या बातचीत हो सकती है. छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें. लकी कलर आपका है पीला और नंबर आपका है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: आज भावनाओं में बहने के बजाय विवेक से निर्णय लेना अधिक लाभदायक रहेगा. घर का वातावरण सुखद बना रहे

0: हीगा किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. गुड न्यूज ऑन द वे है. शुभ रंग आपका है सफेद और नंबर है 2.
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है. किसी की प्रशंसा सुनने को मिल सकता है. अहंकार से दूर रहना ही समझदारी होगी. लकी कलर आपका है सुनहरा और नंबर है 1.
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज योजना बनाकर काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी. अधूरे काम पूरे होने के योग है. अपनी सेहत और भोजन का विशेष ध्यान रखें. लकी कलर आपका है नीला और नंबर है 7.
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज संतुलन बनाए रखना ही आपकी जीत का मंत्र होगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. किसी नए अवसर का दरवाजा खुल सकता है. मुस्कुराहट बनाए रखें. लकी कलर आपका है गुलाबी और नंबर है 8.
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपकी जिद इच्छा शक्ति हर चुनौती पर भारी पड़ेगी. गुप्त रूप से की गई मेहनत का फल मिलने के योग है. वाणी पर संयम रहें. शुभ रंग आपका है मरून और लकी नंबर आपका है 4.
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज सीखने और सिखाने दोनों का अवसर मिलेगा. यात्रा के योग भी बन सकते हैं. नए लोगों से मिलकर अच्छे संबंध आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं. लकी कलर आपका है नारंगी और नंबर है 3.
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपकी जो हार्डवर्क है उसका परिश्रम का फल अवश्य मिलने वाला है. आर्थिक मामलों में समझदारी दिखाइए तो ही लाभ होगा. परिवार का सहयोग आपका हौसला बढ़ाएगा. लकी कलर आपका है भूरा और रन नंबर है 8.
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज नए विचार और रचनात्मक सोच आपको सबसे अलग पहचान दिला सकती है. मित्रों का साथ मन को प्रसन्न करेगा. जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा. लकी कलर आपका है आसमानी और नंबर है 11.
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ सकती है. मन शांत रहेगा और काम भी अच्छी तरीके से पूरा होगा. अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें. लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 7.
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती. RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: आज ना हम इतने सारे डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बर्थडे से बड़ा दिन और कोई नहीं। तो ये टाइम डेडिकेट करते हैं उनको जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप हैं आरएसी रुवन की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, लॉट्स ऑफ लव ऑन योर स्पेशल डे। एंड आज है आपकी मम्मी सविता लक्ष्मण जी का बर्थडे। नायको कालीचरण एंड लक्ष्मण फैमिली की तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड आरएमजू रेडियो मस्ती की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोस जो आज मना रहे हैं अपना स्पेशल डे। दिस सॉन्ग गोज टू यू।

0: रेडियो मस्ती।
1: एंड आज चंदन जी भी अपना बर्थडे मना रहे हैं। बेस्ट विशेज पत्नी खुशबू, डॉटर्स सोनाली, शानवी, शनाया की तरफ से, जो कि लाभ पहुंचा के नए वाले हैं।

अच्छा 20 का नाम आते ही पाणिनि एसटी का एल्बम का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। कल रविवार को मॉरिशस की त्रिबिका शॉपिंग मॉल में स्टिकर एडिशन अभियान का अंतिम दिन रहा, जहां हजारों लोग अपने एल्बम को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टिकरों की तलाश में पहुंचे। सुबह से ही मॉल में लंबी कतारें देखने को मिली। परिवारों के साथ आए प्रशंसक अपने स्टिकर पैकेट खोलते और अतिरिक्त इसकी स्टिकरों का आपस में आदान प्रदान करते हुए नजर आए। इस आयोजन में सात वर्ष के बच्चों से लेकर 77 वर्ष तक के कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया। इनमें कई ऐसे भी थे जो वर्ष 1978 के विश्व कप से ही पाणिनि स्टिकर कलेक्शन की अपनी परंपरा को आज तक कायम रखे हुए हैं। अपने एल्बम्स को आखिरकार पूरा करने या लगभग पूरा करने के बाद त्रिबिका के कलेक्टर्स के मन में अब केवल एक ही योजना है, 2 साल बाद होने वाला अगला यूरो स्टिकर की नई खोज के लिए। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मॉरिशस की संस्था women.mu का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है। संगठन के एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली अजीजिए ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया जिनमें हिंसा का आरोपी सरकारी या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहता है। women.mu का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। संस्था ने जोर देकर कहा कि कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके आवास के अधिकार की भी रक्षा करें। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के नए पानी कनेक्शन के लिए खरीदे गए लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है। ये दो पाइपों को जोड़ने वाले कनेक्टर नवंबर 2024 में प्रोक्यूरमेंट ऑफिस के माध्यम से एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए थे। हालांकि जून से इन्हें स्थापित करने के दौरान CWA की तकनीकी टीमों को लगातार कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। स्थिति को देखते हुए CWA ने पूरे स्टॉक को आपूर्तिकर्ता को वापस भेजने का निर्णय लिया है। ये उपकरण 3 वर्ष की वारंटी के दायरे में है। अब जांच का प्रमुख उद्देश्य ये पता लगाना है कि समस्या CWA की ओर से किसी लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई या फिर खरीद प्रक्रिया अथवा उपकरणों की गुणवत्ता में ही कोई कमी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से व्यापक हमला किया है। अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पूर्वोत्तर शहर खार्किव में 4 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हुए। वहीं राजधानी कीव में 1 व्यक्ति की जान गई तथा 16 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव पर हुए हमले को वर्ष 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद राजधानी पर किए गए सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक बताया है। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस के ठिकानों पर अपने हमले जारी रखे हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। डॉविन रोड कारोलिन बेलेरवियसेश में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल राशिद सौदागर जिन्हें भाई राशिद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो टैक्सी ड्राइवर थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे मोहम्मद अली नवाज सौदागर के मकान कारोलिन बेलेरवियसेश से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए मस्जिद कुबा कारोलिन ली जाएगी, फिर दफनाने के लिए त्वाजिलो ओलिविया का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। थ्रियोली ब्रांच रोड फोन्डुसाक में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रानी बीगू पैदाशी नाम उदीन और जिन्हें मानती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीष बीगू के घर फोन्डुसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यमी थ्रियोली शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 10:10 हुए हैं मेगावेश एंड जिगर का टुकड़ा मांझे जो दिल के करीब है बहुत, जैसे कि आप वेलकम बैक टू योर मस्ती मॉर्निंग। सेकेंड आवर में हमने एंट्री मार लिया है, इट्स निलमनी और 12 बजे तक मस्ती वाइब्स के और टिप्स के साथ आपके लिए हूँ हाजिर। तो वापस डाइव करते हैं म्यूजिक वर्ल्ड में आरएम2 रेडियो मस्ती पर ही।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: यस, आज का फैशन टिप आउटफिट चाहे सिंपल हो, स्टाइलिश हो, अगर वो परफेक्टली फिट हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ पहने तो वही सबसे फैशनेबल लुक होता है। और हाँ, एक क्लासिक रिस्ट वॉच, सिंपल एक्सेसरी आपके पूरे लुक को इंस्टेंटली एलिवेट कर सकती है, लेकिन कलर्स आपको चूज करना है जो कि मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लू शर्ट क्रीम पैंट्स के साथ, या फिर ब्राउन या ब्लैक पैंट्स व्हाइट शर्ट के साथ, या फिर शमीज के साथ, यू डिसाइड। और लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए नाउडेज सोशल मीडियाज पर कलर कॉम्बोज आसानी से मिल जाते हैं, सो वी स्मार्ट एंड यूज करते हैं टेक्नो को टू द वेरी बेस्ट।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: दिल में कुछ छुपा नहीं रही हूँ, बताया तो था हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। फ्रेंड्स डे मैंने बता दिया कि आज सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन और सेलिब्रेट कर रहे हैं जंप डे यानी कि कूदने का दिन। अरे वेट, कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले वो वाला जंप नहीं बल्कि बचपन याद है ना, जब बिना वजह के कूदते थे और उसकी खुशी होती थी। तो आज साथ में मस्ती कर लेते हैं, कुछ लाइट जंप्स या स्किपिंग करके देखिए, सेहत के लिए वैसे वो ठीक है, एक्सेस में नहीं लिमिट्स में। मूड भी फ्रेशी फ्रेश होगा और एनर्जी भी दुगनी। ट्राई करना जरूर। अभी ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी बैक विद द म्यूजिक।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: The one बनने के लिए खुद को थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है. Whether that be trying to improve yourself या फिर दूसरों को motivate करना to do the same. आज का lifestyle tip है कि हर 45 मिनट बाद सिर्फ दो मिनट के लिए यार उठकर थोड़ा walk जरूर करें. चाहे वो office पर हो या फिर घर पर. ये छोटी सी आदत body को active रखती है, blood circulation बेहतर करती है और थकान को भी कम करती है. तो walking और vibes को on रखते हैं आपके ही RM2 Radio मस्ती पर. Ah!

0: की देखो।
1: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगी खड़ा बा। तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय

0: समाधान देवेला जिकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे हैं जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिय या sikkim.mu पर जाइय। इमे नियम और शर्त भी लागू बा सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।

0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आजी। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: वेलकम टू RM2
3: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
3: दिन के 11 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अशिता नमस्कार.
4: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सबसे पहली स्थानीय खबरें. सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के नए पानी कनेक्शन के लिए खरीदे गए लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जाँच कर रहा है. ये दो पाइपों को जोड़ने वाले कनेक्टर नवम्बर 2024 में प्रोक्यूरमेंट ऑफिस के माध्यम से एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए थे और हालांकि जून से इन्हें स्थापित करने के दौरान CWA की तकनीकी टीमों को लगातार कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है. स्थिति को देखते हुए CWA ने पूरे स्टॉक को आपूर्तिकर्ता को वापस भेजने का निर्णय लिया है. ये उपकरण 3 वर्ष की वारंटी के दायरे में है. अब जाँच का प्रमुख उद्देश्य ये पता लगाना है कि समस्या CWA की ओर से किसी लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई या फिर खरीद प्रक्रिया अथवा उपकरणों की गुणवत्ता में ही कोई कमी थी. घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और वापस और आवास की अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. मॉरिशस की संस्था Women.MU का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है. संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है. संगठन की एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नताली जीजे ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें हिंसा का आरोपी सरकारी या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहता है. फीफा विश्व कप 2026

इसका नाम आती ही पानिनिस्टी का एल्बम का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। कल रविवार को मॉरिशस के त्रिबेका शॉपिंग मॉल में स्टिकर एडिशन अभियान का अंतिम दिन आयोजित किया गया, जहां हजारों लोग अपने एल्बम को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टिकरों की तलाश में पहुंचे थे। सुबह से ही मॉल में लंबी कतारें देखने को मिली। परिवारों के साथ आए प्रशंसक अपने स्टिकर पैकेट खोलते और अतिरिक्त स्टिकरों का आपस में आदान प्रदान करते नजर आए। इस आयोजन में सात वर्ष के बच्चों से लेकर 77 वर्ष तक के कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख करते हैं हम गुयाना की ओर। दक्षिण अमरीकी देश गुयाना के तट के पास 116 यात्रियों को लेकर जा रही एमवी बरीमा नामक नौका डूब गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। ये नौका शनिवार को राजधानी जॉर्जटाउन से पोर्ट केटुमा जा रही थी। इसी दौरान आयरन पंट के निकट ये दुर्घटना का शिकार हो गई। स्थानीय समय अनुसार रात 11 बजकर 1 मिनट पर संकट संदेश मिलने के बाद सरकारी एजेंसियों ने जिन नौकाओं की मदद से व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। वहां के लोक निर्माण मंत्री जोआन एडगिल ने कहा कि बचाव अभियान लगातार जारी है और सभी यात्रियों की सुरक्षित बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने उम्मीद जताई है कि अभियान के दौरान और लोगों को जीवित बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अब तक बचाए गए लोगों में यात्री और चालक दल के सदस्य से दोनों शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: जी हाँ, मस्ती वाइब्स के साथ वी आर बैक विद योर मस्ती मॉर्निंग। तीसरे और आखिरी आओ में स्वागत है आपका। इस नर्मनी और सेलिब्रेट हो रहा है आज जंप डे, फ्रेंड्स डे और कुछ और भी है। स्टे ट्यून्ड जानने के लिए ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसे हम सभी बॉलीवुड फैंस ही हैं और आप तक कभी बेस्ट सॉन्ग्स ही ला रहे हैं. हाँ जी, विल नॉट कीप यू गाइस वेटिंग. मैसेजेस पढ़ते हैं. आप हैं रोशनी जी, आपने पूछा है मैं कैसी हूँ. अरे मूड फर्स्ट क्लास है जी, आपका साथ है तो मस्त ही है. ये बताइए आप कैसी हो. गाना आपने मांगा मेरी आशिकी. ओए होए, लव फीवर हो गया क्या. जरूर चलाएंगे गाना आपके लिए, नो वरीज. ललिता जी भी साथ दे रही है. बड़े दिनों बाद हियरिंग फ्रॉम यू, अच्छा लगता है. सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं टू सरोज कुमारी, वीना जी, गीता, ज्ञानती, संजय, विजय एंड फॉर जिजन फैमिली जो कि लावांचे के रहने वाले हैं. एंड नवमी जी भी अब गाना मांग रहे हैं बहन सारिका के लिए, जिया, अनिया, भवजीवन दना के लिए, दीपशिका, शान, बेटी सुंदर फैमिली के लिए और सहाय परिवार के लिए. तो हो जाए आप सभी के नाम गाना.
1: RM2
0: रेडियो मस्ती,
1: फील

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 11:34 हुए हैं। यस, बहुत सारे दिन सेलिब्रेट हो रहे हैं आज। एंड इंटरनेशनल चेस डे भी है टुडे। चेस हमें सिखाता है कि जिंदगी की हर चाल सोच समझ कर लेनी चाहिए, चलनी चाहिए। हर मूव का एक नतीजा होता है। तो आज अपने दिमाग को भी थोड़ा चैलेंज दीजिए। एक चेस गेम तो बनता है, खेलिए या किसी नए स्ट्रैटेजी गेम को ट्राई कीजिए। इससे माइंड होता है शार्पर। ज्यादा सोचिए मत, बस निकल पड़िए ट्रायल के लिए। वेदर

0: खासियत हमारी है कि आप कभी अकेले फील नहीं करोगे विद RM2 वीडियो मस्ती। 11:50 हुए हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Qui peut manger aujourd'hui? Mais pose vite seulement là. Marie longue ça moi là.
4: Max Savers Mills les gars. Bon goût, petit prix.
5: Le plan parfait. Venez découvrir les Max Savers Mills car il y en a pour tous les goûts à partir.

0: और इसी प्यारे से गाने के साथ दोस्तों आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। याद रखिए, जिंदगी के दौर में काम जरूरी है लेकिन दोस्ती उस सफर को और भी खूबसूरत बनाती है। एंड फ्रेंड्स डे के मौके पर अपने किसी खास दोस्त को एक कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा और इन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने खास हैं। तो मिलते हैं कल सुबह को, पूनम आ रही है आपका साथ देने के लिए RM2 रेडियो मस्ती पर।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
1: RM2 Radio Musti.
2: The Time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
4: North, South,
1: 103.5.
4: East, West,
1: 96.4.
4: Center,
1: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Din ke 12 baj rahe hain. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता. नमस्कार.
7: नमस्कार नील मनीष. श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. फीफा विश्व कप 2026 का महामुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ देखा गया और फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीत लिया. न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हरा कर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है. निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं डाली और मुकाबला अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा. 62वें मिनट में मैदान पर उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल कर स्पेन को जीत दिलाया और अर्जेंटीना को 93वें मिनट में एंजो फर्नांडेस के रेड कार्ड के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा. इससे पहले स्पेन ने 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था. मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है. ये फाइनल मुकाबला एमबीसी पर सीधा प्रसारण में आप देख पाए और सुने भी. और तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बापे ने शनिवार को मायामी में 2 गोल दागकर फीफा विश्व कप के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया. एम्बापे ने विश्व कप 2026 का समापन 10 गोलों के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में किया. विश्व कप में कुल 22 गोलों के साथ वह अब टूर्नामेंट के इतिहास के वर्ल्ड टॉप गोल स्कोरर बन गई हैं. किलियान एम्बापे विश्व कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बूट जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल का 19 जुलाई 2026 को कांग्रेस के अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया. जांच के बाद उन्हें आवश्यक उपचार दिया गया और एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था. मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल अब अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर पर लौट

0: कर सकेंगे। ये जानकारी उन्होंने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी वीडियो संदेश में दी। चिकित्सकों की सलाह के बाद अब उन्हें घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रपति की स्थिति स्थिर है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। राष्ट्रपति धर्मवीर गोखले ने जनता से प्राप्त शुभकामनाओं और समर्थन के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मॉरिशस की सांस्कृतिक दुनिया ने अपनी एक महान शख्सियत को खो दिया है। मॉरिशस में कव्वाली के बेहद ही उम्दा और जाने माने गायक इदरीस लाल मोहम्मद का 28 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने सूफी संगीत की इस समृद्ध परंपरा को पूरे समर्पण के साथ जीवंत बनाए रखा। लाल मोहम्मद ब्रदर्स के प्रमुख के रूप में उन्होंने मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कव्वाली को नई पहचान दिलाई तथा देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूचना एकत्र करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी कब आपराधिक मिलीभगत में बदल जाती है। 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जयेश गंगादीन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। डीपीपी के कार्यालय ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद पोटली जिला अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई को बरकरार रखा। जयेश गंगादीन का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्होंने केवल खुफिया जानकारी जुटाने के अपने कर्तव्य का पालन किया था। दूसरी ओर मादक पदार्थ निरोधक विशेष इकाई आत्सू को संदेह है कि उन्होंने संवेदनशील सूचनाएं आतिश गाचादर नामक व्यक्ति तक पहुंचाई, जिसे जब्त की गई गांजे की खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं में से एक माना जा रहा है। इसके अलावा सर्जन जयेश गंगादीन के वकील स्टीवन बोबोआ अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर को पत्र भेजने का इरादा रखते हैं। वे अपने मुक्किल की लंबी हिरासत की शर्तों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने जमानत राशि जमा कर दी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन पक्ष द्वारा दायर स्थगन मोशन के बाद उनकी रिहाई सस्पेंड कर दी गई। वकील के अनुसार कानून द्वारा निर्धारित ये मोशन अदालत के फैसले के तुरंत बाद दायर की जानी चाहिए थी, न कि कई घंटों बाद। ये ध्यान देने योग्य है कि डीपीपी के निदेशक के पास अब इस सशर्त रिहाई की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए 7 दिन का समय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अमरीकी देश गुयाना के तट के पास 116 यात्रियों को लेकर जा रही एमवी बारीमा नामक नौका डूब गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। ये नौका शनिवार को राजधानी जॉर्जटाउन से पोर्ट खेट्यूमा जा रही थी। इसी दौरान आयन पंट के निकट ये दुर्घटना का शिकार हो गई। स्थानीय समयानुसार रात 11:01 पर संदेह संकेत मिलने के बाद सरकारी एजेंसियों और निजी नौकाओं की मदद से व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर। 76 साल के मॉरिसन स्ट्रीट बुबासे में 76 साल के 76 years old के श्री रवीन कृष्णवान सिंह, जिन्हें रवीन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 उनके घर मॉरिसन स्ट्रीट बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टू डेयर हाफ पॉस्ट 3 PM डॉबिन रोड कारोलिन बेलेरिवेश में 72 साल के 72 years old के जनाब अब्दुल रसीद सौदागर, जिन्हें बाय रसीद सौदागर शुफे ताक्सी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे मोहम्मद अली नवाज सौदागर के मकान कारोलिन बेलेरिवेश से उठाकर दफनाने के लिए सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए मस्जिद कुबा ले जाएगी। फिर दफनाने के लिए त्वाजिलो ओलिविया का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM ट्रियोली ब्रांच रोड फोंजसाक में 80 साल की 80 years old की श्रीमती इंद्रानी बेगू पैदाश नाम उदीन और जिन्हें मानती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीष बेगू के घर फोंजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टेमिनिस त्रियोली की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 2 PM शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:11 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़ गए हैं अपनी ही रेट्रो रिदम प्रोग्राम के साथ। नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। सबको शांति मिल गई, सबने इतना फीफा वर्ल्ड कप लगाया हुआ था और आ गए सारे वापस। पता नहीं किस किस के टीम जीती है, किसकी हारी है, ये तो हमें नहीं पता, बट हम आपको ये कहेंगे कि वापस से आ जाइए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे ये सेलिब्रेशंस होते हैं, कुछ मोमेंट्स के लिए होते हैं, उसको यादें बनाना पड़ता है। और जब ये याद बन चुकी है और जब कहते हैं ना स्पेन ने जीत लिया, तो फिर और क्या चाहिए, किसी ना किसी को तो जीतना ही था। तो चलिए भाई, इन्जॉय करते हैं अपने पुराने गाने। और रेट्रो रिदम है ही ऐसा कि जैसे ही एक प्रोग्राम चलता है उसमें आपको ले के चला जाता है, या तो कॉलेज में, या आपके बचपन में, या आपके नानी दादी के पास, या फिर अपने उसी खास इंसान के पास जहाँ से आपने बहुत

0: सारी अपनी प्यारी यादें सजोई होती हैं। तो चलिए भाई जुड़ते हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: रेट्रो रिदम RM2

0: रेट्रो रिदम। 12:20 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। क्या बात है भाई, जब ये पुराने गाने चलते हैं, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हो, मुकेश जी की आवाज़ में हो, मन्ना डे की आवाज़ में हो, ये सारी आवाज़ें लता मंगेशकर, आशा मंगेशकर, उषा मंगेशकर, इनकी आवाज़ों में कुछ खास ही अंदाज था, कुछ अलग ही बात थी। तो आज भी उनका अंदाज जब हम सुनते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि हाँ, ये गाते रहें और हम ड्राइव करते रहें। तो जो भी इस समय ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज़ आप आराम से ड्राइव कीजिए, इंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम को। साथ में अब हम जो प्रोग्राम के जो गाने की बात करने जा रहे हैं, कहते हैं ना कि जब मुस्कुराहट की बात होती है तो ये फिल्म सबसे ज़्यादा सबसे पहले आती है। कहते हैं गाइड मूवी का ये जो गाना है सदाबहार गीत है, और देवानंद साहब और उसमें वहीदा रहमान जी ने एक जो प्यार से एक बॉन्डिंग बनाई, दिलकश अदाएँ दिखाई, और कहते हैं गाना आज भी सुपरहिट सॉन्ग्स के अंदर मशहूर किया जाता है। और कहते हैं कि ये गाना आज भी जिसने सुनता है उसके दिल के अंदर कुछ ना कुछ, कहते हैं कुछ ना कुछ होता है। बस अब ये क्या होता है ये तो इस गाने को सुनने के बाद ही पता चलेगा। इंजॉय करते हैं प्यारा सा ब्यूटीफुल सॉन्ग, गाता रहे मेरा दिल।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:32 होते हैं और इस समय ज़िंदगी में कहते हैं ना बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन कुछ धुनें हमेशा वैसी रहती हैं, यही तो रेट्रो रिदम की खास बात होती है और यही खूबसूरती होती है इन धुनों की। जब ये साथ चलती हैं बजती हैं तो वो पुराना टाइम याद आ जाता है, जो भी टाइम आपने उस समय बिताया होगा और पहली बार जब वो गाना सुना होगा उस टाइम की जो मूवमेंट्स रही होंगी वो हमेशा साथ चलती है। तो भाई मुझे लगता है कि आप सब उस समय

में पहुंच गए होंगे जब आपने कभी ये गाना सुना होगा। तो हम ऐसे ही कहेंगे कि आप बस साथ जुड़े रहिए और इन्जॉय कीजिए अपने गानों को। साथ साथ थोड़े से दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं हम एक साथ। धनवेश्वर जी साथ दे रहे हैं अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ और बाकी परिवार निशा रेखा देवदोस्त फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और कह रहे हैं आई एम रियली इन्जॉइंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर। वीना गंगाधर नोवल फॉन्स से आज उनका 40th बर्थडे है और उनके पति उनको विश कर रहे हैं, उनका परिवार उन्हें विश कर रहा है और कह रहे हैं तुमने इतना साथ दिया है जिंदगी में, हमेशा मेरे साथ चलो और एंजॉय करो जिंदगी को। सो ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच देव जी। हमेशा ऐसे ही खुश रखिए अपनी पत्नी को। और आपने जो फोटो भेजी है मुझे बहुत सुंदर लगी, थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिया जी भी साथ दे रही हैं और पुराने गानों की फरमाइश कर रही है और उनके गाने हमेशा ही बहुत ही खूबसूरत और प्यारे होते हैं तो हम जरूर चलाएंगे। यलेश जी साथ दे रहे हैं और लंच टाइम में एक लंच की प्यारी सी प्लेट बना के भेजी है और कह रहे हैं कि प्लीज खा लो और मुझे थैंक यू, मैं यहाँ से खा लेती हूँ जिस तरीके से आपने भेजी है, बट इंजॉय कीजिए अपने गानों को। अब्दुल जी और सायरा बानो को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पुराने गाने जब चलते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आती है और तुम जब साथ साथ चलती हो तो मुझे लगता है मेरे को सब कुछ दुनिया मिल गई। क्या ब्यूटीफुल मैसेज है। श्याम देवी चरण जी साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं फुल वॉल्यूम पे भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। और ललिता जीतन जी भी साथ दे रही हैं और कह रही हैं आज हॉलीडे है बट स्टूडेंट्स और मैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं और मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा खुश रहिए मैम, इंजॉय कीजिए अपने गानों को। साथ में ही विश्वानी धूमन जी भी साथ जुड़ी हुई हैं भाकवा से और इंजॉय कर रही हैं और अपने पूरे परिवार के लिए यानी कि इंदिरा शारदा और सहेली नीला शोभा के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और मस्त कर रही हैं। साथ में ज्योति शातो बनारस से हैं और रेखा सुरेखा AMT मधुब फैमिली को लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। भाई आप सारे गाने आप सभी के नाम हैं तो इन्जॉय कीजिए जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पर हमारी जो आज जिनका हमारा बर्थडे है उनके लिए कुछ तो बनाना बचता है ना, तो ये गाना आपके लिए और ये प्यारी सी जिंगल हम सब की तरफ से आपके बर्थडे के लिए।

from Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: पुराने गानों की सबसे बड़ी खूबसूरती पता है क्या होती है, ये उम्र नहीं पूछते बस दिल का रास्ता जानते हैं, और जब दिल में रास्ता बना ही लिया है तो हम उनके भी मैसेजेस ले लेते हैं जो बहुत देर से इंतज़ार में बैठे हैं कि प्लीज़ हमारा ये मैसेज ज़रूर पढ़िएगा। तो इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले ललित जी जुड़े हुए हैं यूएसए से और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, और सबके लिए यही विश कर रहे हैं कि हमेशा सब खुश रहें। थैंक यू सो मच। उसके साथ में हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बिटिया रानी है, उनका आज 5वां बर्थडे है, युवनाश एंड जुतक्रश दोनों ट्विंस हैं, और उनकी मम्मी अनीशा, फादर प्रीतम एंड सिस्टर शाहिना एंड प्रतप फैमिली उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं हमेशा ऐसे बर्थडे इंजॉय करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है भाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस होते हैं, अच्छा लगता है। इसके साथ में ही तेजल, आयशा, तन्वीर, रायन, रायनब, कामिनी, करुणा, आयशा, तारिश एंड कमला जी, गंगा बिस्विन जो कि काथरोबोन से हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। इसके साथ में दत्तू जी हैं, उनका आज शायद बर्थडे है और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। साथ में एक प्यारा सा और मैसेज है, जी वी गुआफिक्स LTD फैमिली एंड ताको फैमिली, जय नारायण, अपर्णा एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमेशा आपस में साथ साथ मिलके रहना सबसे बढ़िया बात होती है। जब साथ रहते हैं तो सारी जो टेंशनें होती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, वो बहुत छोटी सी हो जाती हैं, तो जब छोटी सी हो ही गई है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। आपके ब्यूटीफुल गाने उनके साथ, इन्जॉय कीजिए अपना ये लंच आवर जो कि आप लोग कर रहे हैं, अगर तो आपका लंच बहुत अच्छा रहे, थोड़ा सा कुछ ऐसा खाइएगा जो आपको जल्दी डाइजेस्ट हो और जो आपका दिन को और आपके मूड को बिल्कुल फ्रेश करे।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक, दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। एक पुलिस अधिकारी का मुख्य खबरी का काम कहां समाप्त होता है और आपराधिक मिली भगत कहां से शुरू होती है। पोटली जिला न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सौजन्य जयेश गंगादीन की सशर्त जमानत मंजूर किए जाने के बाद जब डीपीपी कार्यालय ने इसे चुनौती नहीं देने का फैसला किया तो उसके बाद से कानून लागू करने वाली एजेंसियों में ये सवाल हलचल मचा रहा है। 94 मिलियन रुपए की कैनाबिस के रिकॉर्ड जब्ती के मामले में गिरफ्तार इस पुलिस अधिकारी ने अपनी बेगुनाही का दावा किया है और उसका कहना है कि वो केवल अपना खुफिया काम कर रहा था। वहीं आजसू को संदेह है कि उसने अतीश गजाधर नामक व्यक्ति को संवेदनशील जानकारी दी थी जिसे जब्त की गई खेप के कथित प्राप्तकर्ताओं में से एक माना जा रहा है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को कभी भी अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव नहीं करना चाहिए। ये women.mu का रुख है जिसने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है। हालांकि संगठन के एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली जीजे उन मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं जहां हिंसा करने वाला व्यक्ति राज्य या किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा दिए जाने वाले आवास में रहता है। women.mu का मानना है कि पीड़ितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किए बिना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। CWA पीने के पानी के नेटवर्क से नए कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 30,000 कनेक्टर्स से जुड़ी एक समस्या की बारीकी से जांच कर रही है। नवंबर 2024 में प्रोक्यूमेंट ऑफिस द्वारा एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए इन उपकरणों में गुणवत्ता संबंधी गंभीर खामियां पाई गई हैं। पिछले जून से CWA की टीमें इन्हें स्थापित करते समय लगातार कई समस्याओं की रिपोर्ट कर रही हैं। और विदेश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका द्वारा किए गए नवीनतम हमलों ने ईरान को बहुत जोर का झटका दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमले हाल के दिनों में मारे गए 3 अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में किए गए थे। सोमवार तड़के सेंटकॉम ने कहा कि उसने लगातार 9वीं रात हमलों की एक नई लहर शुरू की है जिसके दौरान पूरे ईरान में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई। तो इन्हीं हमलों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। बंधु लेन फिनिक्स में 84 साल

0: की 84 years old की बीबी हबीबा बंधु, जो चाची बीबा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनके बेटे साउद बंधु के घर बंधु लेन फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए फिनिक्स की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। ट्रियोले ब्रांच रोड फोंट डू साक में 80 साल की 80 years old की श्रीमती इंद्रानी बिगू, पैदाइशी नाम उद्दीन और जुमानती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीष बिगू के घर ट्रियोले ब्रांच रोड फोंट डू साक से उठाकर तेमिनुस ट्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:11 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, जो कि पुराने गाने जहां पर चलते हैं दिल में कुछ धक-धक सी होती है। कहते हैं पहले जब गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, जिए जाते थे, उस दौर में फैशन तो होता नहीं था, इतनी दुनिया नहीं थी, इतने लोगों को अपने बस जो अपने पसंदीदा कलाकार होते थे उनको देखते थे, वैसे ही पहनना, वैसे ही चलना, वैसा ही मुस्कुराना, उनका स्टाइल वैसे ही बन जाता था और उनका जीना वैसे ही शुरू हो जाता था। शायद इसीलिए उस ज़माने के जो गाने थे कलाकार आज भी से इतने करीब रखते हैं, क्योंकि वो जो लोग थे उनके पर्सनालिटी, उनके सिक्स पैक्स नहीं होते थे, उनकी बॉडी ऐसे डोले शोले नहीं होते थे। यस, दारा सिंह जी के थे, पर बाकी एक्टर्स के नहीं होते थे। वो बहुत ही क्यूट और सिंपल और इमोशंस पर दिखाते थे, आंखों से उनका देखना और थोड़ा सा एक दूसरे को ले, एक्ट्रेस को बचा लेना और उसमें से एहसास दिलाना कि आदमी कितना स्ट्रांग होता है। यही चीज़ें देखते देखते सब हम लोग या हमारे जो पूर्वज या बड़े बुजुर्ग जो बड़े हुए हैं उनसे हमने भी यही सीखा है कि हमेशा एक दूसरे के साथ दीजिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय करते रहिए। गाने चाहे मूवीज़, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। जब ये साथ में रहते हैं पुरानी मूवीज़ के गाने, तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही प्यारी और खुशनुमा बन जाती है। चलिए अगला गाना जो होगा उमंग मूवी के साथ होगा और मुकेश और शारदा जी की आवाज़ में, और इसके लिए फिया जी ने बहुत से मैसेजेस किए, तो फिया जी आपकी पसंद का ये गाना आपके लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं हो

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:26 हो चुके हैं और हम तो सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं, क्योंकि हम तो आपके बिना नहीं रह सकते और आपके मैसेजेस जो हैं हमें बहुत ताकत देते हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर। और इस वक्त कोई ऐसा बच्चा या ऐसे कोई परिवार का इंसान है जिनको अपने दादा दादी नाना नानी या अपने मम्मी पापा का कोई फेवरेट गाना नहीं पता, पहले तो अपने आप से पूछो कि आपको उनका कोई फेवरेट गाना पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो उनसे पूछिए कि भाई उनको कौन सा अपने आने में कौन सा गाना पसंद हुआ करता था, कौन सी पसंद जो आज भी उनके दिल में है, तो आप हमें भेज सकते हैं, हम जरूर उनके लिए चलाएंगे। पर अभी हम आपसे इतना जरूर कहते हैं कि 25 जुलाई 2026 को सैटरडे 7:30 SBICC पाए में होने जा रहा है एक प्यारा सा कॉन्सर्ट। यस, 90s के जिनको गाने पसंद हैं और वो आवाज़ जो कि सलमान पे भी जाती थी, शाहरुख खान साहब पे भी जाती, आमिर खान पे भी, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जिनकी पसंद आज भी बहुत ही यूनिक है, तो भाई उनके लिए तो हम ज़रूर कहेंगे एटलीस्ट मम्मी पापा को ये प्रोग्राम ज़रूर दिखाइए, थोड़ा सा घुमा के लेकर आइए, इंजॉय कराइए। और ये जो गाने हैं अभिजीत के, मैं तो इतना कहती हूँ कि वो सीधा जाके दिल पर लगते हैं और ये गाने सच में इतने ब्यूटीफुल हैं। चलिए उनके आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और आप अपने मैसेजेस भेजते रहिए। इस गानों दो गानों के बाद हम आपके सारे मैसेजेस पढ़ेंगे। एंजॉय कीजिए ये गाना,
0: रेट्रो रिदम,
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

0: रेट्रो रिदम।
1: कहते हैं ये बहुत ही पुराने गाने जो होते हैं वो बिल्कुल दिल के करीब होते हैं, और जब दिल के करीब होते हैं तो वो हमारे पास होते हैं। तो चलिए भाई, बहुत पुराने पुराने गानों के साथ में प्यारे प्यारे से मैसेजेस भी लेते हैं साथ साथ। इस समय आज वीना चिता जी का बर्थडे है, उनके बेटे विकी, उनकी दो बेटियाँ उनको विश कर रही हैं और कह रहे हैं यू आर द बेस्ट मामा, हमेशा हमारे पास रहो और हमें प्यार करते रहो, जितना आपने हमें संभाला है थैंक यू, और कोई मामा नहीं हमें संभाल सकती। ये सच बात है, अपनी माँ अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से संभालती है। इस समय हमारे साथ निर्मला जी भी फ्लाक से जुड़ी हुई हैं और साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, और साथ में बिजयंती जी जिनका आज बर्थडे है, उनकी सिस्टर प्रकाशवंती जी उन्हें विश कर रही हैं जो कि बेल्जियम से हैं। उनके बिजयंती जी के हस्बैंड जसवंत सिंह, रवि, सिमरन उन्हें विश कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं ये प्रोग्राम को। रोशनी जी भी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। राजन रघुपत जी जो कि इस समय लंदन से साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। गुलाब जग्गा सिंह जी कह रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सा गाना चलाया था, उन्हें एक पसंद आया, तो थैंक यू सो मच आप सबके जुड़ने का। अभी और अमर के लिए भी एक प्यारा सा गाना सुनाने जा रहे हैं हम। देव जी साथ दे रहे हैं, पैरिस से, और उनकी वाइफ के लिए एक स्पेशल गाना सुनाना चाहते थे जो अभी हमने चलाया और हमने बताया कि भी हम आपकी जो पसंद है उसको हमेशा सर आंखों पर रखते हैं, तो इंजॉय कीजिए। उमा जी जो कि स्विट्जरलैंड से साथ दे रही हैं और कह रही हैं मैं हमेशा से MBC की फैन थी पर अब तो रेडियो मस्ती की भी हो गई हूँ, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इंदिरा और उनके पति श्रीनाथ, माला, रोशनी, विदेश एंड के लिए एक प्यारा सा गाना हम चलाएंगे। इस समय आज किसी की सालगिरह भी है, आज है विशेष और अनुषा की शादी, उनके बेटा यानी कि विहान और आलिया उन्हें विश कर रहे हैं, और स्पेशली उनकी मामा उनको विश कर रही हैं और कह रही हैं हमेशा ऐसे खुश रहो, हंसते रहो, मेरे आसपास मंडराते रहो और मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरे पास होते हो। तो भाई आप सबकी मैं तो पसंद को भाई सराखों पर रखती हूँ, और उन सभी के लिए जिनके भी बर्थडे है और उनको विश करते हैं हमारी पूरी MBC की टीम की तरफ से, जैसे हम हमेशा करते हैं, पर हमें हमेशा यही कहेंगे हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करो आपका स्पेशल मोमेंट जो इंजॉय करेंगे। तो हमें भी कोई पिक्चर भेज दीजिएगा, ये है आप सबके लिए हमारी तरफ से।

0: from Radio Musti.
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: नमस्ते।
1: घुंघरू की झंकार, खनकती तुम्हारी आवाज, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं, हर टूटे दिलों को जोड़ती तलक।

0: रेट्रो रिदम।
1: तो दोस्तों आज के रेट्रो रिदम में बस सिर्फ इतना ही। उम्मीद है इन सदाबहार गीतों ने आपका दिन और भी खूबसूरत बना दिया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, अभी मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, सुनते रहिएगा RM2 रेडियो मस्ती। मेरे बाद साथ मिलेगा आपको परी का, तो उसका भी साथ जरूर दीजिएगा। इंजॉय कीजिए ये आखिरी गाना, मुबारक हो मुबारक हो।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी को नमस्कार. राष्ट्रपति धर्म गोकुल कल विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए भर्ती होने के बाद आज सुबह घर लौट आए हैं. राष्ट्रपति कार्यालय की कम्युनिकेशन सेल के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है. कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ होने के बाद राष्ट्रपति अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे. विश्व कप 2026 का समापन हो गया है. एक ऐसे मैच में जिसमें स्पेन का पूरी तरह दबदबा रहा और अर्जेंटीना ने अपना पहला शॉट 117वें मिनट में लिया. स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के गोल की बदौलत जीत हासिल कर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. अपने यूरोपीय खिताब के 2 साल बाद लारोजा ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में अपनी स्थिति पर मुहर लगा दी है. CWA पीने के पानी के नेटवर्क से नए कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 30,000 कनेक्टर से जुड़ी एक समस्या की बारीकी से जांच कर रही है. नवंबर 2024 में प्रोक्योरमेंट ऑफिस द्वारा एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए इन उपकरणों में गुणवत्ता संबंधी गंभीर खामियां पाई गई हैं. पिछले जून से CWA की टीमें इन्हें स्थापित करते समय लगातार कई समस्याओं की रिपोर्ट कर रही हैं. मॉरिशस का सांस्कृतिक जगत शोक में है. मॉरिशस में कवाली के प्रतीक और दिग्गज कलाकार इदरीस लाल मोहम्मद का 18 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया. 6 दशकों से भी अधिक समय तक उन्होंने इस सूफी संगीत कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. और विदेश में आज 20 जुलाई 2026 एंडी बर्नहम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं. विकर स्टॉर्मर का स्थान लेंगे जिन्होंने पिछले महीने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी. निवर्तमान प्रधानमंत्री केयर स्टॉर्मर डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम संबोधन देंगे और उसके बाद बकिंगहम पैलेस जाकर किंग चार्ल्स तृतीय को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. थोड़ी देर में शोक समाचार. बंधु लेन फिनिक्स में 84 साल की 84 years old की बीबी हबीबा बंधु जो चाची बीबा नाम से भी जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं. उनका जनाजा आज शाम 4 बजे उनके बेटे साउद बंधु के घर बंधु लेन फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए फिनिक्स की मस्जिद ले जाया जाएगा. फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे एट 4 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है.
0: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Yes, friends, time for Bombay Talkies. Bombay Talkies, आपका अपना Bombay Talkies लेकर आए हैं हम, जहां पर साथ निभाते हैं हम बी टाउन के अपडेट्स के साथ. हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमारी पूरी टीम हमारे साथ होती है. सो वेल, इट्स टाइम कि हम कुछ वंडरफुल न्यूज आप तक पहुंचाएं कि बी टाउन में आपके फेवरेट सेलेब्स क्या कर रहे हैं. लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका वीकेंड कैसा रहा. ओ माई गॉड, वॉट अ मैच. हम जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग देर से उठे होंगे क्योंकि देर रात तक कल फुटबॉल का फीवर चढ़ा हुआ था एंड स्पेन के फैंस सुपर एक्साइटेड. चलिए हम जान सकते हैं कि ये कैसी फीलिंग होगी रात भर जागने के बाद. वो लास्ट 15-20 मिनट में आहा जो टेंशन हुआ और उसके बाद जो वंडर हुआ, वाह जी वाह, ऐसे मैचेस होने चाहिए. एंड वेल, अर्जेंटीना फैंस आपके साथ भी हम हैं क्योंकि हम तो सभी के साथ रहते हैं. सो अभी के लिए तो कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स होने वाले हैं आपके लिए. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM एंड लेकर आए हैं आपका अपना बॉम्बे टॉकीज. साथ दे रहे हैं आप भी, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर. एंड वेल फ्रेंड्स, इतनी बातों के बाद इट्स टाइम कि हम आपके मूड को थोड़ा सा रिलैक्स करें और लेकर आए हैं एक रोमांटिक ब्यूटीफुल गाना फ्रॉम द फिल्म सैयारा, द टाइटल ट्रैक. एंजॉय दिस वन.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: फ्रेंड्स बॉलीवुड न्यूज आप तक पहुंचाते हैं और लेट मी टेल यू बीते दिनों लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इंडिया इंग्लैंड मुकाबले को कृति सनन भी देखने पहुंची और इस दौरान लॉर्ड्स में उन्होंने एमएस धोनी की बेटी जीवा के साथ खूब मस्ती की। एक्ट्रेस कृति सनन को बीते दिन फिल्म कॉकटेल 2 में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ देखा गया। काम से थोड़ी फुर्सत लेकर एक्ट्रेस इन दिनों लंदन में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया के साथ अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं और इसी बीच बीते दिन जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक मैच खेला गया था उसे देखने वो वहां पर पहुंची थी। 19th of July को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच के दौरान उन्हें जीवा धोनी के साथ खूब मस्ती करते हुए देखा गया। कृति सनन और जीवा धोनी की क्यूट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैच का लुत्फ उठाने के लिए साथ साथ कृति और नन्ही जीवा साथ में मस्ती करते नजर आए और तस्वीरों में दोनों की बॉन्डिंग ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। कुछ फोटोज में दोनों हंसकर बात करती दिख रही हैं और कुछ में गेम खेलती नजर आ रही है। वहीं कुछ फोटोज में दोनों ही टीम इंडिया को चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉर्ड्स से सामने आई जीवा और कृति सनन की फोटो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है और कृति सनन अपने लुक और फैशन सेंस को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही है। एक्ट्रेस ऑल ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी एंड वेल कॉकटेल फिल्म के बाद उनकी एक्टिंग की सराहना तो चारों तरफ हो रही है एंड अभी के लिए तो उन्हें स्पॉट किया गया है लॉर्ड्स के क्रिकेट स्टेडियम में जहां पर एमएस धोनी के साथ बेटी के साथ वो चिल करती हुई नजर आई। सो वेल फ्रेंड्स 2:18 हो गए हैं और बी टाउन की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ में लेकर आए हैं कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स। सो कॉकटेल 2 की एक्ट्रेस के बारे में हमने बात की, कृति सनन के बारे में हमने बात की एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म का ये गाना अभी काफी पॉपुलर चल रहा है। चलिए फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2 वी हैव दिस गाना फॉर यू एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ कृति सनन, एंजॉय दिस वन।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, ladies and gentlemen, after this धमाकेदार गाना बात करते हैं म्यूजिक कंपोजर तनिष्क बागची जो इन दिनों रॉयल्टी विवाद को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने कथित तौर पर यशराज फिल्म्स पर आरोप लगाया है कि फिल्म सैयारा के टाइटल ट्रैक के लिए मिलने वाले 8 लाख रुपए अभी तक बकाया है, यानी कि अभी तक उन्हें ये 8 लाख रुपए नहीं मिले हैं। और उनके इस दावे के बाद यशराज फिल्म्स ने उनके दावे का खंडन किया है, मगर तनिष्क ने इस रॉयल्टी विवाद के बीच अमाल मलिक का एक पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है। कंपोजर तनिष्क बागची ने आहान पांडे अनित पांडा की फिल्म सैयारा का ट्रैक बनाया था और हाल ही में इस फिल्म की रिलीज को 1 साल पूरा हुआ और इसी बीच तनिष्क ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि टाइटल ट्रैक की बकाया रॉयल्टी उन्हें अभी तक नहीं मिली है। इसी बीच अमाल मलिक का एक पोस्ट साझा हो रहा है और उन्होंने लिखा है कि संगीत जगत तक के लोग 10 साल बाद जाग रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है, 10 साल से मैं अकेले लड़ रहा था, तब आप लोग कहाँ थे। अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, उसमें उन्होंने तनिष्क बागची या यशराज फिल्म्स किसी का भी नाम नहीं लिखा, मगर एक क्रिप्टिक तरीके से शेयर किया हुआ इस पोस्ट में तनिष्क की रॉयल्टी कंट्रोवर्सी से जोड़कर लोग इसे देख रहे हैं। और दरअसल अमाल मलिक कई वर्षों से म्यूजिक इंडस्ट्री में रॉयल्टी को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि पीपल इन म्यूजिक इंडस्ट्री वेकिंग अप 10 ईयर्स टू लेट, वेयर वर यू इन 2015 व्हेन आई वाज फाइटिंग द सिस्टम अलोन। अब ये पोस्ट वायरल हो रहा है अमाल मलिक का। लेकिन चलिए, सैयारा ट्रैक सभी ने एंजॉय किया, लेकिन अब विवाद हो गया है कि भाई यशराज फिल्म्स ने बकाया पैसे नहीं चुकाए हैं तनिष्क बागची को।
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट,
4: टक टक बॉलीवुड।

0: 92.2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti।

0: कभी स्पाइसी कभी स्वीट म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट
1: टक टक बॉलीवुड।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स इट्स 2:45 और आपके कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस आ गए हैं ऑन 5499-1294। यहाँ पर अमरीका परशुराम हमारा साथ दे रही हैं पोर्ट लुइस से और कहती हैं कि आज ग्रैंडसन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ड्यूबलिन रहते हैं आयरलैंड से, उनके लिए बहुत सारा प्यार एंड वेल एक स्वीट सा डेडिकेशन होगा उनके नाम स्पेशली फॉर योर ग्रैंडसन एंड विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आयरलैंड में है एंड ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। और कहती हैं एक प्यारा सा गाना फॉर मामा कल्याणी और उनके हस्बैंड सतीश, सभी इतवारू परिवार है और बेटी है साक्षी और बेटा स्वयं एंड सभी दादुल परिवार, उनके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार। आज मामा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सो कल्याणी जी, इट्स योर बर्थडे, सभी इतवारू परिवार की ओर से गुडी गुड विशेज ऑन योर स्पेशल डे। एंड यहाँ पर लाल माटी से आए हैं डाविसन अपने स्वीट हेलो हेलो विशेज के साथ। सो वेल डाविसन, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। एंड ऐसे ही आप अपने मैसेजेस डेडिकेशन मुझ तक यानी कि परी तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294। बी टाउन की अपडेट्स के साथ वी ऑल्सो हैव सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, सो नेक्स्ट वन गोज आउट आप सभी के नाम।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। राष्ट्रपति धर्म गोकुल कल विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए भर्ती होने के बाद आज सुबह घर लौट आए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की कम्युनिकेशन सेल के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ होने के बाद राष्ट्रपति अपनी गतिविधियाँ फिर से शुरू करेंगे। थर्ड टर्म में स्कूल खुलने पर कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जाएगा। शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री महिन गंगा प्रसाद के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाना है, साथ ही कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। निर्देशानुसार मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखना होगा और उन्हें हर समय बैग के अंदर ही रखना होगा। इसका उपयोग केवल चिकित्सा कारणों और शिक्षक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मांगे जाने पर ही किया जा सकेगा। शिक्षकों से भी कहा गया है कि वे मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित रखें। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आज सोमवार 20 जुलाई को लातुकेनिक स्थित नेल्सन मंडेला सेंटर में मनाया गया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री मारी आरियाना व मारी कला और संस्कृति मंत्री महेन गुंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तजीत बुलेल, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के प्रतिनिधि और प्रिजन कमिश्नर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है नामक विषय पर आयोजित समारोह ने याद दिलाया कि मादिबा की विरासत मानवाधिकारों, समानता और एकजुटता की रक्षा के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयासों का एक आह्वान है। और विदेश में गयाना के तट पर 116 यात्रियों और 17 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही एक नौका के डूबने के बाद अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों में 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। मोरिसन स्ट्रीट बोबासे में 76 साल के 76 के श्री रवीन कृष्ण सिंह, जो रवीन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके घर मोरिसन स्ट्रीट बोबासे से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। बंधु लेन फिनिक्स में 84 साल की 84 की बीबी हबीबा बंधु, जो चाची बीबा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज 4:00 बजे उनके बेटे साउद बंधु के घर बंधु लेन फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए फिनिक्स की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
0: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
7: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: सो वेल फ्रेंड्स, चित्रा की आवाज में दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। भाई लेटेस्ट सॉन्ग्स के बीच बीच थोड़ा सा तड़का हम लगा देते हैं ताकि आपकी जो आफ्टरनून है वो ऐसे ही ब्यूटीफुल खिलती रहे, ब्यूटीफुली सजती रहे। और अभी के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं, सो याद दिला दूं आपको, इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, जहां पर बी टाउन के लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, साथ में कुछ गाने आपकी इस आफ्टरनून को सजाने के लिए। तो बस आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं परी और आपका और मेरा साथ रहने वाला है टिल 4 पीएम राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती। सो वेल दोस्तों, मंडे आया है और व्हाट अ मंडे आया है, आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप, आफ्टर वीकेंड, अब इट्स टाइम कि एक बार फिर हम काम पर लग जाए। और जब आप सुबह से काम पर लगे हुए हैं, सो ये जो आफ्टरनून टाइम है, इसे हम थोड़ा सा चिलैक्स और आपको रिलैक्स करवाना चाहते हैं, जहां पर आप अपना टी टाइम एंजॉय करें, एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, एंड साथ में वील प्ले सम गाने ऐसे जो आपके मूड को परफेक्टली सेट कर दे फॉर दिस ब्यूटिफुल मंडे आफ्टरनून। सो शामिल होता हुआ ये गाना, दैट्स आफरीन आफरीन, लेकिन विद अ ट्विस्ट। तो हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, राहत फतेह अली खान एंड मोमिना की आवाजें, गाना आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैप्पी मंडे विशेस एंड थैंक यू सो मच, ट्यून इन किया है रेडियो मस्ती के साथ।

एग्जैक्टली दोस्तों, ये जिंदगी काफी नहीं है और ऐसे भी कहते हैं कि जिंदगी होती है चार दिन की, उसमें दो दिन तो स्ट्रेस में निकल जाते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि हर एक दिन का मजा उठाना चाहिए. बी इट मंडे बी इट संडे, हर एक दिन होता है खास एंड स्पेशल बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो लेट्स मेक इट स्पेशल, लेट्स सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे. अभी के लिए तो ऐसे ही कुछ गाने जो आपके इस मंडे आफ्टरनून को खास और स्पेशल बना रहे हैं, साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स. थैंक यू सो मच. ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. इट्स योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ till 4 p.m.

भी मनाया. यस, हम जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ऑन 18th of July. और इसी के साथ यहाँ पर एक खास तरीके से उनके हस्बैंड यानी कि प्रियंका के हस्बैंड निक जॉनस ने उनका 44th बर्थडे सेलिब्रेट किया. साथ ही उन्होंने एक सरप्राइज भी फैंस के साथ शेयर किया. सो यहाँ पर संडे रात निक ने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रपोजल नाइट की एक प्यारी सी थ्रोबैक सेल्फी पोस्ट की और इस तस्वीर में निक कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं प्रियंका अपना हाथ अपने हाथों से अपने चेहरे को थोड़ा सा छिपाते हुए और एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रही है. इस फोटो के साथ निक ने कैप्शन में लिखा दैट 8 years ago शी सेड Yes. और इस पोस्ट को देखकर अब उनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं. निक के इस पोस्ट को शेयर करते हुए प्रियंका ने जवाब दिया कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे पूछा. एंड आपको बता दें दैट निक ने 19th जुलाई 2018 को लंदन में प्रियंका को प्रपोज किया था और इसके लिए उन्होंने एक पूरे स्टोर को बंद करवा कर उनके लिए एक परफेक्ट रिंग चुनी थी. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया और दिसंबर 2018 में जोधपुर में धूमधाम से दोनों की शादी हुई. उनकी शादी कई दिनों तक चली और दोनों क्रिश्चियन एंड हिंदू तरीके से उन्होंने उनकी शादी को सेलिब्रेट किया सभी रीति रिवाजों के साथ. जनवरी 2022 में इस कपल ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया. एंड देन तो हम जानते ही हैं हैप्पीली एवर आफ्टर. बस यही स्टोरी है प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनास की. सो प्रियंका चोपड़ा ने सेलिब्रेट किया अपना 44th बर्थडे एंड स्टिल सो मच इन लव. ये है उनके हबी निक जोनास. चलिए सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना जहां पर हम उनकी आवाज उनके पति की आवाज निक जोनास की आवाज भी सुन रहे हैं उनका साथ देते हुए किंग. एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं. सो चलिए दोस्तों आपके मैसेजेस डेडिकेशंस होने वाले हैं थोड़ी ही देर में ऑन 5499-1294. तब तक के लिए एंजॉय दिस सॉन्ग.

0: Oldies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: और चलिए दोस्तों, जैसे हमने वादा किया था, इट्स टाइम टू रीड आउट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, बी डाउन की अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई और आपने इतने प्यार से हमारा साथ दिया, सो थैंक यू सो मच। और वेल, अभी के लिए कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो एंजॉयिंग द आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं यलेश, रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं आप और कहते हैं अगला गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरिनाम एंड उनके लिए हैप्पी मंडे विशेज, साथ ही ये विशेज हैं फॉर ऑल रेडियो मस्ती लिसनर्स। अब्दुल अंसारा बानो साथ दे रहे हैं आप, वॉर्म वेलकम आपका ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती। और यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी साथ दे रही हैं, कहती हैं थैंक यू फॉर द गाना तुम, आपको उसका तमिल वर्जन भी पसंद है तो थैंक यू, हम कोशिश करेंगे कभी ये वर्जन भी आपके लिए चलाएं। एंड हमेशा जो आप इतने प्यार से हमारा साथ देती हैं, सो थैंक यू सो मच डियर रोशनी। अगला गाना होगा आपके नाम। ललिता जीतन कहती हैं स्कूल हॉलीडेज हैं लेकिन कैन यू इमेजिन मंडे के दिन मैं एंजॉय कर रही हूँ सी साइड पे और सभी कलीग्स को याद कर रही हूँ। तुनिया वी ऑल्सो हैव सुनीता, रीमा, सोनी, तनुषा, सिमला, पारुषी, निर्मा एंड अंजनी और सभी जीतन परिवार के नाम डेडिकेट कर रही हैं अगला गाना। सो एवरी वन हुज कनेक्टेड हमारे साथ, थैंक यू सो मच। हमारे अपाडू परिवार, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। सो छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटिफुल रोमांटिक गाना फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2, अरिजीत सिंह की आवाज। एंजॉय दिस वन। So well friends, इसी ट्रैक के साथ it's time for Pari to say goodbye। आ रही है गिनी शालेकर और रफ्तार वाइब्स। आपसे मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज। तब तक के लिए स्टे वेल कनेक्टेड एंड एंजॉय योर मंडे।

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती, बस यूं ही साथ देते रहना. और फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 4 PM.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ. नमस्कार.
5: नमस्कार गिनीशा, सभी को नमस्कार. थर्ड टर्म में स्कूल खुलने पर कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जाएगा. शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री महिन गंगा प्रसाद के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाना है, साथ ही कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है. अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आज सोमवार 20 जुलाई को लातुकेनी की स्थित नेल्सन मंडेला सेंटर में मनाया गया. गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है नामक विषय पर आयोजित इस समारोह ने याद दिलाया कि मादिबा की विरासत, मानवाधिकारों, समानता और एकजुटता की रक्षा के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयासों का एक आह्वान है. मॉरिशस का सांस्कृतिक जगत शोक में है. मॉरिशस में कवाली के प्रतीक और दिग्गज कलाकार इद्रीस लाल मोहम्मद का 18 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया. 6 दशकों से भी अधिक समय तक उन्होंने इस सूफी संगीत कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. और विदेश में रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला की है जिसमें अधिकारियों के अनुसार कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं. उत्तर पूर्वी शहर खारकीव में 4 लोगों की मौत हुई और राजधानी कीव में एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई. इसके अलावा दक्षिण में ज़ापोरिज़्या में 2 और उत्तर पूर्व में सुमी में 1 व्यक्ति की मृत्यु की खबर है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्कार.
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

बिल्कुल जी, लेके जाएंगे हर एक डेस्टिनेशन पर जहां पर आपको सिर्फ म्यूजिक ही मिलेगा. एंड यस, यू आर ट्यून टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन और चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 4:07 हो चुके हैं. माय डियर लवली लिसनर्स, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. मंडे 28th of July 2026. सो विशिंग ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट मंडे. जैसे मंडे ब्लूज को बोल दो बाय बाय. ऑफिस की फाइल्स हो या ट्रैफिक की लाइन्स, एनर्जी फुल ऑन होने वाली है, रिचार्ज होने वाली है, क्योंकि ये है आपका रफ्तार वाइब्स. एंड ऑफ कोर्स इट्स योर फिल्मी राइट्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर, जहां पर हम गिनीशा साथ देने आ गए हैं रात के 7 बजे तक. सो स्टे ट्यून्ड एंड

0: Stay connected for some non-stop entertainment. और वैसे हम तो कहेंगे जितने भी लोग ऑफिस को छोड़ के अभी निकल के घर की तरफ जाने की तैयारी में हैं और अगर गाड़ी में बैठ चुके हैं तो स्टेयरिंग पकड़ो, सीट बेल्ट लगाओ और वॉल्यूम फुल ऑन करो. घर तो ही जा रहे हो और वैसे निकल चुके हैं, आपका इस सफर को असली साउंड ट्रैक शुरू हो जाएगा क्योंकि रफ्तार वाइब्स में आपके लिए चुन चुन कर लेकर आते हैं कुछ ऐसे गाने जो देता है फुल स्पीड एंटरटेनमेंट. तो चलिए जी, आपको देंगे कुछ ट्रैफिक अपडेट्स, आपको लेके जाएंगे फिल्मी दुनिया में बॉलीवुड ट्रैक्स के साथ एंड ऑफ कोर्स योर लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज भी जरूर देंगे एंड बहुत कुछ. सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन विद मेघनिशा ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. And to all those who are driving, drive carefully. I've got you this beautiful track in the lovely voice of Javed Ali. Here we go. Let's enjoy it.
1: You're listening to a radio.

0: Well, gee, I really hope that you are loving these beautiful गानों का selection जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए on this beautiful Monday afternoon. ऐसे कैसे रहा आपका weekend? I hope कि अच्छा था. अभी तो शादी का season भी चल रहा है, so I guess बहुत सारे लोग जो है शादी वादी में गए थे, enjoy किए थे. हम भी गए थे, हमने भी खूब enjoy किए. इतने मस्ती की कि गला ही बैठ गया जी. So अभी 4:20 हो चुके हैं. All those who are driving, hey, drive carefully, okay? बस इधर उधर मत देखना, straight देखना और side में भी देखना है drivers, क्योंकि हर तरफ देखोगे तभी तो अच्छा गाड़ी चला पाओगे. तो चलिए जी, काम खत्म, चाय रेडी और मूड भी होना चाहिए स्टडी से, क्योंकि मंडे इवनिंग अब होगी फिल्मी और फन और बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती. सो जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो ऑन किया है, सो वेलकम टू रफ्तार वाइब्स. दैट्स योर फिल्मी राइड्स ऑन रेडियो मस्ती. 4-7 तक सिर्फ एंटरटेनमेंट की ही गारंटी हम आपको देते हैं. तो चलिए जी, फिलहाल के लिए जैसे कि आपको पता है हम आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते. ऑफकोर्स आई गॉट यू योर गेम, यानी कि मेरे पास फिर से एक गिफ्ट है आपको देने के लिए. आई गॉट ticket. Yes, it's a ticket to give away to you to watch the concert of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius. So play with MBC right now and stand a chance to win one ticket to the golden 90s era. Yes, it's a tour featuring Abhijit Bhattacharya. He's going to be live in concert in Mauritius on Saturday 25th of July 2026 as from 7:30 PM jo hai at SVICC at Pai. Aapko mauka milega to step into a world of nostalgia jahan pe dobara jee payenge aise unforgettable voice jinhone डिफाइन किया था बॉलीवुड्स गोल्डन एरा को. जी हाँ, एंजॉय कर सकते हैं ऐसे इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक. टिकट्स खरीदना हो तो इट्स अवेलेबल एट moticket.mu एंड रेजो उतायो एंड टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम 850 rupees. ऐसा मौका आपको गवारा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इट्स a concert that you need to experience. Yes, reservation ke liye I have a hotline number jo hai 466-99-466-99-99. Aur abhi ke liye I can give away a ticket. Yes, for you in your rough town vibes jahan pe hai. Agar aap ban gaye lucky winner, so you can win the ticket to watch the concert live. Hum aapko sunayenge ek dialogue. Ji haan, aapko bas mujhe batana hai ye kaun se actor ki aawaz hai. Who is this actor?
1: Feel karne ke liye pehle sare dar mitana zaruri hai. Chhod diye jane ka, akele reh jane ka dar. तुम सारी जिंदगी इस डर को साथ लिए जी रही हो. इस डर से कि वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम ही पहले उन्हें छोड़ देती हो. You want to say bye before they can say bye.
0: बिल्कुल जी, आप ध्यान से सुनिए और पहचानिए ये कौन से एक्टर की आवाज है. एंड यू जस्ट हैव टू सेंड इट टू मी ऑन 5499-1294 पर.
1: इस डर को वंस एंड फॉर ऑल बाय बोल दो, क्यों ना जिंदगी से हाय करके वापस जिंदगी से मुलाकात करें.
0: बिल्कुल, जिंदगी से दोबारा आप मुलाकात करेंगे. मुझे तो हाय बाय भी नहीं चाहिए, आपका सही जवाब चाहिए ऑन 5499-1294 पर. फुल नेम फुल एड्रेस के साथ सेंड मी द राइट आंसर 5499-1294. एंड ऑफ कोर्स यू कैन विन अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव. यस, अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस ऑन 25th of July 2026 आज फ्रॉम 7:30 PM एट SVICC एट पाई. बेस्ट ऑफ लक टू यू.
2: You're listening to a Radio Masti.
3: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी.

0: इसलिए लड़कियां लड़कों जैसी नहीं होती और लड़के लड़कियां जैसे नहीं हो सकती हैं अलका याग्निक और शान की आवाजों में अ ब्यूटीफुल वन है जी हां टेकन फ्रॉम द मूवी हम तुम जो 2004 में रिलीज हुई थी ऐसे क्यों नहीं होते हैं लड़कियां लड़के जैसे और लड़के लड़कियां जैसे क्यों नहीं होती अरे चद्दो ना यार की फर्क पैंदा है क्या हो जाएगा कुछ नहीं है चलो जी बढ़ते हैं अगले गाने की ओर लेकिन उससे पहले लश्क राउत की आजकल लकी विनर कौन है
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.
0: बिल्कुल जी फिल्मी राइट्स तो हम करा ही रहे हैं इतने खूबसूरत बहुत ही प्यारे प्यारे बॉलीवुड के गाने सुना रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को लाइक इन जी हाँ I've got a voucher to give away to you right now a ticket it's a ticket जहाँ पे आप जा सकते हैं to watch the concert of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius कौन जाना चाहेगा आप ऑफ कोर्स किसका मन नहीं है जाने का लेकिन आपको याद दिला दे कि as per the rule we have only one lucky winner यानी कि it's a game happening right now जहाँ पे हमने पूछा है ये सवाल कि ये किसकी आवाज है कौन सी एक्टर की आवाज है
3: सेफ फील करने के लिए पहले सारे डर मिटाना जरूरी छोड़ दिए जाने का अकेले रह जाने का डर तुम सारी जिंदगी इस डर को साथ लिए जी रही
0: तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी डियर जिंदगी और पूछा गया ये सवाल कि ये कौन से एक्टर की आवाज है द राइट आंसर इज शाहरुख खान
3: उसी दर्द से गुजरना नहीं चाहिए
0: बिल्कुल जी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया एंड थैंक यू सो मच

each and everyone जिन्होंने participate किया है आज और as per the rule of course only one lucky winner और आज के lucky draw में हमारा आज का lucky winner है Anila Design So congratulations to you Anila Desain jo rehti hain Avenue des Palmiers 4 bon yes aaj ka lucky winner she is so congratulations to you my dear you are winning a ticket to watch the concert live of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius on 25th of July 2026 from 7:30 p.m. at SVICC at Pai thank you so so much my dear and congratulations once again to you aur baki jo hamare listeners hain jinhone participate kiya hai lekin jinka luck ne saath nahi diya hai are meri jaan छोटा नहीं करते हम फिर से आएंगे एक और सवाल के साथ विद वन मोर टिकट एट 6:30 p.m. द सेम कॉन्सर्ट के लिए सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड तो चलिए जी दिस ब्यूटीफुल एंड लवली हेयर सॉन्ग जो है गोज आउट स्पेशली टू ऑल माय डियर लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं

0: You're listening to Radio Masti.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
0: Sports News.
2: Radio Masti in the mix.
3: आप लोग कहेंगे कि इंतजार है हमारे स्पोर्ट्स गुरु का रहे हम तो हम खुद इंतजार में बैठे कि कब आएंगे कब हम बातचीत करेंगे तो वेलकम इन द स्टूडियो एंड वेलकम ऑन बोर्ड ऑन आवर टू रेडियो मस्ती शो सर्विंग गुड आफ्टरनून टू
4: गुड आफ्टरनून आपको सो यही बात हो रही है चारों तरफ रिगार्डिंग स्पेन स्पेन किसी को ये जीत ये हार या जो यू कहें इट वाज नॉट पेनफुल क्योंकि स्पेन वर्क्ड फॉर दैट
3: या दे वर द बेस्ट लास्ट नाइट जो कुछ भी है
4: अभी गिनिशा बता रही थी मेसी को गेंद छूने नहीं दिया
3: बिल्कुल एक्चुअली व्हाइल वाचिंग द मैच आई वाज सेइंग लाइक कि ये लोग सब कुछ कर रहे हैं कि ये बॉल जो है मेसी तक ना पहुंचे कर
4: और पहुंच भी जाता तो कुछ खास होता नहीं शायद गोलकीपर जो है स्पेन का उसको अपना न्यूज़पेपर रख के थोड़ा खेलना पड़ता
3: बिल्कुल क्योंकि बॉल मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी अगर न्यूज़पेपर मिलता वो पढ़ता कॉफी पीता चाय पीता वो तो बस स्पेन मतलब ओनली हाफ द मैदान ही खेल रहे थे
4: डिफेंस स्पेन का एकदम तगड़ा और कैन यू इमेजिन 19 ईयर ओल्ड एक सेंटर बैक का सभी मैच उसने खेला कुबासी और उसको बेस्ट यंग प्लेयर भी दिया गया और स्पेन डिजर्व वन इट केवल वर्ल्ड कप नहीं बल्कि बेस्ट प्लेयर ओड्री को दिया गया और बेस्ट यंग प्लेयर भी ये लोग ले गए देन बेस्ट गोलकीपर भी ले गए सो मेनी अवार्ड्स जबकि फ्रांस के लिए एम्बापे ने दूसरी बार के लिए इज द फर्स्ट वन है लगातार दो बार ये गोल्डन बूट जीतना टॉप स्कोरर विथ 10 गोल्स और ओलिजे फ्रांस का ही खिलाड़ी उसको असिस्ट सबसे ज्यादा असिस्ट के लिए अवार्ड दिया गया स्पेन एक डोमिनेंट फोर्स है ये पांच सालों में दे हैव 16 टाइटल्स चाहे वो क्लब को लेकर हो या फिर वर्ल्ड वुमेन फुटबॉल में भी
3: दे इवन फीफा में भी ना वुमेन फुटबॉल में दे आर द बेस्ट एंड दे वॉन
4: विनिंग मशीन वुमेन्स फुटबॉल में 11 टाइटल्स 2022 से लेकर 2026 तक मेन्स फुटबॉल में पांच टाइटल 2020 से लेकर 2022 से लेकर 2026 तक वर्ल्ड कप 26 में यूरोपियन चैंपियन 2024 में नेशंस लीग 2023 में फिर अंडर 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स

0: 24 में और अंडर 19 यूरोपियन चैंपियन 2026 में ये लोग बने. और डेला फुएंटे ये जो कोच है, बहुत लोग कह रहे थे कि बड़ा नाम नहीं है, इट वाज रिस्की उसको अपॉइंट करने के बाद इन बैक इन दिसंबर 2022. बहुत कम लोग जानते थे कि वो शुरू में ही नेशंस लीग जीतेगा 2023 में, 2024 में यूरोपियन चैंपियनशिप और अभी वर्ल्ड कप. इन ए शॉर्ट टाइम फ्रेम इतना कुछ जीत गया. सो स्पेन वेल डिजर्व्ड. जबकि स्कालोनी जो है अर्जेंटीना का मैनेजर, आज कल में से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बिकेम इमोशनल, ही वाज इन टीयर्स अपने फ्यूचर के बारे में जब उसने कहा. तो स्कालोनी वाज बिडिंग टू बिकम ओनली द सेकंड मैनेजर इन हिस्ट्री टू रिटेन द ट्रॉफी ओवर आफ्टर ओवरसीइंग अर्जेंटीनास 2022 ट्रायंफ इन कतार. तो इस बार नहीं जीत पाए, मे बी नेक्स्ट टाइम. और ये भी है कि लामिन यामाल इतने कम उम्र में जो किया उसने फुटबॉल, मान लो उसका कंप्लीट फुटबॉल 19 ईयर ओल्ड. सभी लोग लियोनेल मेसी को रोते हुए देख रहे थे और लामिन यामाल हंस रहा था. ये वही लामिन यामाल है जो एक समय लियोनेल मेसी की गोद में खेल रहा था उसको.
1: एग्जैक्टली. एक्चुअली ये कहानी जब हमने पढ़ा ना, तो आई वाज लाइक अ बिट शॉक कि मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल डेस्टिनी ब्रो. क्योंकि ये देखा जाए तो उसके पेरेंट्स जो हैं, जो जब उनको वो सिलेक्ट किया गया था यूनिसेफ से, यू नो, एज अ फैमिली कि एक फोटो शूट करना है विद मेसी, तो उनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि हमारे बेटे को गोद में लेके फोटो खींचेंगे और इतने सालों के बाद दे विल बी प्लेइंग ऑन द सेम ग्राउंड अगेंस्ट ईच अदर.
0: लामिन यामाल उसके स्टोरी को तो सभी लोग जानते हैं. और इस टीम में विलियम्स भी खिलाड़ी हैं जिनके पेरेंट्स दे वर रिफ्यूजीज.
1: बिल्कुल.
0: और वहां से वर्ल्ड टाइटल जीतना, प्लेंटी ऑफ सक्सेस स्टोरीज.
1: Yeah, actually this shows, this time now World Cup ने show कर लिया है कि आप कहीं से भी आए हो, अगर आपके अंदर talent है, you're hardworking and blessings है सबके, so why not, you can achieve anything, even a golden trophy.
0: बहुत कुछ होगा, अब देखना है कि इस वर्ल्ड कप का aftermath जो है वो प्रीमियर लीग फुटबॉल में क्या हो सकता है. कुछ खिलाड़ी जो है जैसे अलेक्सी मैकअलिस्टर, उसकी टीम हार गई, उस फ्यूचर क्या है. कोबी माइनू जिसको खेलने का मौका नहीं दिया गया, बुकायो साका, तो ये सब एक्सपीरियंस लेकर ये लोग क्या करेंगे. अभी इंजुरी भी बहुत संभव है क्योंकि बहुत फुटबॉल खेला इन्होंने. जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंडर कल घायल हो गया, विलियम सालिबा भी स्पेन के खिलाफ घायल हुआ था. तो एस्टन विला का अमादू ओनाना वो घायल हुआ था और एस्टन विला के लिए शायद नहीं खेल पाएगा इस सीजन. फिर बोर्नमुथ से विंगर रायान हैड ए डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप फॉर ब्राजील. अब इसका इफेक्ट इधर कैसे पड़ेगा. इगो चागो केवल 62 मिनट खेल पाया फॉर ब्राजील. और तो वी विल हैव द aftermath इन द कमिंग प्रीमियर लीग. प्रीमियर लीग की बात हुई तो एस्टन विला ने वुल्व्स के मिडफील्डर गोमेज को साइन कर लिया है, 38 million pounds sterling. योआओ गोमेज वुल्व्स से उसे साइन किया गया. द ब्राजील इंटरनेशनल 34 million pounds sterling पर आएगा शुरू में, फिर 4 million एड ऑन. विला अभी कुछ समय पहले उसने 50 million pounds sterling से फ्रीबर्ग के मिडफील्डर योवान मनजाम्बी को साइन किया. और काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आ रहे हैं. तो विला यूरी चेलेमांस को उसने बेचा मैनचेस्टर यूनाइटेड से 35 million pounds sterling. और मोगन रॉजर्स वो 117 million pounds sterling डील चेल्सी की ओर. सो बाइंग एंड सेलिंग एस्टन विला इसमें लग चुका है. अब देखना है कौन किसको खरीदेगा क्योंकि वर्ल्ड कप इज प्रैक्टिकली ओवर. प्रैक्टिकली ओवर नहीं, ओवर हो गया है. सो क्रिकेट में भी कल भारतीय टीम की हार हुई और दैट वाज ए हाई स्कोरिंग मैच, लेकिन इंग्लैंड ये सीरीज 2-1 से जीत लेती है. साइकिलिंग में आज टू डे फ्रांस जारी है. सो ईव निपोएल बहुत नाराज़ हैं क्योंकि उसने बताया कि इस रेस से पहले रात में उनको जगाकर डोपिंग टेस्ट कराया गया और इसका असर शायद विंगेगाउट के क्रश आउट होने में लगा. तो पोगाचार अपने लीड को एक्सटेंड करने लगा है अभी, जबकि लेडीज टू टाइटल बैकस्टेप वहां पर पहले हैं. और हैं कुछ बताएंगे आपको, जरूर कल सुबह जरूर सुनिएगा. और विल हैव अवर रूटीन मैग

0: मैगजीन जो हम लाते हैं सात बजकर 40 मिनट पर, और अभी साढ़े 8 बजे हम लोग जो वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन कर रहे थे, वर्ल्ड कप इज नो मोर देयर, लेकिन एक अगर आप लोग मिस कर गए सुबह साढ़े 7 बजे 7:40 वाला स्पोर्ट्स, तो विल हैव अनदर स्पोर्ट्स न्यूज एट 8:30 है यहीं पर, ताकि खासतौर पर जो लोग ऑफिस जाते हैं कोटरी या फिर कहीं पर दे आर ड्राइविंग टू देयर ऑफिस, तो आप ट्यून इन देयर कल सुबह 8:30 बजे विल हैव आवर सेकंड स्पोर्ट्स मैगजीन, पहला जो है यहीं पर होगा, दैट विल बी एट 7:40 रेंडेवू प्री
1: ओनली ऑन रेडियो एस। थैंक यू सो मच अरविंद,
0: वेलकम।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट।

0: 2.
1: Traffic update.
2: बिल्कुल जी, 4:55 हो चुके हैं। तो चलिए जी माय डियर लवली लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, और चलिए देखते हैं आज का इवनिंग ट्रैफिक अपडेट उन सब के लिए जो ऑफिस से घर जा रहे हैं। अगर आप पोर्टली से नॉर्थ या साउथ की तरफ निकल रहे हैं तो रेडी हो जाइए, क्योंकि स्लो मूविंग ट्रैफिक और हैवी जाम के लिए बिल्कुल एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। पीक आवर चल रहा है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जो है आप निकल जाइए। और जो लोग वेदर रोड से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं वहाँ फिलहाल ट्रैफिक स्लो है, लेकिन मूव हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जाम और बढ़ने के चांसेस हैं, तो प्लीज़ पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए। रेजुई सेंट पियर फिनिक्स और फिनिक्स से साउथ की तरफ भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है, ट्रैफिक स्लो बट मूविंग है, तो थोड़ा डिले एक्सपेक्ट कर लीजिए। और रोजिल और कैट्रोबोनो ऑलवेज उस साइड पे तो रोज की तरह आफ्टरनून रश शुरू हो चुका है, स्लो ट्रैफिक, स्टॉप एंड गो मूवमेंट एंड काफ़ी कंजेशन देखने को मिल रहा है। सो एक छोटी सी एडवाइस है हमारे ड्राइवर्स के लिए, घर 5 मिनट लेट पहुंचना बेटर है दैन कोई रिस्क लेना, ठीक है। लेन बार बार चेंज मत कीजिए, इंडिकेटर यूज कर लीजिए, फोन को साइड में रखिए और कूल रहकर ड्राइव कीजिए। ट्रैफिक आज नहीं तो थोड़ी देर में क्लियर हो ही रही जाएगी, टेंशन मत लीजिए, बस रेडियो मस्ती के साथ मस्ती करते रहे। और हम है गिरिशा जो साथ दे रहे हैं, और आपका रेडियो मस्ती ट्रैफिक अपडेट हम रोज लेकर आते हैं। सो ड्राइव सेफ, स्माइल करते रहिए और घर सेफली आप पहुंच जाइए। तब तक के लिए ये खूबसूरत सा गाना आपके नाम।

0: अवतार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OM2।
2: अरे मेरे बाकी छोरे, हाँ जी, हमारे बुलाने पर रोज तो आ जाते हो। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती चुकियो टाइम। स्टूडियो के घर में एग्जैक्टली 5:09 हो चुके हैं। सो वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार एंड टू ऑल ऑफ योर लवली लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आपका भी स्वागत है ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन और ये है आपका रफ्तार वाइब्स, दैट्स योर फिल्मी राइड्स, हर मूड का साउंड ट्रैक, हर दिल की धड़कन सिर्फ रेडियो मस्ती पर, और वो भी की निशा के साथ। तो चलिए जी, आराम आराम, धीरे धीरे हौले।

बिल्कुल गाड़ी चला लिया करो. अभी हाई गोज टू ईच एंड एवरी जो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, यानी कि जो लोग बस से सुन रहे हैं, गाड़ी से सुन रहे हैं, ट्रक से, मेट्रो से, टैक्सी से, अरे जी कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, ये अगला गाना खासकर आपके नाम. एंड स्पेशली टू ऑल दोज जो अभी काम से निकल रहे हैं, हम तो कहेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखें.

0: और बस धीरे धीरे जब आप गाड़ी चलाएंगे हम आपका साथ जरूर देंगे. And all those who just want to send me some dedication, so बिल्कुल जी allowed है अपने दिल की बात हम तक पहुंचाना. It's happening on 5499-1294 पर 5499-1294. For now I have Sunidhi Chauhan, Anand Raj. Anand, aap logon ke liye. And that's taken from the movie Musafir. All the way here. Especially for you in your roughed out vibes. That's your filmy rise. Especially on Radio Musti.
1: Sunte raho.

0: You're listening to a Radio Masti.
1: चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है और आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन रेडियो स्टेशन है यानी कि ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती में कि निशा ऑन द माइक साथ देने के लिए. वेल जी, आई रियली होप कि हर एक गाने को आप अच्छे से दिल से एंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर रियली लविंग ईच एंड एवरी बीट. सो वैसे अगर आप घर पहुंच गए हैं, कुछ लोग अगर जल्दी से निकल भी चुके थे ऑफिस से तो शायद घर पहुंच गए, शूज साइड में रख दिए, बैग सोफे पे हैं और अब डिनर की तैयारी करनी है. परफेक्ट हुआ क्योंकि हर रेसिपी के साथ थोड़ा म्यूजिक भी जरूरी होता है दोस्तों. कुकिंग हो या फैमिली के साथ मस्ती हो, रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स हैं यहाँ पर आपका साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, योर डेडिकेशन आपने भेजे हैं ऑन 5499194 पर. हर हर महादेव. आपको भी राधा जी जो है फ्रॉम कैनेडा. द नेक्स्ट वन फॉर योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर डियर वंस एंड ऑल लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं. हे आंटी, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो सो मच. माय डार्लिंग यारे शाम फ्रॉम सुरीनाम, थैंक यू सो मच. एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन. आपकी बेटी दृष्टि का जन्मदिन है, सो आई जस्ट वांट टू विश हैप्पी birthday hey to you my sweetheart. Best wishes aapke pure family ki taraf se. Lots of love and happiness to you. Especially we do have the next one, especially for you my darling jo hai saath de rahe hain. नाम नहीं लिखा. अच्छा, I am the darling here. Okay, thank you so much. तो चलिए जी, ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे फॉर यू अनीटा जो है फिका फ्लैक्स से. थैंक यू सो मच, विशिंग यू अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर एंड हैप्पी मंडे एंड हैप्पी न्यू वीक फ्रॉम शेनाज जोगी जो है फ्रॉम रिविया जोगापा. सभी सुनने वालों के नाम ये अगला गाना उनकी तरफ से. हे ललिता जिटन, हम बिल्कुल ठीक है, एंजॉइंग हस. आपकी स्कूल हॉलीडेज है ना, टीचर है ना, इसीलिए सी साइड हाय हाय समुंदर किनारे बैठे हो और एंजॉय कर रहे हो. आपके कोलिग्स के नाम थी चटानिया, सोनिया, प्रीता, सुल्तना, पूर्णिमा एंड वी हैव अ पिंकी, सरिका, परुशी, रीमा, ललिता, जीटन फैमिली जो है लावांचा से जो साथ दे रहे हैं. सभी लोगों के नाम ये अगला गाना. एंड चलिए, वी डू हैव ये अगला गाना स्पेशली टू ऑल दोस हु आर स्टिल एट वर्क एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आई एम गोइंग टू ब्रिंग बैक सम लवली सुविनियर्स बाय प्लेइंग दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. आपके नाम विनोद राठौर, करसन संगाठिया, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251 6363।

0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वाले आज एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: रेडियो मस्ती।
3: तोहर भविष्य के बनाई में हर एगो महत्वपूर्ण निर्णय खातिर एगो भरोसामंद साथी के जरूरत रहेला। सिकुम तोहर जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर तोहर संगे खड़ाबा, तोहर सब आवश्यकता के अनुसार वित्तीय समाधान देवेला, जेकर पर सकबा विश्वास करे। हमनी तोहर सपना के पूरा आत्मविश्वास से और बिना तोहरा कोनो चिंता देवत तोहर सपना साकार करे में तोहर संगे है जा। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के कोनो भी अधिकारी से संपर्क करिया या sikkim.mu पर जाइया। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकुम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
2: RM2
4: रेडियो मस्ती।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: नमस्ते। फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
1: तो चलिए जी, 5:35 हो चुके हैं और हम फैशन टिप्स लेकर

0: आए हैं सो हमारे रेडियो फैमिली ये जो है रेडियो मस्ती फैमिली है. स्कूल हॉलीडेज आ चुकी हैं और मॉरिशस की विंटर भी फुल स्विंग में है आजकल, तो स्टाइल के साथ साथ थोड़ी वार्म भी जरूरी है. और अगर यंगस्टर्स अपने स्कूल हॉलीडेज मना रहे हैं तो आपको बता दूं आज का फैशन टिप, लेयरिंग इज द की. एक कूल टी शर्ट के ऊपर आप लाइट हुडी, डेनिम जैकेट या स्वेट शर्ट पहनिए. पेयर इट अप विद जीन्स, कार्गोज या कम्फी जॉगर्स जो है अपने फेवरेट स्नीकर्स के साथ. सिंपल स्टाइलिश और विंटर रेडी. सुबह और शाम थोड़ी सी ज्यादा ठंड हो जाती है और हम तो कहते हैं एक लाइट जैकेट साथ रखना हमेशा स्मार्ट चॉइस रहेगा. और हमेशा याद रखिए कि फैशन सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों के नाम नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंस और कंफर्ट का भी कॉम्बिनेशन होता है. वैसे जो पहनो उसे प्राउडली हमेशा कैरी करो. ये था आज का रेडियो मस्ती फैशन टिप. स्टे वार्म, स्टे स्टाइलिश और स्कूल हॉलीडेज को फुल ऑन एंजॉय करो सिर्फ रेडियो मस्ती के साथ. एंड कीप ऑन listening to us 24/7 aapke khidmat mein hazir hai.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, house of ready made garments.
0: For those who are truly madly deeply in love listening to me at this time, to chaliye ji, this one goes out to you and it's taken from the movie Sayyara. You're listening

0: दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी साथ देने के लिए ऑन आर राइम टू रेडियो मस्ती एंड जस्ट टू रिमाइंड यू द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक आर राइम टू रेडियो मस्ती अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया सो डू इट राइट नाउ राइट नाउ एंड यू गोना बी हियर नोटिफाइड एवरी टाइम जब भी हम लाइव आएंगे बिल्कुल जी फिलहाल के लिए चलिए आज है मंडे 20 ऑफ जुलाई टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज आई जस्ट वांट टू विश अ मैजिकल बर्थडे ऑन रेडियो मस्ती हमारे पूरे रेडियो फैमिली हियर के मस्ती फैमिली की तरफ से एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू बेबी आरशाद ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी बेबी रेबिका आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं शी सेइंग दैट सो डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन अच्छा मेरे लिए ब्यूटीफुल गिनिशा थैंक यू सो मच फुल ऑन एनर्जी फॉर अवर सो दैट यू कंटिन्यू टू एंटरटेन अस लाइक दिस शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्यार है आप लोगों के आशीर्वाद है तभी तो हम आ जाते हैं ऐसे ही खुशी खुशी से साथ तेरे के लिए एंड हे शाम देवी चंजन जंग द शो एट होम एंड गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पी रही हो एक प्याला हमारे नाम हो जाए ना तो चलिए जी फुल ऑन वॉल्यूम लगा के रेडियो मस्ती आपके लिए सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू टुंग टुंग व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम ओ माय God, tung tung. I just love saying that name. So tung tung, aapke liye from the bottom of the heart. Kisi ne bola hai, I love you. Thank you so much. Dedicating the next one for you, my dear. That's so sweet. Lekin aaj to likha nahi hai na, kisne bheja hai ye message. To chaliye ji, aaj Goodlands mein hamare brother-in-law Satya ka janmdin hai. Wo actually Belma ke rehne wale hai. So happy birthday to you. And aapka message adhura reh gaya. So I guess it's from the entire family. And Yashish. From Chateau Benares dedicating the next one for you as well and chaliye ji we have Elia Dipen Chaudhary from Nepal watching us live Dinesh Gopi and we do have Daya the next one goes out to you you're watching us live on TikTok see Ava Sand the next one goes out to you and from the smiling coast of Africa the Gambia and DJ Mass is watching us thank you so much and good evening from Ruby Jags and Neha Ratan and Ragini Ratan Sadi Rahihe, Rajiv Niasu and Kajal Dia and Veer Devan, Vicky Himokun, Manoj Pieta from Sebastopol. To chaliye ji itne hi pyare pyare messages aap log bhej rahe hai. Keep on watching us live on TikTok, RM2 Radio Masti. And here we go. Let's all enjoy the next song.
1: RM2 Radio Masti.

0: Sides. RM2.
1: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा आपका और हमारे बीच में। वैसे मंडे का दिन चाहे कितना भी हेक्टिक क्यों ना रहा हो, शाम सिर्फ आपकी है। चाय का कप उठाइए, बालकनी में बैठ जाइए या किचन में डिनर बनाइए। बिल्कुल जी, हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो गाने जो थकान को दूर कर देंगे और कहेंगे बाय बाय। या ये है आपका रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइट्स हैपनिंग राइट नाउ ऑन आवर टू रेडियो मसी, बस आपके और हमारे बीच में। और फिलहाल के लिए चलिए जी, आई गॉट योर डेडिकेशंस ऑन 5499124 पर एंड वी डू हैव अवर ब्यूटीफुल मालिनी। हे मालिनी my sweetheart, jo hai from Mont-Saint-André, the next one goes out to you. Aur pooch rahi hai, sweet, meethi, gini, kaise ho aap? Sweet hai, meethi hai, aur acche bhi hai. To chaliye ji, God bless you always, from Kumar Devi Chun Perebeyase, teacher of design technology. Hey, thank you so much, and I guess your papa as well is listening to us at the moment. And chaliye ji, we do have ye agla gana for you, Ashna Jawahia from Nouvelle France, dedicating the next one apne family ke naam. Do behne hai, Anushka hai, Ananshini hai, family people. So the next one goes out to you, my dear. And to all those who are watching us live, we have Guda Madvi and Praveen Guda ke liye agla gana. Jo mana rahe apna janmdin, so happy birthday. And Avinesh. And we do have Indira ji and Parvati ji. Radha namaste to you. And chaliye ji, ye agla gana Rajesh Uga ke liye. We have Kajal Ramphul. And the next one goes out to you, Pooja Budan, Rashidin Miran. And we have the next one, Kisine Bola, nice to see you again. And mujhe laga tha aap India wapas chale gaye, hum kyun jayenge wapas India, hum to yahan ke rehne wale hain, Mauritius hai to Mauritius mein hi rahenge. Hey, Shiksha, ye agla gana khas kar aapke naam hai. Thank you so much to all those who are watching us live on TikTok, RM2 Radio Masti. To all those who are saath de rahe hain, safar mein hain, ghar ja rahe hain, kaam se, to chaliye ji, ye gana aapke mood ko lift up karne ke liye.
2: RM2 Radio Masti.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2

0: बिल्कुल जी, दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। और थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, 6 बजे के समाचारों के बारे में। द गुड म्यूजिक विल कंटिन्यू ऑन आवर टाइम टू रेडियो मस्ती विद मी हियर गिनिशा। एंड फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 PM।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विश्व कप 2026 का समापन हो गया है। एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के गोल की बदौलत स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब जीत लिया। यूरो जीतने के 2 साल बाद लाहौजा ने खुद को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में स्थापित कर दिया। थर्ड टर्म से स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्त नियंत्रण। छात्रों को फोन साइलेंट मोड में बैग के अंदर रखना होगा और इसका उपयोग केवल चिकित्सीय या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा। ये कदम साइबर बुलिंग टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने और पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाने के लिए उठाया गया है। मॉरिशस के प्रसिद्ध कव्वाली गायक इदरीस लाल मोहम्मद का 18 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया। 6 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने सूफी संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत पर अमिट छाप छोड़ी। और विदेश में कैस्ट ऑमे के औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने एंडी बर्नहम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब समाचार विस्तार से। विश्व कप 2026 का समापन हो गया है। एक ऐसे मैच में जिसमें स्पेन का पूरी तरह दबदबा रहा और अर्जेंटीना ने अपना पहला शॉट 117वें मिनट में लिया। स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के गोल की बदौलत जीत हासिल कर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर दिया है। अपने यूरोपीय खिताब के 2 साल बाद लाहौजा ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में अपनी स्थिति पर मुहर लगा दी है। याचना मिश्रा।
1: स्पेन दुनिया का नया चैंपियन बन गया है। रोड्री और उनके साथी अब जश्न मना सकते हैं। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने फीफा विश्व कप का खिताब जीतकर एक बार फिर साबित किया कि वो विश्व फुटबॉल की नंबर एक टीम है। न्यूयॉर्क में खेले गए इस फाइनल में स्पेन ने पिछले विजेता अर्जेंटीना पर पूरे मैच में दबाव बनाए रखा, लेकिन गोल के लिए उसे लंबा इंतजार करना पड़ा। लाहौजा को बार बार अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेस ने रोका, जिन्होंने इस फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने स्पेन के 11 गोल प्रयासों को विफल किया। दूसरी ओर स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमन के लिए ये मुकाबला अपेक्षाकृत आसान रहा, जैसा कि पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला। लियोनेल मेस्सी की टीम अर्जेंटीना पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई और आक्रमण में लगभग नाकाम रही। पूरी टीम सिर्फ 2 बार गोल दागने की कोशिश कर पाई। मैच के दौरान रेफरी ने 5 पीले कार्ड दिखाए, सभी अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को मिले। वही एंजो फर्नांडिस को 93वें मिनट में रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इसके बावजूद अर्जेंटीना डटकर स्पेन के सामने खेलता रहा।
2: Pedro Porro, Williams, and thundered in for Spain by Ferran Torres! At last!
1: आखिरकार फेरान टोरेस ने स्पेन को चैंपियन बनाते हुए गोल दागा और कामयाब हुआ। मैच समाप्त हुआ स्पेन 1-0। अर्जेंटीना के सभी सपने चकनाचूर और स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने देश वापस ले गया।
3: Back to him. It was one way traffic, but there's no denying them this trophy. Magnificent achievement.
0: राष्ट्रपति धर्मगोकुल कल विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए भर्ती होने के बाद आज सुबह घर लौट आए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के कम्युनिकेशन सेल के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ होने के बाद राष्ट्रपति अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे। एमबीसी का आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कर्मचारियों के पुनर्व्यवस्था का एक नया चरण शुरू। अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपने मानव संसाधन ऑडिट की सिफारिशों को लागू करना जारी रखे हुए हैं, जिसे हाल के महीनों में पूरा किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य संस्थान की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार इसके पुनर्गठन और

0: कर्मचारियों को अनुकूलित करना है ताकि एक अधिक आधुनिक कुशल और सार्वजनिक सेवा के अपने मिशन को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार एमबीसी का निर्माण किया जा सके। इस प्रक्रिया का एक नया चरण आज शुरू किया गया है। इसमें लगभग 40 कर्मचारियों का एक समूह शामिल था जिनकी स्थिति की समीक्षा नई व्यवस्था के तहत की जानी थी। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लगभग 15 कर्मचारियों को उनकी नौकरियों में स्थायी कर दिया गया है और कुछ अन्य लोगों को उनके विकास में सहायता के लिए परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान से लाभ मिलेगा। दुर्भाग्यवश लगभग 20 कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिए गए हैं। एमबीसी इस बात से पूरी तरह अवगत है कि इन निर्णयों का संबंधित व्यक्तियों और उनके परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई और इसे लागू प्रक्रियाओं, कानूनी दायित्वों के सम्मान के साथ और जिम्मेदारी से तथा मानवीय तरीके से कार्य करने की चिंता के साथ निपटाया गया है। जिन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुए हैं उन्हें लागू कानून के तहत प्रदान किया गया अधिकतम मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक और वित्तीय तौर तरीकों के बारे में उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है। संबंधित कर्मचारियों को ये भी सलाह दी गई है कि वे हस्ताक्षर करने से पहले अपने कानूनी सलाहकार या श्रम कार्यालय यानी लेबर ऑफिस द्वारा उन्हें प्रस्तावित कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट की समीक्षा करवा लें। यह आधुनिकीकरण प्रक्रिया एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य एमबीसी को ऑडियो विजुअल परिदृश्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित संगठन प्रदान करना है, साथ ही संस्थान की निरंतरता और जनता के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करना है। संबंधित कर्मचारियों की निजता और उनकी स्थिति की गोपनीयता के सम्मान में एमबीसी व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये थी एमबीसी की ओर से एक विज्ञप्ति। अन्य खबरों में, उसका नाम अज़राइल था, वो केवल 2 साल का था। 6 जुलाई को सुदनाक स्थित अपने घर पर एक कैंडी से गला घुटने के कारण उस छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। ये त्रासदी जिसने एक पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है एक ऐसी वास्तविकता की याद दिलाती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आकर्षक रंगों वाली इन मिठाइयों के पीछे कभी कभी छोटे बच्चों के लिए घातक जोखिम छिपा होता है। तो इन उत्पादों की जांच कैसे की जाती है और क्या उपभोक्ता इस बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हैं? चलिए जानते हैं अंजुराम गुलाम की इस रिपोर्ट में। विवरण अर्चिता रघु का है।
1: चमकदार रंग, आकर्षक आकार और मुलायम बनावट जो बच्चों को तुरंत अपनी ओर खींच लेती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए खासकर नरम या जेली जैसी टॉफियां गंभीर खतरा बन सकती हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे अधिक जोखिम में होते हैं क्योंकि उनकी श्वास नलियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं और भोजन को ठीक से पचाने तथा निगलने की क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई। यदि हमने ऐसा जेली देखा है जो पहले कभी नहीं देखा या खाया हो, तब हम उन पर निगरानी रखते हैं। यदि बच्चा खाना चाहता है तो उसको काट कर उसे देते हैं। नर्सरीज और प्राथमिक स्कूलों में टॉफियों की बिक्री पर पाबंदी है, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद या आसपास की छोटी दुकानों पर ये मिठाइयाँ अब भी आसानी से मिल जाती हैं और अक्सर खुली या एक एक करके बेची जाती है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। फूड एक्ट के तहत इसका उल्लेख है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग पर इन जानकारियों का होना अनिवार्य है कि ये खाद्य पदार्थ कहाँ बनाया गया है, नाम क्या है, उपयोग सामग्रियों की सूची क्या है, वजन तथा किस मूल देश से आया है। छोटी पैकेजिंग पर एग्जेम्पशन है क्योंकि उन पर लिखावट इतनी छोटी है कि दिखाई भी नहीं देती। जब टॉफी को उसके मूल पैकेट से निकाल कर बेचा जाता है तो उसके साथ सभी जरूरी चेतावनियां और जानकारी भी गायब हो जाती है। ऐसे में उपभोक्ता को खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है। इन खाद्य सामानों के प्राइस टैग पर यह भी होना चाहिए कि खाद्य पदार्थ किस उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर रंगों से आकर्षित होते हैं, पर इनमें खतरे भी होते हैं जिसके कारण सतर्क रहना चाहिए। कुछ ग्राम चीनी, जेली के कुछ छोटे टुकड़े, देखने में एक साधारण सी टॉफी, लेकिन यही कुछ ही सेकंड में खुशी के पल को एक दर्दनाक हादसे में बदल सकती है। ऐसे अदृश्य खतरे से बचाने के लिए हर समय सतर्क रहना ही आज सबसे प्रभावी सुरक्षा है।
0: एक बार फिर विश्व कप की बात करते हैं। स्पेन विश्व चैंपियन बन गया है और मॉरिशस में इस फाइनल मैच को बेहद उत्साह के साथ देखा गया। बड़े स्क्रीन, शॉपिंग सेंटरों में भीड़ और सार्वजनिक स्थानों

0: मुंह पर जमा हुए सैकड़ों प्रशंसकों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले का आनंद लिया।
1: बहुत से मनोरंजनों के लिए फीफा विश्व कप 2026 का ये रोमांचक अंत यादगार रहेगा, जहां कुछ लोग अभी भी अपनी पसंदीदा टीम की जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं कुछ प्रशंसक अपनी टीम के बाहर होने का दर्द अब तक नहीं भुला पाए।
2: Super content que l'Espagne a gagné parce qu'on est pour l'Europe et donc j'étais très heureux. J'ai dormi tard, il me faut une journée de café aujourd'hui.
3: Ici pour l'Espagne, des combats, des finitions, il m'en reste un seul goal.

0: mon continent a gagné et mon son pied en tout.
1: L'Espagne a pu remporter sa deuxième Coupe du Monde, s'il vous plaît. L'Espagne méritait bien son titre.
2: L'Espagne est bien contente de gagner. Surtout la Myanmar, mon poussé préféré.
3: Final khatm ho gaya, lekin charchaein abhi bhi jari hain. Vishleshan, jazbaat aur behasein is baat ka saboot hain ki antim seeti bajne ke baad bhi football ka junoon Mauritianon ko ek saath jode rakhta hai.
4: La France a été battue par les Espagnols. J'étais enragée. Parce que je pensais qu'ils allaient faire la finale quand même. Donc ça, je suis bien, bien triste.
5: L'Espagne a battu la France, c'est pour ça que j'ai supporté l'Argentine.
6: L'Espagne a bien travaillé, ils ont bien joué aussi, oui, après chacun son tour. La France, on ne peut pas tout en gagner, je comprends.
7: Première équipe qui l'utilisait entre Égypte, ils ont bien fait dominer, ils sont grignons. Ils ont fait avant de perdre ce match-là. Mais hier, je suis bien content, en fait, ils ont perdu le match.
8: Quand l'Espagne gagne, mais dressez-les comme Messi, oui.
9: Je suis bien content, l'Argentine allait, je suis content, parce que l'arbitre est trop potée ici. Je suis content, l'Espagne, tu es encore bien content, l'Espagne.
10: Je pense que si l'Argentine gagne, mais là, tu peux dire FIFA fait l'Argentine gagne. Mais l'Espagne est favori, mais lui-même, tu faisais gagner le football là, non?
11: Je trouve l'Argentine bien gagner ça, ça football là. Le football n'a pas qu'à faire rien. Elle ne peut rien gagner.
12: Bon, enfin, nous bien ça, mais sinon, allez.
13: थर्ड टर्म में स्कूल खुलने पर कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जाएगा। शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री महिन गंगा प्रसाद के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाना है, साथ ही कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। निर्देशानुसार मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखना होगा और उन्हें हर समय बैग के अंदर ही रखना होगा। इसका उपयोग केवल चिकित्सीय कारणों और शिक्षक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मांगे जाने पर ही किया जा सकेगा। शिक्षकों से भी कहा गया है कि वे मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित रखें। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद को सुनते हैं।
14: जब एगो लड़का क्लास में रही क्लास स्वीव करे के चाहला उकरा हौ समय हुआ उकरा नहीं चाहला पोता में रहे के बस कि जब लड़का पोता चेके करता एगो मिसाज आवता बच्चा था पोता में तो नहीं सकता अपन सीजे निमन से स्वीव करे तो वे उकरा नुकसान होवेला ऑनलाइन हरासमेंट बुलिंग जैसे होवेला ऑनलाइन लड़का लोग फोटो मारू वीडियो से अकेले करे लगलन से तो लड़का के अफेक्ट करेला लड़का के प्रोटेजे करे खातिन हम निकाय रेगुलेशन वन ले से और थोड़ा लेटा लेके हम मिजियावा नई से बस कि देखनी से दो तीन गो लेकोल जीजा हम मिजियावा अपना ले वन से और देखा था कैसे हम लेकोल वन में डिसिप्लिन बरकरार बा
15: दुनिया के देखे में आवत भविष्य में ये बहुत फायदेमंद रही हमने के पूरा देश खातिन देखबा जा दूसरा देश में हई फैसला दे बल बा कोनो कोनो देश में एक कम्प्लीटली बैन कर गल बा हमनियो के सैजिका बोलत बा कि छात्र एक एकदम से रेस्ट्रिक्ट करे के बैन करे के कहे कि जब कौतोले कर बजा ढेर बरे से कौतोले करते हुए जा नहीं होत बा अभी देखते जा कि एगो रेगुलेशन चलाल बा देखब सर संगे मिल के मंत्रालय संगे मंत्री संगे काम करब जा बहुत जरूरी बा कि मंत्रालय संगे एगो मीटिंग करे के एगो बैठक लगाए के जब मैं सकब जा देखे कि हई जन हमने नवा रेगुलेशन आ रहे जा ये कैसे सकब जा एक आगे लाए।
13: अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आज सोमवार 20 जुलाई को लातुकेनी के स्थित नेल्सन मंडेला सेंटर में मनाया गया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री मारी आरियाना व मारी कला और संस्कृति मंत्री महिन गुंदिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सत्यजीत बुलेल दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के प्रतिनिधि और प्रिजन्स कमिश्नर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है नामक विषय पर आयोजित इस समारोह ने याद दिलाया कि मादीपा की विरासत मानवाधिकारों समानता और एकजुटता की रक्षा के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयासों का एक आह्वान है। संतना पोंसनो याचना मिश्रा।
16: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर नागरिक को दूसरों की सेवा के लिए अपना कुछ समय समर्पित करने का आह्वान करता है। ये दिन मादीबा के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन के 67 साल स्वतंत्रता न्याय और मानव गरिमा की लड़ाई को समर्पित किया। नेल्सन मंडेला केंद्र के लिए ये साल खास है, वो अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके निदेशक ने याद दिलाया कि ये संस्था उस मिशन को आगे बढ़ा रही है जिसे नेल्सन मंडेला ने 1958 में मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान शुरू किया था, विरासत को संरक्षित करने और न्याय, मेल मिलाप तथा मानव गरिमा के सम्मान के मूल्यों को

0: बढ़ावा देने का मिशन। हमें इस केंद्र को एक ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां इतिहास वर्तमान को बढ़ावा दे, संस्कृति एकता को आगे बढ़ाए, संवाद हिंसा को भगाए और भावी पीढ़ी नेल्सन मंडेला के बारे में, उसके मूल्यों के और जीवन के बारे में जाने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अनुसार नेल्सन मंडेला की विरासत आज की चुनौतियों के सामने भी एक प्रेरणा बनी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि गरीबी, असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मादिबा के साहस को भी याद किया, जिन्होंने 27 साल की जेल के बाद बदले के बजाय मेल मिलाप और क्षमा का रास्ता चुना। दमन का सामना उन्होंने हिम्मत के साथ किया, मानव गरिमा का पालन करते हुए। हमें उनसे सीखना चाहिए कैसे एकजुट होकर एक राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए बिना बदले की भावना के।
1: He engineered the reconciliation of a divided nation without revenge, peacefully, and created a rainbow nation.
0: उबुंटू की विचारधारा, जिसका अर्थ है मैं हूँ क्योंकि हम हैं, पर भी दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग के प्रतिनिधि ने जोर दिया। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि दूसरों के प्रति करुणा और सेवा की भावना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। समारोह का समापन मॉरिशस प्रिजन सर्विस को पुस्तकों के दान के साथ हुआ। इस पहल का उद्देश्य कैदियों के बीच पढ़ने की आदत, शिक्षा और पुनर्वास को प्रोत्साहन देना है। इन पुस्तकों को हम विमेन विंग में डालेंगे। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जेल के अधिकारी भी नेल्सन मंडेला के मूल्यों को
2: अपनाएं।
0: स्मरण समारोह से परे वक्ताओं ने ये संदेश दिया कि नेल्सन मंडेला के मूल्य आज भी एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा देते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और एकजुट हो।
3: मॉरिशस का सांस्कृतिक जगत शोक में है। मॉरिशस में कवाली के प्रतीक और दिग्गज कलाकार इद्रिस लाल मोहम्मद का 18 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया। 6 दशकों से भी अधिक समय तक उन्होंने इस सूफी संगीत कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्रियंका हरी, करुणा लालू।
4: छह दशकों से भी ज्यादा समय तक इद्रिस लाल मोहम्मद ने पूरे जुनून के साथ मॉरिशस में कव्वाली को जीवंत बनाए रखा। उन्होंने सूफी संगीत की रूहानियत और जज्बे से समृद्ध विरासत को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी।

लाल मोहम्मद ब्रदर्स के प्रमुख के रूप में उन्होंने मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कव्वाली को उजागर किया। कव्वाली और गजल के प्रतिष्ठित गायक के रूप में उन्होंने अनेक पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया। मॉरिशस सांस्कृतिक धरोहर में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें इसी वर्ष लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी आवाज़ भले ही अब खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी संगीत विरासत आने वाली पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहेगी।

और विदेश में सर केस्टोमे के औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने एंडी बर्नहम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 18 से 20। कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, फिर भी दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में आज रात नहीं जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम 5:48 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:22 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। लीजिए शोक समाचार सुनिए। इलाका वेनवाकुआ में 70 साल की 70 years old की श्रीमती इंद्रामती किरोधर, पैदाइशी नाम जोगी और जो इंद्रा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बुधवार को सुबह 10 बजे उनके पति श्री रमेश किरोधर के घर इलाका वेनवाकुआ से उठाकर सुल्फेहनों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: स्टूडियो की घड़ी में 6:27 हो चुके हैं. विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ टार वाइब्स योर फिल्मी राइड्स. जी हां, मंडे 20 जुलाई 2024 और हम हैं गणेशा जो साथ दे रहे हैं 7 बजे तक. तो चलिए जी, जैसे कि आपको बताया थोड़ी देर पहले वी हैड अ गेम और हमने बोला था कि विल बी हैविंग अ सेकंड वन, यानी कि वन मोर टिकट टू गिव अवे टू वॉच अ कॉन्सर्ट इन मॉरिशस. जी हां दोस्तों, यू कैन प्ले विद एमबीसी एंड विन अ टिकट राइट नाउ. स्टैंड द चांस टू विन अ टिकट to the Golden Era Tour. हाँ जी, लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस सैटरडे 25 जुलाई 2026 फ्रॉम 7:30 PM एट SVICC आर पाई. तो अभी के लिए सवाल बहुत ही आसान है. यू हैव टू टेल मी द कॉन्सर्ट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 25 जुलाई 2026 एट SVICC आर पाई. कौन सा सिंगर आने वाला है मॉरिशस फॉर द बिग कॉन्सर्ट? यस, किसके कॉन्सर्ट होने वाली है ऑन 25 जुलाई 2026? सेंड मी द राइट आंसर ऑन 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 eligible to play and participate in the game. You just have to tell me on Saturday 25th of July 2026 sham ke 7:30 baje se at SVICCRPI there is going to be a big concert in Mauritius and who is the singer? Kaun sa singer aane wala hai? Kiski concert hone wali hai? 5499-1294.
1: RM2 Radio Masti.

वेल गाइस 6:42 मिनट हो चुके हैं, इट्स टाइम अभी के लिए कि हम अनाउंस कर ले कि कौन है आज का सेकंड लकी विनर टू विन अ टिकट टू वॉच अ कॉन्सर्ट लाइव इन मॉरिशस। जी हां दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने पूछा एक सवाल कि ऑन 25 जुलाई 2024 शाम को 7:30 बजे देयर इज गोइंग टू बी अ बिग कॉन्सर्ट एट SBICCR पर। हमने पूछा कि कौन सा जो सिंगर है आने वाला है फॉर दिस कॉन्सर्ट, एंड वेल the right answer is Abhijit Bhattacharya। जी हाँ, the right answer is Abhijit। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए और कुछ लोगों ने गलत जवाब भी दिए। सो अभी के लिए जो हमारा लकी विनर है, सो लकी ड्रो में किसका नाम निकल आया है वो है हेमा स्वरूप जो रहती हैं लामिचे। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू माय डियर। So congratulations to you, Hema ji, Lamichi, ki rehne wale ho aap. Yes, the right answer is Abhijit Bhattacharya. Thank you so much to all those jinhone participate kiya hai. So aapne jeeta hai one ticket to the Golden 90s Era 2 featuring Abhijit Bhattacharya live in concert on Mauritius, in Mauritius on Saturday 25th of July 2026 shaam ke 7:30 baje at SVICC at Pai. Ji haan, tickets jo hain starts from 850 to all those jo khareedna chahenge. They are available at moticket.mu/reseau-otayo. So don't miss this unforgettable concert experience. Reservation ke liye, yes, we do have a hotline, 466-99-99. So congratulations to you. Hey Maji, there will be someone calling you from the MBC to let you know ki apna ID lekar kab aana hai to collect your ticket. Thank you so much to everyone jinhone participate kiya hai.

0: वेल आप लोगों के लिए हम भी सजदे मांगते हैं और कभी कभी दुआओं में आपकी याद आती है तो हम ऊपर वाले से यही मांग लेते हैं कि आप जहां पर रहे खैरियत से रहे और वैसे खैरियत से हमें याद आया। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और चलिए सैटरडे के बाद एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है एंड हमने वादा किया था कि हमारी और आपकी मुलाकात होगी 7 से लेकर रात के 9 बजे के बीच इन योर इवनिंग लाउंज। तो चलिए फाइनली हमारी और आपकी मुलाकात हो ही चुकी है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर खूबसूरत गीतों का कारवा हम लेकर आए हैं नॉनस्टॉप, आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करेंगे। वेल 7:07 हो चुके हैं, ऐसे ही हम और आप साथ साथ हैं। इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल मंडे इवनिंग। 20 जुलाई देखते ही देखते ये महीना भी ख़त्म हो जाएगा और जो नेक्स्ट मंथ है उसको वेलकम करने के लिए ऑल सेट हो जाएंगे। आई जस्ट होप कि जितने भी सारे आपके एंडीवर्स हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो बस ऐसे ही पूरे हो जाए एंड आई जस्ट होप कि साल भर ऐसे ही आपका निकल जाए हमारे साथ, हमारा साथ देते देते एंड खूबसूरत गीतों को एंजॉय करते करते। वेल आपके मैसेजेस को ज़रूर हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 5499-1294 एंड हमेशा हम कहते हैं जब खूबसूरत गीतों का कारवां चल पड़ता है, ऐसे में किसी की याद आती है तो इस फीलिंग को आपको दबा के नहीं रखना है बल्कि इसको एक्सप्रेस करना है। तो चलिए कहते हैं ना कि आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, तो इस बस प्यार को आप बयां कीजिए ऑन 5499-1294 या फिर लाइन खुली हुई है, आप हमें याद कर सकते हैं 4028035 का संख्या पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: चलिए कुछ और गाने आपको हम जरूर सुनाएंगे थोड़ी देर में. 7:12 हो चुके हैं. टोलोस हैविंग द डिनर राइट नाउ आपको विश करेंगे. बिना पीछे शुभाहार. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर हमारा और आपका साथ है. एंड जितना हो सके हम अभी आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. चलिए यहां पर लाइन पर हमारी प्यारी सी उर्वशी जी हैं, तो उनसे हम थोड़ी बातें करेंगे. नमस्कार आपको उर्वशी जी.
1: प्रणाम. कैसे?
0: प्रणाम जी. बिल्कुल ठीक ठाक हैं. कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ.
0: और मैंने उर्वशी जी से पूछा कि आपने खाना खा लिया आज? वो कहती हैं कि नहीं, आज तो इंतज़ार नहीं करना है, मैंने खाना खा लिया. तो मैंने कहा, मुझे लगा कि आप गाना सुन के ही खाना खाएंगे. देखा, खाने के सामने गाने फेल हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसका कॉम्बिनेशन ही अच्छा है. तो उर्वशी जी, आप हमें बताइए कि कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ.
0: और आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: आज सुहाना है.
0: आज सुहाना है और थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है, राइट?
1: नहीं.
0: और वैसे आप रहती कहाँ हैं?
1: कश्मीर की कली की.
0: कश्मीर की, वहाँ की कली तो आप ही हैं उर्वशी जी. चलिए उर्वशी जी, बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: मैं फिल्म का नाम नहीं जानती हूँ. एक
0: हथेली तेरी है, एक हथेली मेरी हो. ये गाना कहाँ से आपने सुना वैसे? आपने रेडियो पे ही सुना ये गाना?
1: यस.
0: ओह स्वीट. तो चलिए ये गाना आपके लिए हम जरूर चलाएंगे. एंड ये गाना एक्चुअली इश्क के परिंदे से लिया गया है के इट्स सोनू निगम, राइट? एक हथेली. तो आपके लिए हम ये गाना जरूर चलाएंगे. और ये गाना किन के लिए?
1: आपके लिए, मेरे लिए.
0: As usual. So thank you so much उर्वशी जी आपके इस precious time के लिए. आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. प्रणाम आपको.
1: Okay,
0: bye. Bye-bye. So ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी. अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो जरूर आप डायल कर सकते हैं 4028035 पर. आपका इंतजार कर रही है.
2: Evening Lounge. RM2. Radio Musti.

बिल्कुल, जिस तरीके से आप गाने के अंदर बस प्यार का इजहार इकरार सुनते हैं, उसी तरीके से आपको भी करना है। तू इश्क मेरा है, चाहत है मेरी, ये मैसेज आप इमेजिन करिए, आपने किसी को भेजा है और उन्होंने ये मैसेज देख के उनको इतना अच्छा लगा एंड वापस से आपको उतना ही दुगना प्यार मिला होगा, और ये सोचकर आप कितने ही मुस्कुरा रहे होंगे, है ना। तो आप इसको हकीकत में बदलने के लिए डेफिनेटली आप ऐसा ट्राई कीजिएगा, और आई जस्ट होप कि ज़िंदगी में जो भी आप और जहाँ पर भी आप पहुँचे, किसी भी मुकाम पर भी आप पहुँचे, हमेशा आपका प्यार आपसे ना रूठे और ना छूटे। चलिए, यहाँ पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है और आपका मैसेज अभी तक हमें आ ही रहा है और यू आर स्टिल टाइपिंग। हेलो, नमस्ते जी, आज मेरी बड़ी बहन का जन्मदिन है और उनके लिए एक गीत मांगना चाहती हैं, एंड अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ओ मामा, डियर मामा, एंड क्योंकि हम अभी के लिए रोमांटिक गीत ही चला रही है, इट्स रोमांटिक शो जहाँ पर कुछ नए गीतों के साथ आपको एंटरटेन कर रही हैं।

0: कुछ 90s गीतों के साथ भी. तो चलिए जब हमें मौका मिलेगा तो ये गाना हम एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे. नेक्स्ट गाना गोज आउट उनके पति के नाम कमराज और बेटे का नाम है योगेश. डॉटर इन लॉ आशना, ग्रैंड डॉटर शहना, सभी बहनों के लिए इंदिरा, सरिता, रेशमा और वी ऑल्सो हैव वीरमा. तो चलिए उनको हम बहुत ही प्यार से विश कर रहे हैं वंस अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. अल्लाह के लिए आपका ये गाना अभी के लिए हम नहीं चला पाएंगे, बट फॉर श्योर ये द नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर हर एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर एल्डर सिस्टर. एंड उनका नाम है आंटी, माता बदल रहती हैं विलनुआ. तो चलिए उनको बहुत बहुत सारा प्यार. इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. टू ऑल दोज मे बी यू वर्किंग राइट नाउ, आपको बो कुहाज, एंड इफ यू आर ड्राइविंग आपको हम कहेंगे हैव अ सेफ सेफ ड्राइव विद रेडियो मस्ती.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: आरएम2
1: रेडियो मस्ती.

0: प्यार में कभी कभी सर झुकाना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिश्ते से बढ़कर दिल का रिश्ता होता है, और अगर आप इस दिल के रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आपको ये प्यार ही रखना चाहिए, और बाद में ईगो आता है, बाद में सब कुछ आता है, एंड हमेशा हमेशा ट्राई टू प्लेस योर लव अबव एंड मेक इट अ प्रायोरिटी, और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चेंज हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड रियलाइज कि जब हर कदम में आप प्यार को महसूस करते हैं तो हर कदम पे आपको प्यार मिल ही जाता है, और प्यार आपको ढूंढ ही लेता है.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

0: वेल मोहब्बत तो एक जावेदा ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी बस चार पल की है और इस चार पल की ज़िंदगी में क्या किसी से गिले शिकवे करना, बस जितना हो सके आप प्यार से रहिए, प्यार से लोगों से मुलाकात कीजिए और कभी कभी राह चलते लोगों के साथ भी आप एक प्यारी सी हंसी दे सकते हैं। और कभी कहते हैं ना कि एक स्माइल इज़ वेरी कॉन्टेजियस, अगर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो शायद आपकी हंसी देखकर किसी को ताकत मिलती होगी या फिर समवन माइट बी फीलिंग ओके और माइट बी फीलिंग गुड। तो चलिए हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन सा शख्स हैं जो स्ट्रगल्स की बस तूफान में अपने आप से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। सो वी हैव टू बी काइंड टू ईच एंड एवरीवन। चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है न्यू इवनिंग लाउंज, अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक ऐसे ही आपके मैसेजेस हम तक पहुँचना चाहिए एंड वी विल डेफिनेटली लाइक टू नो कि आप किस तरीके से अपने इस मंडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं। शायद आपने खाना खा लिया होगा और पीछे से बैकग्राउंड में हमारी आवाज़ गूंज रही है और आप लोग फैमिली फ्रेंड्स के साथ शायद कुछ बातें कर रहे हैं आप इसमें एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कुछ पड़ोसियाँ भी फ्रेंड्स से बढ़कर होते हैं। तो कुछ लोग अभी तक उनका ये उसूल है कि खाना खा लेने के बाद शायद आपस में पड़ोस में कुछ बातें करते हैं एंड फिर आप लोग अंदर आते हैं कुछ इंडो गेम्स में भी इस रूटीन को ब्रेक करने के लिए। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि यू डोंट नीड टू कीप द सेम रूटीन एवरी वीक एवरी डे। हम बस वीकेंड का इंतज़ार करते हैं टू डू समथिंग डिफरेंट, व्हाई नॉट स्टॉप trying doing something different each and every day। तभी आप देखेंगे और नोटिस करेंगे कि रोज़ रोज़ कितना अलग होता है और रोज़ रोज़ रूटीन ब्रेक करने से आपका जो माइंड होता है वो थोड़ा और रिफ़्रेश हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को रिफ़्रेश करें हमारे गीतों के साथ भी एंड उम्मीद करते हैं दैट यू आर कनेक्टेड विद अस। चलिए दिव्या का साथ है एक बार फिर से रिमाइंडिंग यू इट्स योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

सच अ परफेक्ट टाइमिंग 8:20 और इट्स अ वंडरफुल 20th जुलाई यानी कि 2020 एंड 20th जुलाई. इस खूबसूरत परफेक्ट टाइमिंग पर हम यही विश करते हैं कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो. एंड चलिए आप अच्छी सोच रखेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा और दूसरों के साथ भी. वैसे कहते हैं ना कि यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट योर वाइब और यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट योर ट्राइब. तो जिस तरीके से आप की मैंटालिटी है, आपकी सोच है, उसी तरीके के इंसान आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हैप्पी एंड जॉली मूड. और वैसे वी आर ट्राइंग टू कीप यू इन द गुड मूड हमारे खूबसूरत गीतों के साथ. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है. एंड मुझे पता है कि हमारे लेडीज़ लोग, शायद आप लोगों का डिनर हो चुका है, अभी आप बंतर मान रहे हैं और

0: वाइल डूइंग द डिशेज आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि वो ये है कि कल उठकर क्या बनाना है और कितने सारे घर के कामकाज बचे हुए हैं, है ना. लेकिन आपको इतना भी नहीं सोचना है, जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय द मोमेंट. क्योंकि कभी कभार एक परफेक्ट डे को एक परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो एट टाइम्स. एंड आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी जब हम चीज़ों को प्लान नहीं करते हैं तो तभी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. हाँ, ये अलग बात है कि हमेशा अनप्लान्ड डेज आर नॉट गुड. तो एक दिन के लिए अगर आप इस रूटीन को ब्रेक करें और आपके लिए ही अच्छा रहेगा और यू विल फील लाइट. सो आई गेस आपके मन में जो भी जो मन की बात है आप हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे. और 5499-1294 आपके मैसेजेस डेडिकेशंस का इंतजार कर रही है. हेलो जी शीला जी, आप पहले इस पे औसत विषय से कहती हैं नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर माय फैमिली. एंड चलिए, थैंक यू सो मच शीला जी हमारा साथ देने के लिए. लिस्ट पे हौसले बुशे से जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर आप लोग शीला जी को जानती हैं तो चलिए आपके नाम भी हम अगला गाना डेडिकेट करेंगे. इट्स अ ब्यूटीफुल वन टेकन फ्रॉम द मूवी गुप्त.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: such a beautiful gana. That was in the beautiful voices of Sonu Nigam and Anuradha Porwal. चलिए यहाँ पर आपके कुछ और messages की ओर हम बढ़ेंगे. Hi Divya, I'm Vimi from Cottage. Next gana goes out to my mama Veda. Veda Apadu of Hoshnua, to my husband Rakesh, beta Vashish, whom I love more. तो चलिए उनके लिए ज़रूर अगला गाना प्यार से डेडिकेट करेंगे. Want to dedicate the next गाना to Habib Sanjeev from wife Deepa and आपकी दो बेटियाँ हैं Vimi and Megha, सभी सुनातन family of Ernest Florent and जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ. Maybe you're having your late dinner or you're having some good time. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे till 9 PM. To all those working very hard और आप night shift करने जा रही हैं या फिर ऑलरेडी आपका night shift शुरू हो चुका है, काम करते करते हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच. एंड आई जस्ट होप कि आपका आपकी जो रात है वो आराम से कट जाए काम करते करते और हमारे गीतों को सुनते सुनते.
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.
3: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
4: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका.
3: तो चांद को ही देखिए ना.
4: मगर वो सांस नहीं लेता.

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रही, अब इस कहानी को कैसे बयां करें, बस आपको बयां करना है 5499-1294 के ज़रिए। एंड कुछ ऐसी कहानी होती हैं जो आपको खुद लिखनी होती हैं, ये तो हमेशा हम कहते हैं, और इस कहानी में आपको बहुत सारा प्यार ऐड करना है। और ये प्रेम कहानी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जब आप अपनी खुद की प्रेम कहानी लिखते हैं तो इसमें आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ कोशिशें भी लिखनी होती हैं, इसको रियलाइज़ भी करना पड़ता है।

0: Hey lovely people, wishing you all a very good evening. प्यार भरा नमस्कार, नीतू का प्रणाम स्वीकार करें. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? दिन कैसा रहा? अच्छे से बीता? Well, यही हम कामना करते हैं. और अब आपकी रात्रि को और मजेदार बनाने के लिए I'm with you till midnight and ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ with the best mix of music मूड को ऐसे ही टकाटक बनाते रहेंगे इस सर्दी के मौसम में. तो चलिए इस सुहाने सफर में आपका स्वागत है. It's your late night grooves.
1: Hey!

वैसे सुहाना सफर जिंदगी वाकई में एक खूबसूरत सफर है, और जब इस सफर में संगीत साथ हो तो हर मोड़ यादगार बन जाता है। कभी किसी लंबी सड़क पर चलते हुए जब पसंदीदा गीत कानों में गूंजता है तो मंजिल से ज्यादा सफर प्यारा लगने लगता है। संगीत सफर को सिर्फ छोटा नहीं करता बल्कि उसे यादों का एक खजाना बना देता है। हर सुर और हर धुन हमें नए एहसासों से रूबरू कराती है।

सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि रास्ते की खूबसूरती महसूस करने के लिए होते हैं, और जब इन रास्तों पर मधुर संगीत का साथ मिल जाए तो हर पल एक कहानी सा बन जाता है। कभी पुराने गीत बचपन की यादें ताजा कर देते हैं, तो कभी नए गीत भविष्य फ्यूचर के सपने सजा देते हैं। यही तो है संगीत और सफर का जादू।

इस सुबह की ठंडी हवा, खुला आसमान और बैकग्राउंड में बजता कोई सुहाना गीत, इससे ज्यादा खूबसूरत सफर और क्या हो सकता है। संगीत दिल को सुकून देता है और सफर को रूहानी बनाता है। हर गीत के साथ लगता है जैसे कुदरत भी अपनी एक अलग ही धुन सुना रही हो, है ना?

सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बह

आता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां।

थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए। और सफर चाहे पहाड़ों का हो, समंदर के किनारे का हो, या फिर शहर की भीड़ भरी सड़कों का, संगीत हर जगह अपनी रंगत बिखेर देता है। गीत सफर के साथ ही बन जाते हैं और हर नजारे को और भी खास बना देते हैं। कुछ ऐसे गीत भी होते हैं जो सालों बाद भी हमें उस सफर की याद दिला देते हैं। दैट्स व्हाई हमेशा कहती हूँ ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि सोने की चमक कभी खत्म नहीं होती है।

जिंदगी के सफर में लोग आते हैं, बिछड़ जाते हैं, कोई अपना रह जाता है और कुछ ऐसे अनजाने मोड़ आ जाते हैं। कभी खुशियां मिलती हैं, कभी चुनौतियां, लेकिन जब दिल में संगीत बसा हो ना तो हर मुश्किल आसान लगती है। संगीत हमें हौसला देता है और याद दिलाता है कि सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जिंदगी है।

0: रात के आप हमारे हम सफर बने हुए हैं। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच। वैसे ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते खेत, पेड़ और गांव देखते हुए जब कोई मधुर गीत सुनाई देता है तो लगता है जैसे प्रकृति भी उस गीत के साथ गुनगुना रही हो। वैसे रात को मेट्रो तो चलती नहीं है, लेकिन हाँ अगर फिल्में देखें तो कई बार कई सीन्स ऐसे होते हैं जब ट्रेन चल पड़ी है और लंबे सफर पर निकल चुकी है। कितना मजा आता है ना। सफर और संगीत का ये मेल दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहाँ सिर्फ सुकून और खुशी होती है।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits, music only.
2: Feels a musti.

0: तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, बड़ा है। फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर्का
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

Really hope इन गानों के साथ आपको भी बहुत खुशी मिल रही है. In your late night grooves with Neetu. And कुछ गाने सिर्फ गीत नहीं होते हैं दोस्त, बल्कि सफर के हम सफर हो जाते हैं. वो हमारे साथ हंसते हैं, रोते हैं और यादों के पन्नों को सजाते हैं. जब भी वो धुन फिर से सुनाई देती है, पूरा सफर आंखों के सामने एक फिल्म की तरह ही चलने लगता है.

खूबसूरत सफर की असली पहचान उसकी मंजिल नहीं बल्कि उस दौरान जिए गए लम्हे होते हैं और उन लम्हों को यादगार बनाने में संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर सुर दिल के किसी कोने को छू लेता है और सफर को और भी रंगीन बना देता है।

ही किसी शाम ढलते सूरज के साथ गाड़ी में सफर करते हुए रोमांटिक गीत सुनना एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना वेरी डिफिकल्ट। ऐसे पल हमें जिंदगी की असली खूबसूरती का एहसास कराते हैं और दिल को सुकून से भर देते हैं।

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

Really hope आप ही इस सफर को enjoy कर रहे हैं, क्योंकि सफर और संगीत दोनों ही जिंदगी को बेहतर बनाना सिखाते हैं। सफर हमें नए रास्ते दिखाता है और संगीत नए जज्बात। जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो हर पल एक उत्सव बन जाता है। हर नजारा और हर धुन दिल पर अपनी अमीर छाप छोड़ जाती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: You're listening to RM2, Radio Masti.

0: आज एक साथ मैके है दो गुलाब
1: एक डोर में।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
4: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
3: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?